सुप्रभात। एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की तिथि 28, तदनुसार 19 अगस्त वर्ष 2026। प्रातः के 5:58 और 37 सेकंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज के कार्यक्रमों का प्रसारण आरंभ होता है। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। प्रातः के 6 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार।
2: परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए
2: प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए ने यह निर्णय

0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने 8 अधिसूचनाएं जारी की। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी समेत कई पदों की भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। अधिसूचनाओं में कहा गया है कि जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का भी अनुरोध किया जाएगा। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य अधिक परिवारों तक पाइप से रसोई गैस पहुंचाना है। वर्तमान में देश में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभा तथा विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र वैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग कराता है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया का जिक्र किए जाने के बाद जारी की गई। गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भारत ने पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को जन केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने पर बल दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में ये बात कही। श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों की चुनौतियों का उल्लेख किया।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए भी आमंत्रित किया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए मुकाबला काफी प्रमुख है। भारत के 2 मैचों में 3 अंक हैं और अगले दौर में पहुंचने के लिए उसे कम से कम ड्रॉ की जरूरत है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 6:05 हुए हैं, समय हो गया है भक्ति रचनाओं के कार्यक्रम वंदनवार का। कार्यक्रम के लिए आइए चलते हैं विविध भारती मुंबई।

सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, किसी भी व्यक्ति के विचार ही सब कुछ हैं। वो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

ईश्वर प्रदत्त इस जीवन में हमारा मन प्रधान है, वो हमारे वास्तविक विचारों की प्रतिमूर्ति है। मन निर्मल तो जीवन संयमित।

प्रभु नाम जपते जपते मन भूल जाता है संसार के बंधनों को। इस मगन मन से होते हैं असंभव कार्य भी संभव।

आस्था का ही अनोखा रूप है देशभक्ति। मातृभूमि की सेवा और उनके प्रति समर्पण की भावना ईश्वर भक्ति के समान ही संतोष देने वाली है। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं देशगान।

सुबह 6:35 से श्री रामचरितमानस आज सुनिएगा 250वां भाग। छह 6:45 से संगीत सरिता के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह तबला वादक भाग तीसरी। आप सुन सकते हैं कलाकार पंडित कालीनाथ मिश्र, भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का समय 7:00 का। हम है राही प्यार के कार्यक्रम सुन सकते हैं 7:30 से। 8:00 से समाचार प्रभात। 8:15 से त्रिवेणी। 8:30 से चित्रलोक। 9:30 से आज के फनकार। कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार

यहाँ पर। सुबह 10 बजे से सेल्युलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण सुनेगा। अभिनेता यशपाल शर्मा और अभिनेत्री प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। कार्यक्रम रंग तरंग का समय 11 बजे का और 12 बजे से हिंदी में समाचार, दोपहर 12:05 से यादों की महफिल, 1 बजे से सुरीला सफर, 2 बजे सुनिए त्रिवेणी और 2:15 से दोपहर समाचार। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 से, 3 बजे से सखी सहेली, 4 बजे सुनिएगा कार्यक्रम आज की मेहमान, इसमें आज सुनिए अभिनेता निर्देशक पंकज रैना से विधि जैन की बातचीत, 5 बजे से छाया गीत का पुनः प्रसारण। शाम 5:30 से तराने नए पुराने और 6 बजे से हिंदी में समाचार। शाम 6:05 से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने, 6:35 से संध्या रंजन, शाम 6:45 से सुनिए संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह तबला वादक, आज सुनिएगा तीसरी कड़ी, कलाकार हैं पंडित कालीनाथ मिश्र। शाम 7 से जय माला, 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग अनुराग।

रात 8 बजे से हवा महल में सुनिए झलकी अधूरी बात, लेखन वीएम आनंद का, निर्देशन विजय दीपक छिब्बर का। रात 8:15 से नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुन सकते हैं चित्रलोक, 8:45 से समाचार संध्या। रात 9 बजे से कार्यक्रम आपके लिए, नौ बजकर 30 मिनट से आज के फनकार। आज रात ये आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता उत्पल दत्त पर। रात 10 बजे से छाया गीत, 10:30 से सुनिए ढलती जाए रात, और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस। आज सुनिए 285वीं भाग।

राक्षस इतने बलवान और बड़े योद्धा हैं, उन्हें नन्हे नन्हे वानर भला किस प्रकार मार सकेंगे? सीता जी का ये संशय हनुमान ने सुमेरु जैसा अपना आकार दिखाकर पल भर में मिटा दिया। फिर छोटा रूप धारण कर बोले, हे माता, वानरों में बलबुद्धि तो नहीं होती,

किंतु प्रभु की कृपा से छोटा सांप भी गरुड़ को खा सकता है। सीता जी को सभी प्रकार से संतुष्ट करके पवन पुत्र ने अपनी भूख मिटाने के लिए न केवल फल फूलों का आहार करना आरंभ किया, बल्कि इस क्रम में पूरी वाटिका ही उजाड़ डाली। रोक टोक करने वाले रखवालों को मसल कुचल कर मार डाला। विध्वंस का समाचार सुनकर रावण ने बंदर को पकड़ लाने के लिए योद्धा भेजे। उनका संहार सुन अपने पुत्र अक्षय कुमार को पठाया। एक भयंकर गर्जन के साथ जब हनुमान ने एक वृक्ष उखाड़कर उसे भी मार डाला तो रावण के क्रोध की सीमा न रही। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को आदेश दिया कि वो जाकर उस वानर को बांध कर ले आए।

0: आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं आज के तबला कलाकार श्री कालीनाथ मिश्रा जी का।
1: नमस्कार। नमस्कार
0: मिश्रा जी, आप बनारस घराने के बहुत ही सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं। हमने सुना है कि बनारस के जो बाज है उसको पूरब अंग का बाज कहा जाता है। दिल्ली से तबला शुरू हुआ और उसके बाद लखनऊ आया और लखनऊ से बनारस। तो बनारस बाज का क्या खासियत है? इसमें हमने सुना है कुछ थपिया बाज भी होता है और दिल्ली किनार का बाज होता है, तो इस बारे में थोड़ा आप हमारे श्रोताओं के लिए प्रकाश डालें।
1: सबसे पहले मैं कालीनाथ मिश्रा अपने साथियों कलाकारों के साथ सुनने वाले सभी संगीत सरिता को मैं प्रणाम करता हूं। और जैसा कि दास बाबू ने जिक्र किया थाप, हमारे बनारस घराने का जो थाप का एक
0: क्या बात,
1: ये जो तकाक का जो बोल है, पहले तो मैं बताऊं आपको दास बाबू की तबला का मतलब क्या होता है। तबला ये फारसी शब्द है, इसका नाम था तबल
0: जी।
1: और हमारे गुरु जी ने मुझे बताया कि त से होता है तल, ब से होता है बल और ल से होता है लय।
0: क्या बात,
1: और हमारा लय प्रवाह है ये, तो तीनों का एक समावेश होना चाहिए।
0: हाँ, इसीलिए मुझे याद आया किसी तबला वादक ने कहा है कि पखावज से तबला बना है।
1: जी हाँ, जी हाँ।
0: कि तब भी बोला इसे कुछ बात
1: जी, जी, हाँ।
0: इसके बारे में
1: पखावज
0: बताइए ना।
1: क्या है दास बाबू, कि पखावज को काट के तबला का निर्माण हुआ और ये सारा से जाता है हमारे अमीर खुसरू साहब को।
0: अच्छा,
1: हर म्यूजिक के साथ इंस्ट्रूमेंट के साथ पखावज मैच नहीं होता था, तो उन्होंने पखावज को काटा और सारा श्रेय जाता है हमारे दिल्ली घराने के सिद्धार्थ खान साहब को, जिन्होंने तबले के बोलों को निर्माण किया कि तबला कैसे बचेगा। तो पखावज को काटा, तो पखावज तो लकड़ी था, तो उसको काट के बनाया गया और सिद्धार्थ खान साहब ने बजाया उसको। तो थाप का जो अंदाज है वो हमारे श्रेय जाता है हमारे बनारस घराने के राम सहाय जी, बूंदी महाराज जी, किशन महाराज जी। किशन महाराज जी का थाप का तो खैर क्या बात है। थाप का एक अंदाज होता है कि आपके बोलों में वजन होना चाहिए।
0: अच्छा,
1: लेकिन वो थाप आप हर जगह किसी के साथ अगर आप संगत कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ गाने के साथ,
0: नाच में ज्यादा थाप लगा,
1: नाच में, और अगर तबला प्लेयर तबला वादक सोलो बजा रहा है,
0: अच्छा,
1: तो वो उस वक्त स्टेज पर शेर है, वो थाप भी दे सकता है, जोर से बजा सकता है। वो थाप के एक अंदाज होता है, ये भी थाप है हम
0: जी,
1: लेकिन ये हम गाने के साथ कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ कर, लेकिन जब सोलो बजाएंगे
0: क्या कहें?
1: लगे कि किसी ने पानी में एक लाठी मार दिया।
0: आज आप कौन सा ताल बजाएंगे हमारे श्रोताओं के लिए?
1: आज हमने सोचा कि ताल प्रवाह है, तो सुनने वाले श्रोताओं को मैं आज झपताल के बारे में बताता हूं। झपताल, वो पलक झपता है ना, वहां से शुरुआत हुई झपताल। दस मात्रे का ताल है और इसमें भी दो ताल है। देखिए पहले कैसे बनाने वालों ने कैसा बनाया है कि रूपक ताल के तीन चार अलग अलग तालों का नाम है, तीन ताल में भी अद्धा ताल करते हैं, अलग अलग आदि ताल भी है। झपताल में दो ताल है, धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, एक पर ताली, तीन पर ताली, आठ पर ताली और छह पे खाली है। और इसी का एक ताल का नाम है सुलताल, सुलफाक ताल, वो भी दस मात्रे का है। तो प्रस्तुत करता हूं श्रोता झपताल।
0: मैं इसमें और एक बात जानना
1: जी,
0: आपने सुलताल के जिक्र की।
1: हाँ।
0: सुलताल पखावज के लिए
1: जी, पखावज का बोल है वो।
0: और एक ताल होता है उसूले फाकता,
1: वही भाई है
0: वो, क्या? लेकिन वो पखावज पे तो नहीं बसता होगा।
1: नहीं, पखावज का ही है वो, धा। अच्छा। धा दिन,
0: और अमीर खुसरो की बनाई हुई ताल,
1: अमीर खुसरो साहब का है, लेकिन वही पखावज के अंदाज से बना हुआ।
0: अच्छा,
1: धा धा दिन धा टी टे धा टे टे धा तगदे गिन धा, ये अंदाज है। अब वो झपताल कैसे बजेगा श्रोता, सुनिए दास बाबू प्रस्तुत है झपताल।
0: जरूर।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: संगीत सरिता के श्रोताओं, आपको रामकृष्ण दास का नमस्कार।

0: अब देखिए दास बाबू, ये हमारे बनारस की खास स्टाइल है
1: जी,
0: उसका एक अंदाज है। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने के पहले आलाप जोड़ शुरू करते हैं बिना ताल के
1: जी,
0: उसी तरह से तबला वादक भी शुरू कर सकता है
1: जी,
0: जिसको कहते हैं हम आमद।
1: अच्छा,
0: ताल में आने का अंदाज़।

इसको कहते हैं गमक। ये आपको ज्यादातर सरोद मिलेगा। मुझे याद है कि मैं कार्तिक कुमार जी के साथ जब बजा रहा था इसी संगीत सरिता में जी, तो उन्होंने सुरबहार जो गमक, तो उसी का अंदाज है, बाएं का अंदाज।

0: क्या बात है मिश्रा जी, आपने डग्गे का काम बड़ी अच्छी तरह से बताया, बहुत अच्छा लगा। इससे मुझे याद आ रहा है आप ही के घराने के एक बहुत अच्छे तबला वादक कुमार बोस जी।
1: क्या बात है,
0: कुमार बोस, उन्होंने भी डग्गा पर बहुत काम किया है।
1: आपको मैं बता दूं दास बाबू, आपने नाम जिक्र छेड़ा तो किशन महाराज जी के ऐसे ऐसे शागिर्द हैं, उसमें से इनको तो मैं कहता हूं कि ही इज जस्ट लाइक टाइगर ऑन स्टेज। कुमार दादा, उनका रियाज करने का अंदाज, अरविंद आजाद हैं देखिए पूना में
0: जी,
1: उनका भी एक अंदाज है, तो उनका जो तरीका है वो किशन जी के, महाराज जी के, हमारे गुरु जी के शिष्य हैं वो।
0: इसी सिलसिले में और एक बात याद आ रही है, जब मैं कुछ तबला वादकों से बात कर रहा था तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये बनारस के तबला वादक कभी कभी ढोलक का अंग भी डग्गे में दिखा।
1: जी हाँ, जी हाँ, एकदम जरूर।
0: उसका क्या मामला है? और जब किशन महाराज जी से एक बार मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे ताल वाद्य
1: जी
0: का समावेश बनारस के तबले में
1: जी
0: आया है।
1: जी
0: उसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन हमारा अभी ये एपिसोड चल रहा था झपतार
0: जी,
1: हम जब आगे के एपिसोड में आएंगे कि दादरा कहरवा क्या होता है उसमें हम जरूर दिखाएंगे। दास बाबू, मैंने पहले भी कहा था कि पुराने फिल्मों में प्योर क्लासिकल को लिया गया है
0: जी।
1: आपको पता है फिल्म प्रोफेसर में झपतार का एक बड़ा सुंदर गाना है,
0: अच्छा,
1: लता दीदी और रफी साहब का गाया हुआ है, धीर।

ताल प्रवाह इस श्रृंखला की ये थी तीसरी कड़ी। जाने माने तबला वादक श्री कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस श्रृंखला में कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा दे रहे हैं उस्ताद फारूख लतीफ खां और हारमोनियम पर हैं विनोद पड़गे जी। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीष

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत बस कुछ ही पलों के बाद।
1: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
4: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संगीतकार खयाम की पुण्यतिथि, तो आज के इस कार्यक्रम में उनके संगीतबद्ध गीतों के जरिए उन्हें याद करेंगे।

लता मंगेशकर और हरी ईरानी की आवाज में हसरत जयपुरी की बोल आप सुन रहे थे खयाम का संगीत। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। खयाम का संगीत बद्ध किया ये गीत फिर सुबह होगी फिल्म से है। आशा भोसले की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल।

फिर सुबह होगी। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आशा भोसले की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, खयाम का संगीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

जो होली आई फूलन की भर भर झोली लाई लेके देखो के देखो के देखो के देखो वृंदावन की पुंज गलन में ऐसी धूम मचाई हाथ में ले गुलाल मुकड़े पे डाल रंग दियो लाल देखो कमाल ऐसी धमाल रे अंग अंग में राग रंग भर भर के आज और सज के लाल ना के लोग लुगाई दिन का दिन था

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, और अंतराल में जाने से ठीक पहले हम आपको सुनवा रहे थे राज प्रतिज्ञा फिल्म का गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में। भरत व्यास के बोल थे सन्मुख बाबू का संगीत। तो चलिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: आशा भोसले की आवाज में लाला रुख फिल्म का गीत आपने सुना, कैफी आजमी के बोल खयाम का संकेत।
1: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, तोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
2: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
3: मैं यहां, यहां, यहां, यहां।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: खयाम का संगीत आप सुन रहे थे हम है राही प्यार के फिल्म के इस गीत में। जानिसार अख्तर ने इसे लिखा, तलत महमूद का संगीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: दिना दिना, हे आला दिना, बदली दुनिया के आया नया।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: अली बाबा और 40 चोर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, असद भोपाली के बोल, उषा खन्ना का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आपको बता दें कि सुबह 9:30 पर आप आज के फनकार कार्यक्रम सुन सकते हैं, जो कि संगीतकार खयाम पर केंद्रित है। और इसके साथ ही 10 बजे से पुनः प्रसारण में सुनिए अभिनेता यशपाल शर्मा और अभिनेत्री प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी, सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम के अंतर्गत। और आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्म।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

मोहब्बत इसको कहते हैं। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मुकेश और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, खयाम का संगीत। संगीतकार खयाम की पुण्यतिथि पर आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम उन्हीं के संगीतबद्ध गीतों से सजा है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की अगली रचना फिल्म शोला और शबनम से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, कैफी आजमी के बोल।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
3: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
2: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
4: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
2: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
5: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: खयाम का संगीत। संगीतकार खयाम की पुण्यतिथि पर उन्हीं के संगीत बद्ध गीतों पर आधारित है आज का ये कार्यक्रम।

खयाम के संगीत से सजा ये गीत आप सुन रहे थे। कभी कभी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, साहिल लुधियानवी के बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, हम है राही प्यार के, जिसमें आज संगीतकार खयाम के पुण्यतिथि पर उन्हीं के संगीतबद्ध गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में गुलजार के बोल खय्याम का संगीत। आइए अब सुनते हैं खय्याम के संगीत से सजा ये गीत। आहिस्ता आहिस्ता फिल्म के इस गीत में शब्द निदा फाजली के, आवाजें आशा भोसले और अनवर की।

आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और अनवर की आवाजें, निरा फाजली के बोल, खयाम का संगीत, और इसके साथ ही आज का हमेराही प्यार के कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती

0: फ्री गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना पहली सितंबर से दो चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत तो सीजीडी कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4-स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
2: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया टीडीपीएल द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर एसआईटी की जांच और जारी सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थी जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थी। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुँचा। जाँच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। एसीबी के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जांच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जाँच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है।
4: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाची और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
0: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अल नीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है।

0: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध थे। हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने तथा हाल में लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की साजिश से जुड़े कई मामलों में इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक देश भर में 50 नवजात बेचे हैं। बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक गिरोह से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्रणालियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
1: भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिडी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केवंझर और मयूरभंज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने यह घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट

0: मशहूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया, वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद फरहत। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 2000 से अधिक नौकरियां खतरे में, 6 में से 3 प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया अनशन, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जंतर मंतर पर पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच, सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान, दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र।

0: इसे कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष दो में जगह बनाने पर नजरें, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर शोध की प्रक्रिया शुरू होने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता, भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराने के लिए विकसित भारत के लिए ज्ञान लोग गढ़ने वाली भी है। अंतरिक्ष में उगाई सरसों से बनाई सबसे स्वादिष्ट स्पेस डिश हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी साथी जेसिका विट ने किया कारनामा, बीज और खेती की सामग्री पृथ्वी से पहले ही भेजी गई थी। राजस्थान पत्रिका ने आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दुनिया के पुरस्कृत फोटोग्राफ को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है, अंधेरे में शिकार को झपटने को तत्पर बार्न उल्लू, ये तस्वीर इंग्लैंड के नॉरफॉक की है और तस्वीर ली है विंस बर्टन ने। पत्र ने आइसलैंड में डेनियल विने गार्सिया द्वारा क्लिक की गई तस्वीर भी साझा की है, जो ज्वालामुखी से बहते गर्म लावा का विहंगम चित्र है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेन देन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। और श्रोताओं, अब आगे के कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से। अभी समय हो गया है कार्यक्रम त्रिवेणी का।

नमस्कार। सारी दुनिया में 19 अगस्त का दिन विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए आपको इसका इतिहास बताएं। दरअसल विश्व फोटोग्राफी दिवस का जो ताल्लुक है वो है डगेरोटाइप नाम की एक फोटोग्राफी प्रोसेस से, जिसका आविष्कार किया था फ्रांस के लुईस डगेरो और जोसेफ निकोफोन ने 1837 में। फिर हुआ ये कि 9 जनवरी 1839 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज ने डगेरोटाइप प्रोसेस की उद्घोषणा की और 19 अगस्त 1839 के दिन फ्रांस की सरकार ने इसका पेटेंट खरीद लिया और इसे सारी दुनिया के लिए मुफ्त में उपलब्ध करवा दिया। तो इस तरह से ये मानना चाहिए कि 19 अगस्त के दिन फोटोग्राफी की सुविधा सारी दुनिया के लिए उपलब्ध हो गई थी और इसलिए विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। जरा सोचिए कि वो जमाना कैसा था जब फोटोग्राफी बड़ा ही महंगा शौक होता था और बहुत ही रईस लोग अपने फोटो खिंचवा सकते थे।

फोटोग्राफी ने विज्ञान की प्रगति के साथ बहुत सारे बदलाव देखे हैं। एक जमाना था जब फोटोग्राफी के लिए फिल्म रोल की जरूरत पड़ती थी और एक निश्चित संख्या में फोटो क्लिक करने के बाद ही उस फिल्म को धुलने भेज दिया जाता था। जब वो डेवलप होके और प्रिंट होके आती थी तब हमें ये देखने मिलता था कि तस्वीरें किस तरह से आई हैं। इनमें से कई तस्वीरें बेकार भी हो जाती थीं। जाहिर है कि फिल्म रोल वाले वो दिन बड़े ही सुहावने थे और बहुत ज्यादा जिज्ञासा और बेकरारी से भरे हुए थे, क्योंकि फिल्म रोल के खत्म होने का इंतजार करना पड़ता था। आज भी वो काली सफेद तस्वीरें पुराने जमाने की यादों को हमारे सामने ताजा कर देती हैं।

आगे चलकर जमाना बदल गया और अब तो वो जमाना आ गया है जब फोटोग्राफी के लिए लोग कैमरे से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे हैं। जरा सोचिए कि एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट मोबाइल आपके लिए कम्युनिकेशन मीडियम का काम भी करता है और दूसरी तरफ वो आपके लिए कैमरे का काम भी करता है। जिंदगी के हर महत्वपूर्ण या आम पल को आप तस्वीरों में बांध सकते हैं, लेकिन इसका असर ये हुआ कि तस्वीरों का जो महत्व था वो बहुत कम हो गया, क्योंकि तस्वीरें बड़ी आम हो गई। ये तस्वीर खींची और ये सोशल मीडिया पर चढ़ा दी, या फिर मोबाइल कम्युनिकेशन मीडियम के जरिए आपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेज दी और उन्होंने फौरन देख ली और वो खुश भी हो गए। यानी चीजें आसान हो गईं तो उनका महत्व कम हो गया, पर फिर भी आज जिंदगी के कुछ पल तस्वीरों में कैद हो जाते हैं और हम विकल होकर उन पलों को याद किया करते हैं।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: झुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

सुखिंदर सिंह और ए आर रहमान की आवाजों में आप सुन रहे थे ए आर रहमान का संगीतबद्ध किया ये गीत द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म से। और वाकई हमारे देश की बात ही कुछ और है, क्योंकि यहाँ एक ऐसी विरासत हमारे सभी साथियों ने सौंपी है, चाहे वो हमारे शहीद हों या हों हमारे साहित्यकार या संत, सभी ने हमें कुछ ना कुछ ऐसा दिया है जिससे हमारी संस्कृति समृद्ध हुई है। आज गोस्वामी तुलसीदास की जयंती है, जिनका नाम बचपन में राम बोला रखा गया था, और राम भक्ति में लीन संत तुलसीदास ने श्री राम के चरित्र को विभिन्न रचनाओं में ढाला। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पाठ वर्षों से घर घरों में किया जाता है। अवधि भाषा में रचित इस महाकाव्य को आप विविध भारती पर भी रोजाना सुनते हैं सुबह 6:35 से। तो संत कवि तुलसीदास जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हैं और एक ऐसा गीत सुनते हैं जिनमें रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों को शामिल किया गया है।

बोले राम सकोप तप भाई बिन हो न प्रीत जिन्हें न मानत चल दी जन गए तीन दिन बीत बोले राम सकोप तप भाई बिन हो न प्रीत।

0: विक्रम मोंटर से की आवाज और उन्हीं के संगीतबद्ध किया ये गीत आपने सुना राम सेतु फिल्म से। इसे लिखा शेखर अस्तित्व ने और साथ ही तुलसीदास कृत रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां भी इसमें शामिल रही।
1: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, टोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
2: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है
3: जी,
2: इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
4: मैं यहां।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

जबरिया जोड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। तनिष्क बागची का संगीत, रश्मि विराग के बोल, अल्तमश फरीदी और यासिर देसाई की आवाजें। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर चित्रलोक। और इस दुनिया में सबसे कीमती है वो भावना जो एक इंसान को दूसरे इंसान से प्रेम सहानुभूति रखने के लिए प्रेरित करती है। वो व्यक्ति जो स्वयं से पहले दूसरों को रखते हैं, मानवता की एक मिसाल कायम करते हैं और अपनी इस भावना से हमें भी प्रभावित करते हैं। और इसी भावना को उजागर करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रतिवर्ष 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। और इस दिन को उन व्यक्तियों की स्मृति में मनाया जाता है जिन्होंने मानवतावादी संकटों में यानी कि युद्ध आदि परिस्थितियों में मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी जान गंवाई। क्योंकि जब भी कभी ऐसा होता है कि कोई युद्ध हो, सशस्त्र संघर्ष हो, तो उसमें जितने दोनों पक्ष के व्यक्ति जो लड़ रहे होते हैं, वास्तविक रूप से युद्ध में जो प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं, उन्हें तो नुकसान कई बार पहुंचता ही है, लेकिन साथ ही साथ जो व्यक्ति वहाँ लोगों के संरक्षण के लिए जाते हैं, उन तक जरूरी सामान पहुंचाते हैं या चिकित्सकीय सहायता लेकर जाते हैं, उन्हें भी बहुत बड़े पैमाने पर अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो उन्हें याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को मनाया गया 19 अगस्त 2009 को। और हम ऐसे सभी व्यक्तियों को नमन करते हैं।

0: भाग मिल्खा भाग फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सिद्धार्थ महादेवन और साथियों की आवाजें, प्रसून जोशी के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

0: अमिताभ बच्चन और साथियों की आवाजों में कहानी फिल्म का गीत आपने सुना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा, क्लिंटन सर्जो का संगीत। कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।
1: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा।
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य हैं। आज ही अपनाएं BSNL।
3: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

जावेद अली की आवाज में आप सुन रहे थे पुष्पा द राइज पार्ट वन। फिल्म से ये गीत राकी बलम ने इसे लिखा, देवी श्री प्रसाद ने संगीत से सजाया। और आज है विश्व फोटोग्राफी दिवस, जो कि हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त 1839 को फ्रांस में डेग्यूराइट फोटोग्राफी प्रक्रिया के पेटेंट की घोषणा की गई थी और फोटोग्राफी की इस तकनीक को लुई डिग्रे और जोसेफ नाइस फोर निप्स ने इजाद किया था, इसीलिए इसे डेग्यूराइट फोटोग्राफी कहते हैं। और तो जब साल 2010 में विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाने की शुरुआत की गई तो इस तारीख को इसीलिए चुना गया। और फोटोग्राफी तो बहुत ही अच्छी चीजें मानी जाती है, क्योंकि अगर आप किसी याद को कैद करना चाहते हैं, कहीं आप घूमने जाते हैं या किसी खास उत्सव में आप शामिल होते हैं तो फोटोग्राफ आप अपने पास रखते हैं। बचपन की कितनी तस्वीरें हमारे पास है और हमारे जो पूर्वज हैं उनकी, उन्हें भी हम अपनी उनकी तस्वीरों में देख लेते हैं। लेकिन इन दिनों तस्वीर की तकनीक बदलती चली जा रही है और मोबाइल अब हमारे हाथ में आ चुका है और हम केवल यादों को कैद करने का माध्यम ही तस्वीर को नहीं बनाते बल्कि लगातार ढेर सारी तस्वीरें खींचते हैं जिन्हें देखने के लिए भी कई बार हमारे पास वक्त नहीं होता। क्योंकि पहले जिस तरह से चुनिंदा तस्वीरें खींची जाती थी और बैठकर एक साथ एल्बम में वो तस्वीरें देखी जाती थी और जब भी कभी सब हम सब मिलते थे, चाहे वो गर्मियों की छुट्टियां हों चाहे कोई भी मौसम हो, और जब भी कुछ ज्यादा लोग हम मिलके बैठते तो बस एल्बम निकाला जाता और याद की जाती वो सारी बातें कि उस तस्वीर को खींचने से ठीक पहले क्या हुआ था, क्यों किसी ने ऐसा अजीब सा मुंह बनाया हुआ है, ये क्यों कोई हंस रहा है, किस तरह के कपड़े किसी ने पहने हैं, वो कपड़े कहाँ से लाए गए थे, इस तरह की ढेरों बातें ढेरों यादें ताजा होती हैं। लेकिन इन दिनों जब हजारों फोटो हम खींचते हैं लगातार, बल्कि एक ही दिन में हम पता नहीं सैकड़ों फोटो तो हम खींच ही लेते हैं, तो उन्हें देखने का धैर्य भी अब खोता जा रहा है। आपका क्या मानना है इस बारे में हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं गीत।

0: सनम तेरी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। नीति मोहन, अकाशा सिंह और दर्शन रावल की आवाजें, समीर अंजान के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और बात हो रही विश्व फोटोग्राफी दिवस की। तो ये बताइए कि क्या आप आज के इस दिन को मनाने के लिए सेल्फी लेने वाले हैं या किसी की फोटो खींचने वाले हैं या शेयर करने वाले हैं अपनी कोई बेहतरीन तस्वीर या अपनी खींची हुई कोई खूबसूरत तस्वीर? ये आप सोचिए। तब

0: के गीत भी सुन लीजिए।
1: हे जरे झटपट पर उलट पलट नट खट जट लटक मटक लचक मचक चाल चलत जा। ए छोरा गांडा थई गया।

0: सत्यमेव जयते टू का ये गीत आपने सुना जारा एस खान और जैस मानिक की आवाजें, जैस मानिक और तनिष्क बागची के बोल, उन्हीं का संगीत।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, रूमी और तनिष्क बागची की आवाजें, तनिष्क बागची का संगीत, नीरज राजावत के बोल। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक, और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, सुनिधि चौहान और शाश्वत सिंह की आवाजें, अमिता भट्टाचार्य के बोल, फिल्म तू झूठी मैं मक्कार।

हर टेंशन को झटक कर झूमते नाचते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। और हाँ, दिन भर में जहाँ भी रहिए, रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा। कार्यक्रम चित्रलोक में आज के लिए बस इतना ही।

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से.
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर.
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन. अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध.
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें. हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846.
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच.
1: आकाशवाणी चंडीगढ़.
3: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर. और श्रोताओं, अब समय हो गया है हमारे कार्यक्रम आज का अखबार का.
1: आज का अखबार.
3: नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. प्रोग्राम आज का अखबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत. कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त शालिनी. दोस्तों, कैसे हैं आप? भाई, कल की बारिश के बाद तो ये सवाल पूछना और भी जरूरी हो जाता है. क्यों? कल जो झमाझम बारिश हमारे शहर चंडीगढ़ और आसपास हुई है, वो शायद इस सीजन की सबसे भारी बारिश थी. और हम सब ने कल देख ही लिया कि कितनी ज़्यादा बारिश हुई है. आज की अखबारों में छपी तस्वीरें अगर हम देखें तो चारों तरफ पानी ही पानी, जैसे कि पूरी ट्राई सिटी पानी में डूब गई हो. और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि सुखना का जल स्तर पहुंच गया 1161.4 फीट. जी हाँ, और इसीलिए सुखना के फ्लड गेट्स को भी खोलना पड़ा. और इसीलिए हमने देखा कि सड़कों पर भी बहुत सारा पानी था और 5 दिन बारिश के आसार हैं, ऐसा कह रहा है मौसम विभाग. और वर्ष 2004 का रिकॉर्ड कायम है बारिश का. आने वाले 4 दिन बारिश बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाली है, इसलिए आप लोग सतर्क रहें और जितना हो सके अपने घरों में रहें. अगर आप काम के लिए जा रहे हैं या कहीं और भी जा रहे हैं, जैसे स्कूल जाना है, आपको अपने ऑफिस जाना है, किसी काम से बाहर निकलना है, तो थोड़ा सा देख कर संभल कर निकलिए, वक्त से थोड़ा पहले निकलिए और कोशिश करें ऐसे रास्तों पर आप

जहां जाएं, जहां पर पानी भरा हुआ है, अपने आंखें और कान जो है वो खुले रखें, क्योंकि खबरें पढ़ते रहें, जो भी अपडेट्स आपको मिल रहे हैं उनको ध्यान में रखें, और रेडियो के जरिए, अखबार के जरिए जो भी अपडेट्स आपको मिल रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही अपना जो दिन है उसको तय करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कल कितने कितने घंटे सड़कों पर रहे क्योंकि वो पानी में फंस गए, कईयों की गाड़ियां खराब देखी गईं, कईयों के टू व्हीलर्स जो हैं वो सड़कों पर खराब देखे गए, और जल भराव की वजह से बहुत सारी असुविधा का सामना हमारे नागरिकों को करना पड़ा। तो ऐसे में हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और साथ ही साथ ये ध्यान रखते चलें कि बारिश से होने वाले जो संक्रमण हैं उनसे भी अपना बचाव हम करके चलें। तो दोस्तों बस यही हमारा कहना है कि अपने आप को बचा कर चलिएगा, आने वाले कुछ दिन जो हैं जाती जाती जो बारिश है ये हमें बीमार ना कर दे या हमारे लिए किसी भी तरह की मुसीबत ना लेकर आए, बस इसका ख्याल हमें रखना है। और आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। जी हाँ, आज के दिन ही पूरी दुनिया को ये तोहफा मिला था, और आप तो जानते ही हैं कि फोटोग्राफी एक ऐसा गिफ्ट है, एक ऐसा तोहफा है, जरा सी कोई बात होती है और हमारा फोन झट से बाहर आता है और खट से हम फोटो खींच लेते हैं। क्यों, ऐसा ही होता है ना। जरा सा आपको लगा कि भाई आज तो हम अच्छे लग रहे हैं, हमारे दोस्त से हम मिल रहे हैं, चलो भाई इस याद को हम अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं, फटाफट से फोन निकाला और झट से फोटो खींच ली। और सोचिए, बिना फोटोग्राफ्स के अगर अपनी जिंदगी को अगर हम सोचें तो कैसी रही होगी वो जिंदगी जब आपके पास कोई यादें नहीं थी। आज भी अगर हम बात करते हैं उन लोगों की जो स्वतंत्रता सेनानी थे या जो युद्धों में लड़े थे, जो वीर थे, या कोई भी ऐसी शख्सियत जो कि विश्व प्रसिद्ध थी और उसकी कोई फोटो नहीं है, तो हम अपनी कल्पना से अपने दिमाग में उनकी फोटो बना लेते हैं, है ना। लेकिन जिनकी फोटो है उनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि ये ऐसे दिखते थे, और अपनी यादें भी हम फोटो के जरिए, चाहे वो एल्बम हो चाहे वो फोन हो, उसमें हमेशा कैद करके रखते हैं। तो चलिए वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर भी आप एक अच्छी सी फोटो करके अपने पास कैद कर लीजिए।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। और श्रोताओं, इन दिनों हम आपको अवगत करा रहे हैं एक ऐसी कॉन्टेस्ट के बारे में जो कि निकाला गया है केंद्र सरकार द्वारा, और आप सब सुन ही रहे हैं इसके बारे में। यह है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, और अपने ज़िले की कहानी अपनी ज़ुबानी, यानी अगर आपके ज़िले में कोई भी कहानी ऐसी है जो आपको लगता है कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप उसे अपनी ज़ुबानी रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। देश के हर ज़िले की अपनी एक खास पहचान है, अपनी संस्कृति है और अपनी ही एक कहानी है। इन्हीं अनूठी कहानियों को देश और दुनिया के सामने लाने के ही उद्देश्य से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज की शुरुआत की है, और इसी पहल के तहत देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स को अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, इतिहास और स्थानीय उपलब्धियों को रचनात्मक

व्यापक डिजिटल माध्यम से, यानी कि आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा और उसका वीडियो बनाना पड़ेगा, प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है और इसके पायलट चरण में चंडीगढ़ को शामिल किया गया है। यानी कि अगर आप एक डिजिटल क्रिएटर हैं और आपको लगता है कि आपके जिले में, आपके आसपास कोई ऐसी जगह है जहां पर कुछ भी ऐतिहासिक है या कोई ऐसी परंपरा है या आपके कल्चर में कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो बस आपको अपना फोन उठाना है, उसका वीडियो बनाना है और उसे क्रिएटिवली अच्छे से बनाकर अपना जो रचना है उसको आपने सबमिट करना है। अब उसका पंजीकरण कैसे करना है ये भी आपको बता देते हैं। आपको जाना है इंटरनेट पर और वहां से आपको माई वेव्स ऐप को, अगर आपके फोन पर नहीं है तो उसे डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर या फिर लॉग इन करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करना है और उसके बाद जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज को चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड करनी है और सबमिट कर देनी है। ध्यान रखिएगा 1 से 3 मिनट ही ड्यूरेशन होनी चाहिए, उससे ज्यादा होगी तो हो सकता है कि आपकी जो सबमिशन है वो ना ली जाए। और एंट्रीज आपको बता दें कि 1 अगस्त से शुरू हो चुकी हैं और 31 अगस्त तक ही स्वीकार की जा रही हैं। तो अगर आपके शहर, गांव या जिले में भी कोई ऐसी खास जगह है तो बस आपको ऐसा लगता है कि सबको जानना चाहिए उसके बारे में, आपको करना बस यही है, अपना फोन उठाना है, कैमरे में उसे कैद करना है और जेम्स ऑफ इंडिया का बन जाना है हिस्सा। क्योंकि भारत की असली खूबसूरती उसके हर जिले में छिपे उन अनमोल जेम्स में है जिन्हें दुनिया के सामने लाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो बस निभाइए अपनी जिम्मेदारी और जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज स्वीकार कीजिए।

0: नमस्कार चंडीगढ़, मैं हूं ओजस्वी शर्मा, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर। अपने शहर चंडीगढ़ में बहुत सी जगहें, बहुत सी कहानियां, बहुत से ट्रेडिशंस और बहुत सारा टैलेंट है जो कि मैं मानता हूं कि पूरे भारत को पता होना चाहिए। बस एक ही मौके की तलाश है और यही वो मौका है। दिस इज योर चांस। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो बनाइए और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने लाइए। माई वेव्स OTT पर लॉगिन कीजिए, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो 31 अगस्त 2026 तक अपलोड कर दीजिए। सो डोंट जस्ट एक्सप्लोर योर सिटी, डिस्कवर इट्स जेम। दिखा दो पूरे भारत को जो आपके अंदर छुपा हुआ जेम है। शूट इट, शेयर इट, शो इंडिया।
1: दोस्तों, प्रोग्राम FM लाइफलाइन में इस बार हमारे साथ रहेंगे प्रोफेसर अमित गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी, PGI चंडीगढ़। टॉपिक रहेगा कॉर्निया डोनेशन, यानी नेत्रदान। नेत्रदान कैसे हो सकता है, इससे जुड़ी अधिक जानकारी, किसी शंका का समाधान आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें। हमारे नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। आज बाद दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा।

आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार और कार्यक्रम में अब बारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचारों की। पहले राष्ट्रीय समाचार। झारखंड में छात्र आंदोलन के बाद 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द, 13 की सीआईडी 6 पर रोक।

दिल्ली जल बोर्ड टेंडर केस में सत्येंद्र जैन समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए। भारत को ध्यान में रखकर कंटेंट की निगरानी करे मेटा, कहा सरकार ने। संगठन के बाद सरकार में इसी माह बदलाव संभव हो सकता है, 2 दर्जन मंत्री इधर उधर किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया, मृत्युदंड की सजा के लिए फांसी देना ही सही तरीका। वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों को राहत, अब कटरा तक दौड़ेगी साबरमती एक्सप्रेस, अक्टूबर से 27 गाड़ियों का समय बदलेगा। और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में, ट्रंप भारतीय चुनाव व्यवस्था के मुरीद हुए, बोले सीईसी ज्ञानेश कुमार के बिना वैध फोटो आईडी अमेरिका में चुनाव कराने पर जताया आश्चर्य।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
3: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
2: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
4: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं,
5: इग्नोर नहीं, याद करो।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट AIDS कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

कार्यक्रम आज का अखबार में अब बारी आ गई है लोकल और रीजनल हेडलाइंस की। स्थानीय खबरों में चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का गठन, रूल्स नोटिफाई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की पहचान करेगी काउंसिल। एसआईआर पर 20,000 से अधिक हियरिंग हुई पेंडिंग, नए वोटर बनाने के लिए जमा हुए 7,026 फॉर्म्स। जीएमसीएच 32 में एमबीबीएस के लिए 155 की प्रोविजनल सूची जारी। अब कुछ क्षेत्रीय समाचार। पूनिया को पंजाब, चूक को गुजरात, भाजपा का प्रचार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा, हरियाणा के 4 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, वीरेंद्र कुमार को द्रोणाचार्य अवार्ड। 10 साल में तीसरी बार पंजाब के किसी भी खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड नहीं मिला।

0: हरियाणा में नए नियम तैयार, गांव में हर घर व जमीन को सर्वे के बाद मिलेगा अलग नंबर, और हरियाणा में शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के चयन की लिखित परीक्षा 22 को होगी। तो ये थी लोकल और रीजनल हेडलाइंस। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज 10:05 पर लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ होगा, और आज के कार्यक्रम का विषय आपको बता दें, आज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है, और आज इसी पर आज हमारा विषय रहेगा, मानवता की रक्षा हो सबका नारा, ये बढ़ाए करुणा और भाईचारा। और हमारे इस कार्यक्रम में आपसे हम करेंगे बातचीत, 10:05 पर हमें रहेगा आपकी फोन कॉल्स का इंतजार। और अब समय कह रहा है कि फिलहाल इस कार्यक्रम से आपसे ले ली जाए इजाजत, तो इसी दुआ के साथ और इसी प्रार्थना के साथ कि आपका आज का दिन हो शुभ, आप रहें स्वस्थ और हैप्पी हैप्पी, मैं शालिनी आपसे कार्यक्रम आज का अखबार से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।
1: आज का अखबार।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। प्रातः के 10:00 को है, अब से कुछ ही पलों में आपको ले चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली हिंदी में समाचारों के लिए, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर तक पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की योजना को स्वीकृति दे दी है।
1: इसका स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये योजना पहली सितंबर से दो चरणों में लागू की जाएगी।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। योजना के अंतर्गत पात्र सीजीडी कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान भी तैनात किए जाएंगे। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया टीडीपीएल द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर एसआईटी की जांच और जारी सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण प्रदान करने में तेज वृद्धि हुई है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण रूपरेखा के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण

0: बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का था। गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु की 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर को दूरदर्शी शासक बताया। संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन स्थगित कर दिए हैं। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत के 2 मैच से 3 अंक हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच ड्रॉ करना आवश्यक है। भारत ने अब तक वेल्स पर जीत दर्ज की है, जबकि उसे इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन आज श्रीलंका अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगा। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लाइव फोन इन प्रोग्राम हैलो चंडीगढ़ लेकर हाजिर होंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: सिर्फ 1 रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
3: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा,
2: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
3: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं वर्सटाइल मशीन बद्दी।
3: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
4: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
3: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी,
4: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
2: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।
1: सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हेलो चंडीगढ़। और जैसा कि आप जानते ही हैं, यह है एक लाइव फोन इन प्रोग्राम, यानी हम और आप फोन के जरिए बात कर सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और आज की अगर हम बात करें तो श्रोताओं, जैसा कि हमने आपको बताया, आज है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, आज विश्व मानवतावादी दिवस है, जो कि हर वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। और आपको बता दें कि ये दिन मनाने के पीछे क्या कारण है, ये दिन उन सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करता है, उनको समर्पित है, जो कि अपने जीवन की परवाह किए बिना संकटग्रस्त लोगों की सहायता करते हैं। यानी कि अपनी परवाह किए बगैर दूसरों की मदद करना, ये है इस दिन को मनाने के पीछे की कहानी। और ये विश्व समुदाय को संकट प्रबंधन और आपदा राहत के महत्व के प्रति संवेदनशील भी बनाता है, लोगों को प्रेरित करता है कि वो संकट में फंसे व्यक्तियों की सहायता करें, खुद से पहले दूसरों की मदद करें। युद्ध और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मानवाधिकारों की सुरक्षा और शांति स्थापना के महत्व को भी उजागर करता है आज का दिन।

0: यानी कि विश्व मानवतावादी दिवस। और इसीलिए आज के कार्यक्रम का जो विषय है वो आपको हम बता दें, आज का विषय है मानवता की रक्षा हो सबका नारा, ये बढ़ाएं करुणा और भाईचारा। दोस्तों, वैसे तो हम सबको ही मानव जीवन मिला है, लेकिन हम सब में अगर मानवता, जो कि मानव का श्रेष्ठ गुण है, अगर वो नहीं है तो फिर हमारा मानव होने का जो कहीं कर्तव्य है और कहीं फायदा है वो शायद नहीं है। इसलिए मानव का सबसे बड़ा गुण है मानवता, वो अगर हमारे अंदर है तो फिर हम एक श्रेष्ठ मानव हैं। और इसीलिए आज का दिन ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, दूसरों की रक्षा करना, दूसरों की मदद करना आगे बढ़कर, चाहे फिर सिचुएशन कैसी भी हो। तो चलिए आपको बता देते हैं हमारे फोन नंबर्स। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172 और हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617, 2660619। इससे पहले कि हम कार्यक्रम की पहली कॉल लें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप हमें कॉल करते हैं रेडियो सेट से दूरी बनाकर कीजिए, ताकि वक्त जाया ना हो आपको ये बताने में कि आपकी आवाज़ जो है वो गूंज रही है, और कम से कम समय लें ताकि और लोगों को भी बात करने का मौका मिले, क्योंकि हमारे लिए आप सभी, बिल्कुल सभी के सभी, जितने भी हमारे श्रोता हैं सबके सब उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कार्यक्रम में कॉल्स का सिलसिला और लेते हैं कार्यक्रम की पहली कॉल। कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार, हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आप बात कर रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: मैडम, मैं सुशील शर्मा हिमाचल से बोल रहा था।
0: सुशील शर्मा
1: जी,
0: जी सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद मैडम जी।
0: सुशील जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा अगर हो सकता है तो नेटवर्क एरिया में चले जाए।
1: मैडम, हूँ तो मैं बाहर ही हूँ। तो
0: जी जी,
1: नेटवर्क में
0: जी, कहिए अपनी बात, कहिए सुशील जी, क्या कहना चाहते हैं
1: जी। जी मैडम, सीधा विषय पे आते हैं।
0: बिल्कुल,
1: संकट के समय तो जो आपका आज विषय है मानवता दिखानी चाहिए मैडम जी।
0: जी,
1: संकट के समय जो है इस तरह का पुनीत कार्य करना अपने आप में एक, जिसको कहते हैं, देवतुल्य कार्य है।
0: बिल्कुल,
1: मतलब संकट के समय यदि कोई आपदा में ग्रस्त व्यक्तियों को यदि जो है सहायता मिले तो मतलब देवतुल्य कार्य है वो, तो
0: जी
1: देवता के समान है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं मैडम जो है पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तराखंड है, हिमाचल है, यहाँ प्राकृतिक आपदाएं अक्सर आती रहती है, और हिमाचल में तो 2023 में भी, पीछे भी, पिछले साल भी बहुत जो है,
0: बिल्कुल जी,
1: नुकसान हुआ था
0: उत्तराखंड हिमाचल में, बहुत नुकसान हुआ था, और अभी भी देखिए कल भी लैंडस्लाइड्स, बादल फटने की घटना हुई है वहाँ पर। जी
1: जी मैडम
0: जी,
1: सैकड़ों बहुमूल्य जिंदगियां चली गई।
0: बिल्कुल,
1: और लोगों के जो है जीवन भर की जो पूंजी है वो अपने जो है मकान चले गए, जो है जमीनें चली गई
0: जी,
1: और उसके आपदा के जख्म तो अब तक नहीं भरे मैडम।
0: देखिए, जिनका घर चला जाता है सुशील जी, या जिनका जिंदगी भर की पूंजी, जमा पूंजी, घर आपके जितने भी, और देखिए पशुधन भी रहता है पहाड़ी इलाकों में, वो पशु नहीं होते, वो अपने परिवार जैसे ही रहते हैं, वो भी चला जाता है, कईयों के अपने परिवार के लोग चले जाते हैं, वो पीड़ा हम चाहकर भी महसूस नहीं कर सकते है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, मैडम जी, और बाकी नुकसान की क्षतिपूर्ति तो हो जाती है मैडम जी, चलो मकान वगैरह, पैसा वगैरह हो सकती है, लेकिन जिंदगी चली जाए ये तो बहुत ही, जिसके वही समझ सकता है जिसका कोई अपना
0: बिल्कुल
1: इस आपदा में चला गया हो
0: जी।
1: तो इस हमारा तो ये दायित्व है मैडम जी कि हमें तो एक तो जो है जो अवैध रूप से कटान कर रहे हैं, जो है वृक्षों का कटान कर रहे हैं, या खनन है, अवैज्ञानिक खनन है, इस तरह की गतिविधियों पर जो है रोक लगानी चाहिए
0: जी, उससे हमें बचना चाहिए सुशील जी। और जो हमारे पहाड़ी इलाकों में हम देखते हैं कि जब भी कोई आपदा आती है तो वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो बढ़ चढ़कर मदद करते हैं बाहर से फंसे हुए लोगों को, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखते हैं, और सैल्यूट है उन सभी लोगों को, और आज हम उन ऐसे ही लोगों को जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि मदद करते हैं आगे बढ़कर, बिना सोचे समझे कि वो सामने वाला कौन है, वो मेरे किसी काम आ सकता है या नहीं, वो मेरा कोई अपना है, पराया है ना,
1: ऐसे इसमें तो कार्य करना ही चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: किसी इसके क्या

0: से है, जो इस कार्यों में जुड़ी है, संस्थाएं चाहे कोई भी संगठन है, राजनीति से ऊपर उठकर,
1: बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति ऐसे कामों में हो ही नहीं सकती और होनी चाहिए भी नहीं। अगर हम राजनीति करने लगेंगे तो शायद किसी को भी नहीं बचा पाएंगे। सुशील जी,
0: बिल्कुल, जो भी कोई भी संगठन कर रहा है, कोई भी संगठन इस तरह का कार्य कर रहा है, वो सराहनीय है। और हमें खुद भी अपने आस पास कभी भी इस तरह की घटनाएं घटित हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए, खुद भी इस तरह के जो है प्रयास करने चाहिए कि जो है जान माल की क्षति को रोका जा सके। यही मानवता है, यही मानवता है,
1: बिल्कुल यही मानवता है। सुशील जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल।
0: आप शालिनी है मैडम जी?
1: जी मैं शालिनी हूँ।
0: जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात।
1: जी आपसे बात करकर भी बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी, धन्यवाद।
1: लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में आपका स्वागत है जी।
2: शालिनी मैडम जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं?
2: मैं सुरेंद्र कुमार बोल रहा हूं चंडीगढ़ से जी।
1: जी सुरेंद्र जी, कैसे हैं आप और क्या?
2: मैं ठीक ठाक जी, आप सुनाए? बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल ठीक है जी,
2: बात करके
1: जी।
2: और आज के विषय में मेरा विचार है कि मानवता के प्रति हमें हमेशा सहायता ही करनी चाहिए।

0: जी धन्यवाद।
1: लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में आपका स्वागत है जी।
0: हाँ जी मैडम जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: मैं सुरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से जी।
1: जी सुरेंद्र जी कैसे हैं आप और क्या?
0: मैं ठीक ठाक जी, आप सुनाए? बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल ठीक है जी,
0: बात करके
1: जी।
0: और आज के विषय में मेरा विचार है कि मानवता के प्रति हमें हमेशा सहायता ही करनी चाहिए, क्योंकि मानव को ही परमात्मा ने बुद्धि का एक बहुत बड़ा उपहार दिया है।
1: वाह क्या बात कही आपने, बहुत अच्छी बात सुरेंद्र जी। जी
0: हाँ जी, तो हमें एक दूसरे की तकलीफ समझनी चाहिए। आपदा तो प्राकृतिक आ जाती है, तो उस टाइम हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वार्थ अपना छोड़ के दूसरे की सहायता हरदम जरूर करनी चाहिए जितना भी संभव हो सके
1: जी। और वो एक गाने के जो बोल है वो है ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, है ना?
0: बिल्कुल ठीक है जी।
1: जी तो आपने जो बात कही उससे हमारे जहन में ये पंक्तियां आ गई, बिल्कुल सही है कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने लिए हर कोई कमाता है, है ना? अपने लिए अच्छे से अच्छा हम करते हैं, लेकिन कहते हैं कि इस दुनिया से जाने के बाद उसी व्यक्ति को याद किया जाता है जो दूसरों के लिए कुछ कर गुजरे।
0: जी जी, ये सभ्यता का जी ये बहुत बड़ा उदाहरण है।
1: बिल्कुल
0: जी
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, हमेशा की तरह आपने बहुत संक्षेप में बात की लेकिन बहुत अच्छी बात की।
0: थैंक यू
1: जी, धन्यवाद।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी।
2: गुड मॉर्निंग, सुनीता डोगरा बोल रही हूँ।
1: सुनीता जी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप और क्या आज आपके विचार हैं बताइए।
2: अच्छा मैम, मेरे विचार है एक स्टोरी के रूप में मैं बताऊंगी
1: जरूर,
2: क्योंकि मानवता जो एक ऐसी चीज है, इसमें कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, चीज बीच में आता है ना मैम।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि हमारे दिल से, और ये बच्चों में ना जरूर डालें संस्कार, पेरेंट्स करेंगे तो बच्चे अपने आप सीखेंगे। नंबर वन
1: बिल्कुल
2: स्टोरी है कि एक बार दो व्यक्ति जाते हैं, बोले हज करने जाना, तो रास्ते में चलते चलते एक डॉग है वो पानी में कीचड़ में फंसा हुआ था, तो एक चला गया, दूसरा उसी को निकालता रहा, दूसरा आ गया हज करके, बोलता मैं तो करे आया। तो जो नहीं गया था उसको उस शक्ति ने बताया कि मैं तो परीक्षा ले रहा था, तुझे तो मैंने यहीं पर दर्शन दे दिए।
1: बिल्कुल सही, देखिए उसका हज तो वहीं हो गया है ना।
2: वही वही मैम, मानवता ही है। हम मूर्तियों में क्या ढूंढते हैं, कुछ नहीं। किसी भी धर्म की बात करें, जब हम दूसरे धर्म के को नहीं मानेंगे, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो शक्ति तो वो नहीं है धर्म का कोई भी
1: जी। और देखिए
2: वो एक विश्वास है
1: भगवान ने, अगर हम कहते हैं ना कि भगवान ने हमें इस धरती पर अगर भेजा है तो हर किसी का एक उद्देश्य है, वो एक अलग बात है कि हमें कई बार थोड़ा समय लग जाता है उस उद्देश्य को पहचानने में। हर किसी को इस धरती पर भेजा गया है कि हम अपना कर्म करें और अच्छे कर्म करें।
2: असली बात यही है कर्म वाली मैम, और हर बंदा अपने ही परिवार को पालने में उसी में ही, चाहे उसको लूट के, चाहे ईमानदारी से, कोई कैसा एग्जाम्पल मिलता, कोई कैसा चला रहा है अपना गुजारा
1: जी। और
2: मैम ये जो चीजें हैं, मैंने एक दिन हम आ रहे थे यहाँ अंबाला से, बेटा बड़ा वाला, तो उसने गाड़ी आगे क्रॉस करके लगा दी, और हमें बोलता मैं अभी आया, तो रोड के सेंटर में खड्डा था, उसमें खा पी के आदमी बेचारा पड़ा हुआ था कोई, उसने उसको निकाला, पीछे ट्रक आ रहा था, उसको इशारा करके लाइट अंधेरा हो गया था मैम। फिर उसने हमें बाद में बताया, क्योंकि पहले बताता तो उसकी जान ना बचा पाता, चाहे नशे में क्या कुछ है, मतलब जान तो मैम वही है ना, दिल जिंदा है तभी नशा करेगा, जो गलत काम भी करेगा। बंदा जिंदा रखना हमारा फर्ज है, कि वो इसमें मुसीबत में है, वो मानवता हमें निभानी है। नशा है कि नहीं है, कुछ नहीं खा पी के मतलब पड़ा हुआ था, उसको बचा के आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसे एक बार एक गाड़ी पलट गई, तो मेरे छोटे बेटे ने दीपपुर फ्लाईओवर पे डकोली वाले पे, उसने दोस्त को बुला के, दोनों बुजुर्ग थे, उनको गाड़ी को सीधा नेचुरली हेल्प ली और किया, उन्होंने बड़ा थैंक्स किया और उनकी हेल्प करी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और एक बार हमारे नेबर है, यही लड़के, हम नए नए घर में आए थे, तो लड़के का स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया, और बेटा अचानक छोटा हुआ चले गया, भगवान ही हेल्प के लिए भेज देते, तो बोलता ये तुम्हारा पड़ोसी है, अभी बने ही थे पड़ोसी, तो आज तक याद करता है। तो मैम बच्चों के अंदर ये चीजें भरी हुई है, भगवान की दया है,
1: बिल्कुल
2: ऐसा ही कर्म बच्चे करें,
1: भगवान की दया है और आपके कर्म है। स्मृता जी बहुत अच्छी बात है कि आपके बच्चों में दया भाव है, और मानवता का जो ये सर्वश्रेष्ठ गुण जो है वो मानवता ही है मानव में, और वो गुण जिसमें हो वो सबसे अच्छा मानव कहलाता है।
2: सबसे गंदा सीन का वो तय वीडियो जब बनाते हैं रोड पे
1: जी जी, उससे हमें सबको बचना चाहिए। स्मृता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये जो अपनी छोटी छोटी कहानियां हमसे शेयर की उसके लिए।
2: बिल्कुल व्यूज नहीं कलेक्ट करने उसमें मैडम, मानवता दिखाने की जरूरत,
1: बिल्कुल
2: हमारा भी कभी कोई हो सकता है,
1: नेकी कर और दरिया में डाल, है ना स्मृता जी?
2: दरिया में डाल, बहुत अच्छी कहावत है मैम, अभी समझ आती है सारी कहावतें जब बड़े हो गए ना।
1: बिल्कुल
2: मीनिंग इनके ये अप्लाई होती है ना लाइफ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
1: यू टू स्मृता जी, धन्यवाद,
2: वेलकम।

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: दोस्तों, प्रोग्राम FM लाइफलाइन में इस बार हमारे साथ रहेंगे प्रोफेसर अमित गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी, PGI चंडीगढ़. टॉपिक रहेगा कॉर्निया डोनेशन यानी नेत्रदान. नेत्रदान कैसे हो सकता है, इससे जुड़ी अधिक जानकारी, किसी शंका का समाधान आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें. हमारे नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619. आज बाद दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा.

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत. डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ. क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़. और कार्यक्रम में आज का विषय है मानवता की रक्षा हो सबका नारा, ये बढ़ाए करुणा और भाईचारा. और देखते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर. हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत. आप कहाँ से बात कर रहे हैं, अपना नाम बताएं.
2: गुड मॉर्निंग मैम.
1: वेरी गुड मॉर्निंग.
2: बोल रही हूँ
1: जी,
2: चंडीगढ़ 49 सेक्टर 49D से.
1: मोनिका जी, चंडीगढ़ सेक्टर 49D से.
2: हाँ
1: जी मोनिका जी, स्वागत है पहले तो आपका कार्यक्रम में.
2: बहुत बहुत धन्यवाद मैम
1: जी. क्या कहना चाहेंगी
2: आज के विषय पर? मैं अपने विचार एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगी मैम.
1: बिल्कुल
2: जी. हेलो
1: जी मोनिका जी, जरूर सुनाए.
2: तमाशा देख ताली बजा, यूं जीवन को बना रहे हो सजा. इंद्रियों के उपहार सहित शरीर ये पाए हो, सुप्त रहे जीवन को धोने की धुन गुन क्यों गुनगुनाए हो. मस्तिष्क को वा क्या गुर सिखाए हो, भीड़ का हिस्सा बना सदैव सुलाए हो. आत्मा को दरकिनार रखने में कलाकार हो, करनी और कथनी में फर्क रखने के सलाहकार हो. जागो, जीवन की गाड़ी के उतार चढ़ाव देखो, सफर के साथियों की बाह पकड़ना सीखो. लोक भलाई का एक बूटा लगाओ ना, लीक से हटकर चलना स्वयं को सिखाओ ना.
1: जी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी. आपने स्वयं लिखी है?
2: हाँ जी मैडम.
1: बहुत बढ़िया मोनिका जी, बहुत अच्छा लिखती हैं आप. और आज के इस कार्यक्रम में आपने अपनी एक कविता सुनाई और आपका

0: संदेश आपने कविता के माध्यम से दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: थैंक यू मैम, थैंक यू
0: जी।
1: फॉर गिविंग
0: शुक्रिया,
1: टाइम मैम।
0: श्योर, थैंक यू सो मच। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, अपना नाम बताइए जी और आप कहाँ से बात कर रहे हैं
2: जी। नमस्ते मैडम जी, मैं मेजर विजय आर्या, HN 42 फेज 2 मोहाली चंडीगढ़।
0: जय हिंद सर।
2: इसमें आपको बता दूं
0: जी।
2: हाँ जी मैडम जी, मैं इसमें बता दूं, मैं इस समय जर्मनी से बोल रहा हूँ और कल रात ही 11 बजे स्विट्जरलैंड से आए हैं
0: अरे
2: और
0: वाह।
2: हमारे इस समय सुबह के 6:15 हुए हैं।
0: सर आपकी डेडिकेशन को पहले तो हम नमन करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया कि वहाँ जाकर भी आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और हमसे जुड़ रहे हैं।
2: मैं जी यहाँ सारे प्रोग्राम सुनता रहता हूँ मैडम मेरा, क्योंकि चंडीगढ़ ही मेरा दिन है,
0: जी
2: उसी से दिन चढ़ता है उसी से खत्म होता है। मेरे मोबाइल पे ऐप फीड किया हुआ है,
0: जी
2: अनिल पुंजी ने ये फीड करवा दिया था
0: जी,
2: और आज तक इसी से ही मेरा काम चलता है। मैं 3 दिन है, 1 हफ्ता रहे हम वहाँ पे स्विट्जरलैंड में और इसी चंडीगढ़ से ही सारे मेरा टाइम पास हुआ है।
0: दिल से धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आज के लिए संदेश भी दे दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं, आज विश्व मानवतावादी दिवस है।
2: मेरी जैसे नींद खुली तो मैंने मानवता के ऊपर आपका ये टॉपिक सुना तो मेरे को एकदम अपनी पुरानी घटना याद आ गई।
0: जी शेयर करें
2: तो
0: जरूर।
2: मैं आपको हाँ मैं बताना चाहता हूँ, मैं 1971 की वार में 8 दिसंबर को हम छम जौड़िया में थे
0: जी,
2: वो डिप्लॉयड थे, तो वहाँ पे हमारी माइन की लगी हुई थी तो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया
0: जी,
2: और वहाँ पे हमारे हम पूरी तरह दब गए। मैं शॉर्ट में ये बताऊं कि हमें किसी तरह बाद में निकाला गया, जब सायरन क्लियर हुआ
0: जी
2: तो हमें निकाला गया, तो हम जिंदा है और आज तक आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। अभी जो मानवता के ऊपर आया उसी से मेरा ये है कि मैं सब से समाज सेवा का ही काम करता हूँ, कहीं भी चला जाऊँ 30 साल फौज में नौकरी करने के बाद भी। तो मेरे को याद है कि मैं 80 से 85 तक चंडी मंदिर में पोस्टिंग था मैडम जी। मैं
0: जी
2: हेलो
0: जी जी जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है जी।
2: हाँ जी हाँ
0: जी।
2: तो वहाँ पे हम पोस्टिंग थे तो बारिश हो रही थी, मैं मार्केट जा रहा था तो हमारे घर के सामने रोड थी और पूरी सड़क भरी हुई थी
0: जी।
2: जैसे ही मैं जा रहा था तो किनारे में देखा तो आवाज आई, वो बच्चे डूब गए, बच्चे डूब गए, और बिल्कुल मैं भी उसी की तरफ भागा और उस नाला था बहुत बड़ा, मैंने उसमें छलांग लगाई, 2 बच्चे उसमें गिर गए थे। तो मैंने उनको अपने यार चेन बना दी, उस अपने आप खड़ा हो गया आगे ताकि बच्चा देखा देखी, और भी कई लड़के बंदे वहां पे जो जा रहे थे उन्होंने भी उस नाले में, छोटा नाला था, उसमें छलांग लगाई ताकि ये बच्चे आगे ना बह जाए, बहुत तेज पानी बह रहा था
0: जी। बहुत अच्छी बात
2: हो
0: जी।
2: हाँ,
0: सर आपकी
2: तो
0: आवाज
2: हमने
0: हम तक बिल्कुल साफ साफ पहुंच रही है जी।
2: आपने 2 बच्चों को निकाला उस दिन, छोटे बच्चे थे वो, तो हमें मेरा कहने का मतलब यह है हमें जब भी कभी मौका मिले अपने आप को इस तरह के कोई औकत आए, आपके ऊपर अड़चन आए या किसी को मुसीबत में देखे तो अपनी मदद करनी चाहिए। वो मेरे को सीन आज तक नहीं भूलता है, ये 1985 की बात है चन्नी मंदिर की जब मैं वहाँ पोस्टिंग था।
0: सर आपको ये सीन आज तक, आपको ये सीन आज तक नहीं भूला, आप सोचिए वो 2 बच्चे जिन्होंने आपको उन्हें बचाते हुए देखा होगा, उनके उनकी उस समय जो सिचुएशन थी उससे आपने उनको बाहर निकाला, वो उनको कैसा महसूस हुआ होगा और वो जिंदगी भर आपको याद रखेंगे।
2: बिल्कुल
0: जी,
2: हम तो भूल गए, पता नहीं कौन थे कब थे
0: जी,
2: ये तो और जो भी देख रहे थे सभी ने कोशिश किया कि बच्चे आगे ना निकल जाए, सबने अपने कोई बड़ा ही रोक सकता था नालों में से बच्चे।
0: सर देखिए ये ऐसा ही होता है,
2: कहने का मतलब मानव
0: एक किसी एक व्यक्ति को पहल करनी पड़ती है और आप वो व्यक्ति बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आपने इतने साल देश की सेवा की है और वो सेवा का जज्बा जब आपके अंदर हो सर तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं।
2: बिल्कुल
0: जी,
2: जी बिल्कुल,
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इतनी दूर से हमसे आज जुड़े हैं और आपने इतना अच्छा हमसे अपनी जीवन का प्रसंग जो है हमसे शेयर किया, और हम जानते हैं कि आपसे प्रेरणा लेकर और भी लोग मदद करें।
2: होता है वाक्य प्रोग्राम होता है तो मेरे सीन सामने आ जाता आंखों के
0: जी,
2: और
0: जी
2: मेरे घर के सामने से ही निकल रहा था मैं बिल्कुल, तो नाला था बहुत बड़ा ये
0: जी।
2: ठीक है मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़, हेलो लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में आपका स्वागत है जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ और कार्यक्रम में आज का विषय है मानवता की रक्षा हो सबका नारा, ये बढ़ाए करुणा और भाईचारा। हेलो
3: हेलो हेलो मैम, गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: मैम मैं सूरज बात कर रहा हूँ तहसील चौकी स्टेशन HP से।
0: सूरज जी कैसे हैं आप और क्या कहना चाहते हैं आज? जी जी सूरज जी
3: बढ़िया, आप बताओ?
0: हम एकदम ठीक सूरज जी।

0: आपका फोन आ गया तो और अच्छे हो गए। जी क्या कहना चाहते हैं सूरज जी, आज हमारा जो आज टॉपिक है वो आपको पता है? आपकी आवाज कुछ साफ नहीं आ रहा सूरज जी।
1: आप क्लियर आ रही है मैम?
0: जी बीच में थोड़ी थोड़ी सी डिस्टरबेंस है, शायद मौसम की वजह से होगी। जी सूरज जी,
1: जी
0: कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा
1: तो मैं ये बोलना चाहूंगा ना जी, क्या क्या बोलते हैं, वैसे मानवता मैंने अपनी तरफ से तो नहीं देखी, लेकिन मैं एक बार मेरे साथ पता क्या हुआ था, मेरे ऊपर मेरे पैर के ऊपर मैं चला हुआ ना साइड वजह से, तो कोई किसी गाड़ी वाले ने मेरे पैर के ऊपर गाड़ी चला दी, तो वहां आस पास लोग इकट्ठा हो गए, और फिर जिस ड्राइवर ने मतलब गाड़ी चढ़ाई ना, मतलब उस ड्राइवर को इतना फोर्स किया कि भाई इसको हॉस्पिटल लेकर जा, फिर मजबूरन उस आदमी को मतलब मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा, और बंदा पूरी मतलब समझ रहे हो ना आप
0: जी,
1: वो उसने मतलब पूरा मेरे पैर का एक्सरे करवाया और अपना क्या कहते हैं सब कुछ किया, मतलब दवाइयां
0: जी, तो उसने आपका पूरा ध्यान रखा, उससे गलती से एक्सीडेंट तो हो गया, आपके पैर पे उसने गाड़ी चढ़ा दी, लेकिन आपका पूरा पूरा ख्याल रखा, यही कहना
1: पूरा ख्याल रखना पड़ा मैम, क्योंकि लोग आसपास जो लोग थे ना वहाँ उन्होंने फोर्स किया उस आदमी को।
0: जी जी देखिए ये भी बहुत बड़ी बात होती है ना, हमारे सामने अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उसे ना होने दें, और एक दूसरे के लिए अगर हम खड़े हो जाएं, जैसा कि हमारे पिछले कॉलर जो हैं उन्होंने भी शेयर किया कि एक व्यक्ति जब खड़े हुए और बाकी लोग उनके साथ साथ जुड़ते गए, और देखिए कैसे उन्होंने बच्चों को बचा लिया उस नाले से, बरसाती नाले से।
1: क्योंकि मैम देखो ना, अगर लोग उसको फोर्स नहीं करते तो वो आदमी पैर पर गाड़ी चढ़ा के शायद भाग जाता और हिट एंड रन का केस बन जाता।
0: जी जी जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि हम एक दूसरे के लिए खड़े हों, एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ये जो है मानव का सबसे अच्छा गुण है, और वो है मानवता।
1: बिल्कुल मैम, ठीक बोल रहे हैं आप।
0: शुक्रिया सूरज जी हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी
1: ओके मैम, ओके।
2: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे वर्सेटाइल मशीन बद्दी।
3: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
4: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
3: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी,
4: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
2: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।

0: Hey Chandigarh, this is Sahaj Sabharwal, an author, influencer, motivational speaker, youth icon from Jammu and Kashmir and an aeronautical engineer. So main aapse poochna chahta hu ki aapke CV mein bhi koi aisi jagah hai ya kahani hai, tradition ya talent jo India ko pata hona chahiye? Then this is a chance for you all, Gems of India Challenge mein aap 1 se 3 minute ki apni video banaye aur apne shahar ki unique pehchan ko desh ke samne bataiye. बस आपको क्या करना है कि माई वेव्स पर आपको लॉगिन करना है और जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो 31 अगस्त 2026 तक आपने अपलोड करनी है. डोंट जस्ट विजिट योर सिटी, डिस्कवर टू, सो यू क्रिएट देन पोस्ट देन यू हैव टू स्प्रेड इट इन द होल इंडिया. थैंक यू.
1: FM 107.2 MHz पर इस समय आप जुड़े हैं विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से और यह है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़. श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं मानवता की रक्षा हो सबका नारा, ये बढ़ाए करुणा और भाईचारा इस विषय पर. और बहुत से श्रोता अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने मदद की दूसरे लोगों की जब वो किसी मुसीबत में फंसे हुए थे और मानवता का श्रेष्ठ उदाहरण दिया. और बहुत से कॉलर्स हमसे बात कर रहे हैं इस विषय पर क्योंकि आज है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद बात करते हैं अगले कॉलर से.
2: दोस्तों, प्रोग्राम एफएम लाइफलाइन में इस बार हमारे साथ रहेंगे प्रोफेसर अमित गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़. टॉपिक रहेगा कॉर्निया डोनेशन, यानी नेत्रदान. नेत्रदान कैसे हो सकता है, इससे जुड़ी अधिक जानकारी, किसी शंका का समाधान आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें. हमारे नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619. आज बाद दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा.

0: और श्रोताओं, आज है विश्व मानवतावादी दिवस और आज हम बात कर रहे हैं मानवता की रक्षा हो सबका नारा, ये बढ़ाए करुणा और भाईचारा। और करुणा और भाईचारे की जब बात होती है तो हमारी संस्कृति में तो यह निहित ही है कि हमेशा हम सबको साथ लेकर चलते हैं, फिर चाहे वो अपने देश की बात हो, अपने आसपास की बात हो, या फिर संपूर्ण विश्व की या इस धरा की बात हो, क्योंकि हम पूरी पृथ्वी को एक बड़ा परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है उसे लेकर हमेशा हम साथ चलते हैं। और हमने हमेशा ये देखा है कि हमारा देश भारत विश्व में अगर कोई भी आपदा आती है तो आगे बढ़कर, चाहे फिर वो भूकंप हो या फिर वो बाढ़ हो या किसी भी तरह की कोई भी आपदा हो, हमेशा सहायता करता है। या फिर हमारे देश के अंदर की बात हो, हम देखते हैं कि हमारे देश में बाढ़ का खतरा जो है वो हर साल मंडराता रहता है और बाढ़ आती है। जैसे कि अभी हम आसाम की बात करें तो वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहुँच चुके हैं, देश भर से लोग खुलकर उनकी सहायता कर रहे हैं, चाहे वो मानवीय सहायता हो, वहाँ पर पहुँच कर हो, यानी कि फिजिकली वहाँ जाकर वो सहायता कर रहे हैं, या फिर वो दान देकर हो, या फिर कुछ ज़रूरत का सामान भेज कर हो। हमेशा हम सभी एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं और यही हमारा सच्चा धर्म भी है, क्योंकि अगर हम मानव होकर दूसरे मानव की पीड़ा ना समझें, उसे कैसा महसूस हो रहा है इस समय अगर वो किसी भी कष्ट में है, किसी भी तकलीफ में है, तो शायद हमारे मानव होने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। और एक हमारे कॉलर हैं, उन्होंने ये इस बहुत अच्छी बात कही थी कि एक मनुष्य ही है जिसके पास ये विवेक है, ये बुद्धि भगवान ने हमें दी है कि हम उसका सही इस्तेमाल करें और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहें। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं हमारे अगले कॉलर इस पर। लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में आपका स्वागत है जी।
1: शालिनी मैम जी को मेरी प्यार भरी नमस्ते जी।
0: आपको भी हमारी प्यार भरी नमस्ते जी। अपना नाम बताइए।
1: मैं श्री कुमार सेक्टर 42 चंडीगढ़ से बोल रहा जी।
0: जी सतीश जी, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैडम जी।
0: जी क्या कहना चाहते हैं सतीश जी?
1: मेरा पहले एक लाइन कहता हूँ
0: जी,
1: बुलाने से मुसीबत नहीं आती, बिन बुलाए मुसीबत चली आती है। ऐसे में सूझबूझ से काम लिया जाए, किसी की जान बचाई जा सकती है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही
1: आवाज आ रही है नहीं मेरी?
0: जी बिल्कुल सही, साफ साफ आ रही है आपकी। सुन जी, बुलंद आवाज।
1: ऐसा है
0: जी,
1: मैं कजेड़ी गौ को रोटी डालने जाता था
0: जी,
1: ये बात पुरानी है काफी, 4-5 साल पुरानी। मैं जा रहा था, एक लड़का जो टीन एजर था 16-17 साल का
0: जी,
1: वो एक्टिवा बहुत तेज चला रहा था और रेलिंग से टकरा गया, जो कजेड़ी की रेलिंग है उससे उसका एक्टिवा बहुत जोरदार लगा। गर्मी के दिन थे, वो लड़का गिर के बेहोश हो गया। मेरे पास पानी की बोतल थी, मैंने उसके मुंह पे पानी छिड़क दिया, वो थोड़ा होश में आया, उसके हल्की खरोंचे आई, फिर मैं उसको हॉस्पिटल ले गया जी अपनी कार में, 16 सेक्टर
0: जी।
1: देखो मैं गया कहीं और था, मैं 4-5 घंटे 16 सेक्टर हॉस्पिटल रहा, उसका ट्रीटमेंट कराया, उनके घर वालों को बताया जी।
0: बहुत अच्छी बात है सर।
1: ये हमें कुछ पता नहीं हम कब मुसीबत आ जाएगी।
0: और देखिए बहुत अच्छी बात है कि हम देखिए अपना सब समय, आपने जहाँ भी आप जा रहे हैं उसे सब छोड़ छाड़ कर हम ये ना सोचें कि मुझे वहाँ जाना है, मेरा वो काम रह जाएगा। देखिए हो सकता है कि अगर आप उस बच्चे की मदद नहीं करते तो उसे कोई ज्यादा और गंभीर चोट आ जाती या उसे कुछ भी हो सकता है।
1: कोरोना काल में कितनी मानवता की सेवा की लोगों ने।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: एक दूसरे को रोटी दी
0: जी,
1: जब कुछ ना कुछ करते रहे जी, घरों से लोगों ने खाना तक पहुंचाया जी
0: जी। और बहुत
1: लेडीज ने, चंडीगढ़ की लेडीज ने बहुत अच्छा काम किया जी
0: जी,
1: वो काबिले तारीफ है जी। जिन लोगों के कोरोना हो गया था, सील बंद घर हो गए थे, उनको उन्होंने रोटी तक पहुंचाई जी।
0: जी बहुत अच्छा काम किया। और कोरोना में बहुत सारे हीरोज जो हैं वो हमारे सामने

0: कोरोना एक बहुत बड़ी मिसाल बन के आया था जब मुसीबत आ गई थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना की बहुत सारी कहानी
0: है। कोई जबरदस्ती हो रही है या कोई मुसीबत है, हमें आगे हाथ बढ़ाना चाहिए जी।
1: जी,
0: किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए जी।
1: बिल्कुल,
0: ये भी मानवता की बड़ी बहुत बड़ी मिसाल है जी।
1: जी सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमसे शेयर की और आपसे प्रेरणा हम भी लेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई आपकी इस कहानी से प्रेरित होकर दूसरों की मदद करे। शुक्रिया। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी।
2: जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार, अपना नाम बताइए।
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से। आज का विषय एम है कि मैं इस विषय पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मानव जो अधिकार जो हम है जो हेल्प करते हैं तो हमें करनी चाहिए। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 2023-24 की बात है। तो हमारे मेरे घर के सामने एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और पूरी गाड़ी जो है बड़े खेत तक गई थी। तो खेत तक जो गाड़ी गई थी लेकिन वो महिला तो बच नहीं सकी, लेकिन हमारा जो पूरा गांव कटा होके जो है उस जो है उनकी हेल्प की। किसी ने कमल लाया, किसी ने पानी लगाया और कुछ लोग पानी पानी देने के लिए मना किया कि पानी देना। कुछ लोगों ने क्या किया, अपनी अपना ही गाड़ी अपना ही तेल खर्चे से उसको अस्पताल तक ले गया, लेकिन ले गए। तो एक एक बंदे के साथ इतना हुआ तो कम से कम हमारा जो जो पूरा गांव जो है मेरे घर के सामने पूरा गांव इकट्ठा होके फिर जाके उसकी हेल्प की। और जो जो एक महिला की तो डेथ हो गई लेकिन एक को जो है उस समय से पे अस्पताल लेके उसको बचा दिया। और सबसे बड़ी बात है जो गाड़ी पड़ी थी उस गाड़ी की निकालने की बड़ी हेल्प की तो वो भी निकाली। इस तरह से होती है मानव क्या बोलते अधिकारों की जो हेल्प करना, क्योंकि ये हमारा ये कर्तव्य है, हमें करनी चाहिए। क्योंकि खुद की ज्यादा दोस्तों की हमें मदद करनी चाहिए, इससे क्या होता है मन को भी शांति होती है और हमारी मानो कि हम भी कहीं संकट में हो सकते तो हमारी भी इस तरह से हेल्प कर सकते लोग।
1: जी बहुत अच्छी बात है। और देखिए, ऐसा हमने अक्सर देखा सुना है कि पहाड़ों में लोग अक्सर फंस जाते हैं, घूमने गए हैं, बारिश आ गई, लैंडस्लाइड हो गए, तो स्थानीय लोग उनको अपने घर में रखते भी हैं, उन्हें खाना भी खिलाते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं और उनका दवा दारू सब होता है।
2: और कहना चाहता हूँ कि मेरी मदर ने ऐसा किया, अभी एक बार कबाड़ी वाला आया था और आया था तो हमने खाना दिया, बोलते हमें भूख लगी है तो खाना भी दिया है। और हमने कई बंदे को अनजान लोग हमने अपने घर में भी रखा है और रखा भी है। और सबसे बड़ी बात है सावधानी से रखना चाहिए और फिर भी हमने उसको रखा है क्योंकि ये मानव की जो हमने इस तरह।
1: और देखिए राकेश जी, हॉस्पिटल तक भी लोग ले जाते हैं उनको अपनी गाड़ियों में बिठाकर, जैसा आपने भी शेयर किया, हॉस्पिटल ले जाना, उनका उपचार करवाना है ना वहाँ पर उनको, क्योंकि लोकल्स जो है उनको सब पता है, बाहर से जो लोग आए उनको नहीं पता होता कहाँ पर क्या मिलता है। तो ये समझना, वक्त की नजाकत को समझना कि इस समय इन्हें किस चीज की जरूरत है, वो बहुत अच्छी बात है। और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जो आज ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और कभी भी उन्होंने किसी की मदद की है। और चलिए हम सभी भी ये प्रण लेते हैं आज की हम जितना हो सकेगा एक दूसरे के काम आएंगे, है ना,
2: काम आए। जी,
1: बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी कॉल के लिए।
2: जी धन्यवाद।
1: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी, अपना नाम बताएं और कहां से बात कर रहे हैं।
3: सत श्री अकाल जी, मैं फरोजपुर तो बोल रहा हूं, अमन बड़ैच।
1: अमन बड़ैच जी,
3: जी जी
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है अमन जी, क्या कहना चाहेंगे आज।
3: अच्छा जी, अज बड़ा वधिया टॉपिक तुसीं चुनिया
1: जी,
3: मैं इहदे हवाले नाल आखना चाहांगा वी देखो पूरी यूनिवर्स दे विच इक कोई इंसान जिहड़ा दूसरियां दी खिदमत कर सकदा, इक सोच बुझ दित्ती होई है इस इंसान नूं ते इह करनी भी चाहीदी है।
1: सही गल है,
3: बड़ा खूबसूरत इक धर्म है किस दी मदद करना।
1: बिल्कुल,
3: मदद करना पुन दा काम है समझदा वां
1: जी।
3: जिथे तक होवे सानूं इहनां कोशिश करदे रहना चाहीदा, छोटी छोटियां देखो निके निके कोशिशां कवशिशां करदे रहने, इह नहीं जरूरी बहुत वड्डी किसे नूं नीड होऊगी, जरूरत होगी तां ही असीं किसे हैल्प करांगे। जिथे भी सानूं नजर आउंदा छोटी मोटी भी असीं हैल्प कर सकदे आ। अपने गुआंढ विच वेखीए ना, किसे नूं कोई खाण पीण दी जरूरत आ जां किसे दी माली जरूरत आ, किसे नूं पैसे दी फाइनैंशियल तौर दे उप्पर जां कुछ भी एनीथिंग, एबीसी सानूं करदे रहना चाहीदा है। इह चीजां छोटियां छोटियां
1: बिल्कुल, छोटी हो चाहे बड़ी हो मदद करनी चाहिए है, क्योंकि देखो असी जे एक इंसान हो के दूजे इंसान दी जे जरूरत नहीं समझी है ना, उदी मदद नहीं कीती तो साडे इंसान होने दा कोई फायदा नहीं है। फिर
3: कोई फायदा नहीं। मैं छोटी जी मिसाल दूं, लास्ट ईयर ना पानी आया सीगा, हड़ आया सीगा ते फ्लड्स आए सीगे बॉर्डर एरिया दे विच
1: जी,
3: पंजाब दे डेरबो बनानक जाण दा मौका मिलिया। मैं उत्थे वी हेल्प लई असी सारा बहुत सारे लोग इकट्ठे होके गए सीगे, असी ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੰਜ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਦਨ ਤੀਕਰ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ

0: नमस्कार श्रोताओं, मुझ राखी की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो आगे कहानी में जाने से पहले आप हमारा टेलीफोन नंबर एक बार नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है
1: 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, 8527449955।
0: तो दोस्तों चलते हैं आज की कहानी की ओर, जिसका शीर्षक है कड़वाहट। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो हमेशा छोटी छोटी बातों में गुस्सा करता था। उससे कभी एहसास भी नहीं होता था कि उसके ऐसे व्यवहार से किसी को कितनी ठेस लग सकती है। उसके परिवार में सब उसको समझाते थे कि ऐसा व्यवहार लोगों को कितना घायल करता है, पर वो इतना गुस्सा करता था कि वो किसी की सुनता भी नहीं था। ऐसे करते करते वो रोज घर में आता और घर वालों पर गुस्सा निकालता। और अब उसके परिवार वालों ने सोचा कि ऐसा क्या करें कि उसके गुस्से पर काबू पाया जाए। तो आइए सुनते हैं आगे की कहानी।
2: अरे बेटा आकाश, इधर तो आ। बेटा तेरा काम कैसा चल रहा है? कोई परेशानी तो नहीं है ना तुझे इस जगह पर? क्योंकि तेरी मालकिन नहीं है, इससे तो अच्छा व्यवहार करता है ना बेटा?
3: अरे पिताजी, आपके कहने का मतलब क्या है? कि मेरा व्यवहार खराब है? ऐसा क्या कर दिया मैंने किसी के साथ?
2: अरे बेटा, मैं तो बस पूछ रहा हूँ, क्योंकि तेरा व्यवहार और तेरा बोलने का तरीका बेटा तुझे काम पर टिकने नहीं देता। तू बात ऐसी करता है कि सामने वाला बेचारा क्या करे।
3: तो कोई गलत भी करे तो क्या मैं सहन करूँ या सुनता रहूँ? मैं उस कंपनी को भी इसलिए छोड़कर आया क्योंकि उसके मालिक ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, और ना ही मैं उसे कभी क्षमा करूंगा।
2: अरे बेटा देख, उन सारी बातों को भूल जा, अब उन बातों का कोई मतलब नहीं है। वो बातें तुझे बार बार परेशान कर रही हैं और गुस्से वाला भी बना रही है। तेरे अंदर कितना क्रोध आ गया है
3: पिताजी।

0: आपके लिए आसान होगा, मेरे लिए नहीं। मैं कभी भी किसी को क्षमा नहीं कर पाऊंगा जिसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया हो, और उन बातों को भी नहीं भूल पाऊंगा कभी मैं।
1: बेटा, मेरा फर्ज है तुझे समझाना। मैं नहीं चाहता कि तू ऐसे अपने मन में किसी के लिए कड़वाहट रखे।
0: पिताजी, पर उसने जो किया अच्छा किया क्या? ऐसा करके मैं कैसे उसे क्षमा करूं?
2: बेटा आकाश, क्या बात है आज इतना उदास? क्या बात है बेटा, फिर कुछ हुआ क्या?
0: माँ, पिताजी हमेशा मुझे ही बोलते हैं कि मैं क्षमा करूं, मैं भूल जाऊं सब कुछ।
2: पर बेटा, पिताजी तेरे भले के लिए ही तो बोल रहे हैं। वो नहीं चाहते तू ऐसी पुरानी बातों को लेकर बैठा रहे। छोड़ दे बेटा, आगे बढ़, क्षमा कर।
0: माँ, ये रोज रोज सुनकर मैं तंग हो गया हूँ, पहले पिताजी और अब आप भी।
2: अरे बेटा, ऐसा नहीं है, तू हमारा बेटा है। अगर तू दुखी होगा तो क्या हमें अच्छा लगेगा?
0: और आप हमेशा प्रिया को ही अच्छा समझते हो, क्योंकि वो मुझसे पढ़ाई में आगे है और उसकी नौकरी भी लग गई है अच्छी, इसलिए।
2: बेटा, तू अपनी बहन के लिए क्यों ऐसा बोल रहा है? वो तुझसे कितना प्यार करती है, आखिर तू उसका छोटा भाई है।
3: माँ, माँ कहाँ हो और पिताजी कहाँ है? देखो मैं आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ।
2: अरे अरे, अभी आई, पूरा घर सर पे ले लिया है इस लड़की ने।
3: ये देखो, आपकी पसंद की साड़ी और पिताजी के लिए कुर्ता और आकाश के लिए शर्ट। पर वो क्या मेरी लाई हुई शर्ट पहनेगा? वो तो मुझसे नाराज है ना।
2: अरे ऐसा क्यों बोलती है, वो तेरा भाई है, जरूर पहनेगा, आखिर तुम उसकी बड़ी बहन हो, इतने प्यार से जो लाई हो।
3: पर वो तो मुझसे बात भी नहीं करता, पता नहीं उसको कौन सी बात बुरी लगी है मेरी। मेरी कोई भी लाई हुई चीज छूता तक नहीं है वो।
2: अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े समय की नाराजगी है, बस सब ठीक हो जाएगा, तो दिल छोटा ना कर।
0: माँ, मुझे भूख लग रही है, जल्दी खाना दे दो, फिर मुझे पढ़ाई भी करनी है।
3: अरे आकाश, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है और तुम्हारा काम सब अच्छा है ना? कोई परेशानी तो नहीं है ना तुम्हें?
0: हाँ हाँ, नहीं है।
3: क्या हुआ आकाश, इतना गुस्सा क्यों?
2: बेटा प्रिया, अभी उसे भूख लग रही है इसलिए वो तुझसे बात नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, सुबह कर लेना।
3: पर माँ, मैं तो सिर्फ उससे पूछ रही हूँ ना, ताकि वो मुझसे बात कर सके।
4: अरे प्रिया बेटा, तू कब आई?
3: जी पिताजी, आज ज्यादा काम नहीं था ना, तो मैं जल्दी आ गई।
4: अरे बेटा, क्या हुआ?
3: पिताजी, आकाश ऐसा क्यों करता है मेरे साथ?
4: देख बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, वो सही हो जाएगा, बस उसे थोड़ा समय चाहिए।
3: वो मेरा छोटा भाई है, आखिर मैं चाहती हूँ कि वो मुझे दीदी कहा कर बोले, मुझसे बात करे।
4: कोई बात नहीं बेटा, वो तेरा छोटा भाई है, तू उसे माफ कर दे और वो जरूर बदल जाएगा।
3: पिताजी, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, ना ही कोई कड़वाहट, क्योंकि वो मेरा भाई है, मैं उससे कैसे नाराज हो सकती हूँ?
4: बहुत बढ़िया बेटा, मेरी बेटी कितनी समझदार है।
0: पिताजी, मुझे इसी बात पर हमेशा गुस्सा आता है, आप हमेशा दीदी को अच्छा बोलते हो और हमेशा उनकी ही तारीफ करते हो, और मैं भी तो आपका छोटा बेटा हूँ ना।
4: अरे बेटा आकाश, तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। बेटा, मैं दोनों को ही सही समझता हूँ, पर तुझे ऐसा क्यों लगता है?
0: मैं देखता हूँ इसलिए कहता हूँ, मुझे गुस्सा भी फालतू नहीं आता।
3: पर आकाश, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उससे बात भी नहीं करते हो?
0: पापा, मुझे कोई बात नहीं करनी, इनसे बोल दो इनको।
3: पर आकाश, मुझे भी तो पता चले मैंने ऐसा क्या करा है मेरे भाई के साथ।
0: बचपन से सब आपकी तारीफ करते थे और आज भी पापा देखो आपकी ही तारीफ कर रहे हैं, मैं तो जैसे कुछ हूँ ही नहीं।
3: तो तुझे इस बात का गुस्सा है कि सब मेरी तारीफ करते हैं? तो इसमें मैंने क्या किया जो तुम मुझसे बात भी नहीं करते हो? इतना नाराज, इतना गुस्सा, इतनी गड़वाहट, वो भी अपनी सगी बहन से।
0: हाँ हाँ, पता चल गया ना कि मैं आपसे बात क्यों नहीं करता।
4: अरे बेटा, इसमें इसका क्या कसूर, इसने तो अच्छा किया ना, तो ही तो इसको तारीफ मिली है।
0: क्यों, मैंने कभी अच्छा नहीं किया क्या? तो मेरी कभी तारीफ नहीं की?
4: उफ, बेटा देखो आकाश, तुम दोनों बराबर हो हमारे लिए, हमने कभी तुम दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं किया, पर प्रिया ने अच्छा किया तो उसकी तारीफ हुई, बस इसमें बेटा इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई?

0: पिताजी मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं सही हूँ, कोई फालतू की बात नहीं ये सब।
1: बेटा देख आकाश, किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है। तुझे पता भी है हमारे ऐसे व्यवहार से सामने वाले को कितनी ठेस पहुंच सकती है।
0: और मुझे भी जो ठेस पहुंची है उसका क्या, मैं कुछ भी नहीं हूँ क्या? आपकी नजरों में हमेशा आप मुझे ही गलत साबित करते हो।
1: बेटा आकाश, इसमें सही और गलत कुछ भी नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं हो, इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम्हारे अंदर कितनी गलत बातें भर गई हैं, गलत सोच आ गई है सबके लिए।
0: बस पिताजी बहुत हो गया, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना। आप अपनी प्यारी बेटी को ही समझाओ, उसकी ही तारीफ करते रहो हमेशा बस।
2: अरे आकाश, ये क्या तरीका है अपने पिताजी से बात करने का? वो तुम्हारे पिताजी हैं। तुम इतना भी भूल गए कि वो तुम्हारे भले के लिए ये सब बोल रहे हैं?
0: पर माँ मैंने क्या गलत कहा, सब सही तो है, बस सब मुझे ही बोलो कि मैं ही गलत हूँ।
2: आकाश बेटा, तुझे क्या हो गया है? तू कुछ समझने को तैयार ही नहीं है? हम तेरे माता पिता हैं, तेरे भले के लिए ही तो बोल रहे हैं।
0: मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रहा हूँ बस।
2: अरे बेटा सुन तो सही, कहाँ जा रहा है? आकाश आकाश, हे प्रभु मैं क्या करूँ, कैसे इसको समझाऊँ?
3: आकाश गुस्से से चला जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो अपने मन में बचपन से ऐसी बातों को लेकर बैठ गया जो बिल्कुल फालतू बातें हैं, जिसके कारण वो अंदर ही अंदर चिड़चिड़ा, गुस्सा, कड़वाहट, ना क्षमा, ऐसी बातों ने उसे घेर दिया। उसे उसके माता पिता इतना समझाते रहे पर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं था। बेचारे माता पिता क्या करें, उसके ऐसे व्यवहार से वो लोग परेशान हो गए, पर आकाश सुनने को तैयार ही नहीं था और अब वो गुस्से में न जाने क्या क्या कहने लगा। बेचारी प्रिया, वो अपने भाई के मुंह से दीदी सुनना चाहती थी, पर आकाश ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि अपनी बहन से कभी बात नहीं करेगा।
4: क्या करूं, मैं घर जाऊं तो फिर पिताजी का भाषण चालू हो जाएगा, कहां जाऊं आखिर?
2: मेरा बेटा कहां है, पता नहीं कब आएगा, कहां गया है गुस्से में?
5: माँ आकाश कहां चला गया, इतनी रात हो गई है।
2: बेटा आ जाएगा जब उसका गुस्सा ठंडा होगा। कोई बात नहीं, तुम खाना खा लो।
5: नहीं माँ मुझे भूख नहीं है, जब आकाश आ जाएगा ना मैं तभी खा लूंगी।
1: अरे तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो रहे हो, वो अपने आप घर आ जाएगा, उसको उसकी गलती का एहसास जरूर होगा।
4: क्या करूं, मैंने ये क्या कर दिया अपने साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने सबका दिल दुखाया है, ऐसा क्यों किया मैंने? मैंने मेरी दीदी से कितना गंदा व्यवहार किया, अब कैसे घर जाऊं और क्या बोलूं? कोई बात नहीं, मैं घर जाकर सबसे माफी मांग लूंगा।
2: कहाँ है आकाश, अब तो आजा बेटा, तुझे भूख लग रही होगी। इस वक्त लगता है आकाश आ गया।
0: माँ माँ दरवाजा खोलो।
2: अरे ये तो आकाश की आवाज है, अभी आई बेटा।
5: माँ आकाश आ गया है, मैं ना खाना गरम करती हूँ, उसे भूख लग रही होगी ना।
4: माँ मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में आप सबको बहुत बुरा भला कहा, सबका दिल भी दुखाया और पिताजी की एक भी बात नहीं सुनी मैंने।
2: अरे बेटा कोई बात नहीं, हमें बुरा नहीं लगा तेरी बातों का, तू तो हमारा प्यारा बेटा है, हमें पता है तू गुस्से में बोल रहा था।
4: पर माँ मैं ऐसे कैसे बन गया गुस्से में, मैं सब कुछ भूल गया कि मैं क्या कर रहा हूँ।
1: अरे बेटा आकाश तू आ गया, कहाँ चला गया था बेटा, तुझे पता है हम कितनी फिक्र कर रहे थे तेरी। चल अब कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ भूल जा और खाना खा के आराम कर।
4: जी पिताजी, भूख तो बहुत लग रही है।
5: ये लो आकाश गरम गरम खाना, तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है मैंने।
4: दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और आगे से मैं कभी भी आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करूँगा।
5: कोई बात नहीं आकाश, मुझे बुरा नहीं लगा और आज मुझे इतनी खुशी मिली है ना तुम्हारे मुंह से दीदी सुनकर।
4: आप सब मुझे माफ कर दो।
3: आकाश को अपनी गलती का एहसास होता है, उसे उसकी पिताजी

की एक कहानी याद आती है जो उसके पिताजी ने बचपन में सुनाई थी, और अगर हम क्षमा नहीं करते तो क्या होता है, उससे हमारा ही नुकसान होता है। हमारे मन में गलत गलत विचार, चिड़चिड़ापन, कुछ भी कोई बोले तो गुस्सा आना, ये सब आकाश के साथ होने लगा था। आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। आखिर वो इतना परेशान हुआ उन बातों से कि गुस्से में घर से चला जाता था और अकेले में सोचता था कि ये सब तो पिताजी ने बताया था, ये तो मेरे साथ हो रहा है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे माफी मांगनी होगी, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता, बस बहुत हुआ, अब और नहीं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। श्रोताओं, आशा करते हैं कि आज की कहानी से आप जरूर जागरूक हुए होंगे। दोस्तों, आप अपना अनुभव भी लिख सकते हैं। अगर आपके घर या पड़ोस में ये हो रहा है तो आज पहली पहल भी आप ही करेंगे, ये निर्णय भी लेना होगा। दोस्तों,

0: आखिर वो इतना परेशान हुआ उन बातों से कि गुस्से में घर से चला जाता था और अकेले में सोचता था कि ये सब तो पिताजी ने बताया था, ये तो मेरे साथ हो रहा है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे माफी मांगनी होगी, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता, बस बहुत हुआ, अब और नहीं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। श्रोताओं, आशा करते हैं कि आज की कहानी से आप जरूर जागरूक हुए होंगे। दोस्तों, आप अपना अनुभव भी लिख सकते हैं। अगर आपके घर या पड़ोस में ये हो रहा है तो आज पहली पहल भी आप ही करेंगे, ये निर्णय भी लेना होगा। दोस्तों, इस विषय से जुड़े विचार और सुझाव आप हमें पत्र के माध्यम से और फोन के माध्यम से बता सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता और फोन नंबर नोट कीजिए। हमारा पता है, कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। साथ में फोन कॉल भी कर सकते हैं। फोन करने के लिए हमारा नंबर लिखिए। हमारा नंबर है
1: 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, 8527449955।
0: तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए मुझ राखी की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।

अभी आपने स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सुना। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर बहार। इस प्रोग्राम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं और इस प्रोग्राम में हम गैर फिल्मी नॉन फिल्मी गाने आपके लिए प्ले करते हैं। तो सबसे पहले बरसात की रिमझिम में भीगा हुआ ये गीत जुबिन नौटियाल पायल देव की आवाजों में

सुरबहार प्रोग्राम का ये पहला गीत आपने सुना जुबिन नौटियाल और पायल देव की आवाजों में। और अगले गीत से पहले हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि अब से कुछ ही देर में 11:30 पर संजीवनी प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं आयुर्वेदाचार्य संदीप कुमार भाटिया से, और बातचीत का विषय रहेगा हमारी दिनचर्या आयुर्वेद के अनुसार। और बाद दोपहर 3:30 से लेकर 4 तक FM लाइफलाइन प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी होनी है, और इस प्रोग्राम में हमारा आज का विषय रहेगा नेत्रदान, कॉर्निया डोनेशन। इसके बारे में हमारे स्टूडियो में आपके सवालों के जवाब देने के लिए उपस्थित रहेंगे प्रोफेसर अमित गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी, PGI, चंडीगढ़। तो नेत्रदान से जुड़ा आपका कोई सवाल है, अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, किसी शंका का समाधान करवाना चाहते हैं, तो हमें कॉल कीजिएगा बाद दोपहर 3:30 से लेकर 4 तक। हमारे नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। हमें आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। और सुरबहार प्रोग्राम में अब आपको इंतज़ार होगा अगले गीत का। तो चलिए प्ले करते हैं निखिता गांधी की आवाज़ में ये गीत।

0: नमस्कार चंडीगढ़, मैं हूं ओजस्वी शर्मा, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर। अपने शहर चंडीगढ़ में बहुत सी जगहें, बहुत सी कहानियां, बहुत से ट्रेडिशंस और बहुत सारा टैलेंट है जो कि मैं मानता हूं कि पूरे भारत को पता होना चाहिए। बस एक ही मौके की तलाश है और यही वो मौका है। दिस इज योर चांस। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो बनाइए और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने लाइए। माई वेव्स OTT पर लॉगिन कीजिए, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो 31 अगस्त 2026 तक अपलोड कर दीजिए। सो डोंट जस्ट एक्सप्लोर योर सिटी, डिस्कवर इट्स जेम। दिखा दो पूरे भारत को जो आपके अंदर छुपा हुआ जेम है। शूट इट, शेयर इट, शो इंडिया।
1: सुरबहार प्रोग्राम के आखिर में एक भक्ति रचना है अजय गोगावले की आवाज में।

0: अभी आपने अजय गोगावले की आवाज़ में यह भक्ति रचना सुनी। इसी के साथ ही अब आज का सुरबहार कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अगला प्रोग्राम है संजीवनी, आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: संजीवनी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में आपके साथ है आपका साथी अनिल पुंज। आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे साथ हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर संदीप भाटिया। जो हमने बातचीत का विषय चुना है, जिस पर हम चर्चा करेंगे, वो है हमारी दिनचर्या। और श्रोताओं, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये दिनचर्या किसी खास मौसम के लिए नहीं है, बल्कि सामान्य तौर से हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए किसी भी मौसम में, उसके बारे में बताएंगे सुबह से लेकर रात तक। इसी विषय पर डॉक्टर संदीप भाटिया प्रकाश डालेंगे आज के इस प्रोग्राम में। सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं संजीवनी प्रोग्राम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरा नमस्कार। और मैं आकाशवाणी का धन्यवाद करता हूँ यहाँ पे आने का मौका दिया और आप सबसे कुछ आयुर्वेद के बारे में जानकारी साझा करने का मौका दिया।
0: दिनचर्या के बारे में हम बात करेंगे, जो सामान्य तौर से सुबह से लेकर रात तक हमारी होनी चाहिए और उसके बारे में बात करेंगे। जो आजकल दिनचर्या है हम सब की, उसके बारे में बात करेंगे, वो कितनी सही है कितनी गलत है आयुर्वेद की नजर में।
2: बिल्कुल सर,
0: हमारी दिनचर्या क्या है?
2: अगर हम आयुर्वेद के प्रयोजन की बात करें कि जिस प्रयोजन पे आयुर्वेद को लिखा गया था, वो था स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, मातुरस्य विकार प्रशमन।
0: जी,
2: मींस कि जो व्यक्ति स्वास्थ्य है उसके स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखना और जो बीमार है उसकी बीमारी को दूर करना।
0: जो तो, व्यक्ति भला चंगा है,
2: हाँ,
0: उसको वो भला चंगा रहे और जो बीमार है उसे स्वस्थ
2: किया जाए। मेन लाइन सर ये, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि पहले ही हमें बीमारी से, हम स्वास्थ्य व्यक्ति को स्वास्थ्य का मेंटेन करके नौबत ही ना आए। तो उसके लिए हम आयुर्वेद के पहले प्रयोजन पे ही हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि स्वास्थ्य व्यक्ति को कैसे हम स्वास्थ्य रखें। तो स्वास्थ्य के लिए भी स्वास्थ्य क्या है ये पता होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि आप बीमारी आपको नहीं है तो आप स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्य का मतलब आयुर्वेद में ये कि सम दोष सम धातु सम अग्नि मल क्रिया प्रसन्न आत्मे मन इंद्रियम, मतलब कि हमारे दोष भी सम रहने चाहिए, हमारी अग्नि सम रहनी चाहिए, हमारी धातु हमारे मल ये सब सम रहने चाहिए, प्लस साथ साथ में हमारा आत्मा मन और इंद्रिय ये भी प्रसन्न होनी चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेंटली भी वो पर्सन साउंड होना चाहिए, प्रसन्न आत्मा मन इंद्रिय, मानसिक तौर से भी वो स्वस्थ होना चाहिए। अब अगर हम दिनचर्या की बात करें कि हम कैसे उस स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं, तो उसमें हमारी दिनचर्या हमारे सुबह उठने से ही स्टार्ट हो जाती है।
0: जी,
2: तो सबसे पहले तो संहिताओं में यही वर्णन आता है, जो पुराने टाइम में बहुत लोग फॉलो भी करते थे। अगर पुराने टाइम की बात करें सोशल मीडिया से परे, तो लोग रात को टाइम से 7:30-8-9 बजे तक सो जाते थे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठते थे। जैसे हम बात भी करते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में हम प्रैक्टिकली अगर देखें तो सूर्य उदय से कुछ 40-45 मिनट पहले, ऋतुएं तो चेंज होती रहती हैं, जैसे सूर्य उदय तो कभी भी हो सकता है, मतलब चेंज होता रहता है टाइम। गर्मियों में जल्दी हो जाएगा, सर्दियों में थोड़ा लेट होगा। तो सूर्य उदय से 1 घंटा पहले हमें नॉर्मली उठ जाना चाहिए।
0: वो ब्रह्म मुहूर्त है,
2: वो ब्रह्म मुहूर्त है। अगर हम प्रैक्टिकली वैसे ही बात करें कि
0: 5:30 अगर सूरज निकलता है,
2: हाँ 4:30 हम उठ जाए, पर उसके लिए टाइम से सोना भी जरूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो दिनचर्या में हमारा उठने से ही शुरू हो जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त पे उठना सबसे बेस्ट है। अगर आप चलो ब्रह्म मुहूर्त पे भी नहीं उठ सकते तो एटलीस्ट सूर्य उदय से 10-15 मिनट पहले हमें उठ जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए है कि आपको रात को सोना टाइम से भी जरूरी है, एटलीस्ट आपकी 7 आवर्स की स्लीप जरूरी है। कई लोग होते हैं जो लेट नाइट शिफ्ट करते हैं, कई लोग होते हैं जो नाइट ड्यूटीज करते हैं, तो उनके लिए भी अगर कोई लेट नाइट शिफ्ट कर रहा है तो वो चाहे थोड़ा लेट उठ जाए। आयुर्वेद में ये भी लिखा हुआ है कि

0: जैसे कि कोई नाइट ड्यूटी कर रहा है सर, है ना, जैसे कोई नाइट ड्यूटी 7 घंटे की शिफ्ट कर रहा है, तो अगर उसको दिन में सोना है तो उसके लिए सुश्रुत में अच्छा वर्णन किया हुआ है। रात को अगर वो 7-8 घंटे की शिफ्ट कर रहा है तो उसके हाफ मीन्स उसके आधे घंटे वो दिन में सो जाएगा, तो उसकी नींद पर्याप्त रहेगी। हाँ जी,
1: आम तौर से आजकल सोशल मीडिया पर ये सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं कि रात को तो हर हाल में सोना ही है। अगर आप रात को नहीं सोते हैं और पूरी रात जगते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
0: बिल्कुल हानिकारक है सर।
1: तो
0: जो
1: यहाँ आप
0: चीज़,
1: ये कह रहे हैं कि आयुर्वेद में ये कहा गया है कि अगर आपको रात को जगना पड़े।
0: हाँ सर, आयुर्वेद में ये भी चीज़ बोली गई है कि कई लोग जो रात, क्योंकि पुराने टाइम में भी उस टाइम पे
1: अच्छा
0: भी कई लोग,
1: ये
0: हाँ
1: है।
0: ये है सर, ये
1: अच्छा
0: सुश्रुत संहिता में है कि जैसे आयुर्वेद में भी ये भी बोला हुआ है कि रात को अगर कोई जग रहा है तो उसका आधा टाइम वो दिन में सो जाएगा, तो उसकी नींद पर्याप्त हो जाएगी।
1: मान लीजिए 8 घंटे रात को वो जगा
0: जगह
1: है
0: है तो 4 घंटे अगर वो दिन में सो गया तो
1: तो
0: उसके लिए
1: पर्याप्त
0: काफ़ी
1: है।
0: पर्याप्त है सर, बिल्कुल
1: अच्छा
0: पर्याप्त है। ठीक है, तो हमारा ब्रह्म मुहूर्त से मीन सूर्य उदय से ही हमारा दिनचर्या शुरू हो जाता है कि
1: तो
0: हमने
1: बच्चे जो विद्यार्थी हैं रात को पढ़ते हैं क्योंकि रात का जो पहर होता है उनको बहुत अच्छा लगता है, शांति होती है। बच्चे रात को पढ़ते हैं, सोते नहीं हैं।
0: एक्चुअली अब ये जो जेंजीज, मतलब नई नई जनरेशन आ रही हैं, तो उनका अपना मानना है, लेकिन रात की जगह कंपैरिजन सुबह सबसे बेस्ट है, क्योंकि रात को तो डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है, आपके पास फ़ोन है, किसी ना किसी का मैसेज आ जाएगा, सोशल मीडिया आप स्क्रॉल कर लोगे। सुबह उठ के माइंड फ्रेश होता है अगर आपने प्रॉपर स्लीप ली हो, और सारी डेली रूटीन भी आपकी प्रॉपर फॉलो, आपका साइकिल सही चलता है हेल्थ का भी, अगर आप टाइम से
1: अगर
0: सुबह
1: आप
0: उठ गए।
1: रात को सोते हैं,
0: हाँ रात को सोते हैं
1: लेकिन
0: बिना
1: अगर अगर
0: हॉर्मोनल,
1: मजबूरीवश रात को जागना पड़े,
0: हाँ
1: आपने कहा
0: मजबूरीवश कि अगर आपकी कमाई का जरिया वही है, तो उसका भी एक साधन है,
1: कि
0: उसका भी एक
1: आप
0: सोल्यूशन है।
1: सुबह 4 घंटे सो सकते
0: हाँ
1: हैं
0: रात को 8 घंटे जाग रहे हैं तो सुबह
1: तो
0: चार
1: वो
0: घंटे
1: वही
0: सो जाए,
1: काम करेगा जो रात को
0: जो
1: शरीर
0: रात
1: करता
0: को,
1: है।
0: बिल्कुल
1: अच्छा
0: बिल्कुल
1: अच्छा
0: सेम
1: अच्छा
0: है ना।
1: चलिए आज ये बात भी स्पष्ट हो गई कि रात को जगना भी कोई इतना बुरा नहीं है
0: हाँ, अगर
1: जितना बना दिया गया है,
0: अगर मजबूरी है सर तो, मतलब इसका
1: लेकिन आदत नहीं होनी
0: आदत
1: चाहिए।
0: नहीं होनी चाहिए, कोई
1: जी
0: अगर ड्यूटी अपनी रात को कर रहा है वो बात अलग है,
1: जी
0: लेकिन अगर हम इसको आदत बना लें कि नहीं ऐसा लिखा हम ऐसा कर सकते हैं, वो नहीं है। तो सर सुबह उठने से ही हमारा दिनचर्या शुरू होता है, कोशिश यही
1: और
0: रहनी
1: आपने
0: चाहिए।
1: बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना
0: हाँ
1: है,
0: ब्रह्म मुहूर्त में उठना
1: यानी
0: है,
1: सूरज के जगने से पहले
0: जगने से पहले आपको उठना है।
1: हमने सूरज का मतलब हमने वेलकम करना है।
0: हाँ सूरज का वेलकम करना है, ये नहीं कि सूरज हमारा वेलकम करे, कि सूरज की पहले किरण हमारे ऊपर पड़ रही है फिर भी नहीं उठ रहे हैं, अलार्म बज रहा है फिर भी नहीं उठ रहे हैं, वो नहीं, उसके लिए टाइम से सोना ज़रूरी है सर, वो चीज़ फॉलो करना ज़रूरी है। फिर ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के नॉर्मली अगर आप लाइफ साइकिल को फॉलो करते हो, तो उसके बाद अपने आप ही जो भी आपके नेचुरल अर्जेज हैं, जो भी आपके वेग हैं मल के मूत्र के, उसको जब आप पूर्णता से कर लेते हो सुबह उठ के, फिर उसके बाद आप नॉर्मली गुनगुना पानी पीजिए, हर पर्सन की अपनी कैपेसिटी है, लेकिन
1: कितना,
0: सुबह,
1: फिर भी कम से
0: लेकिन
1: कम
0: मिनिमम सर
1: कितना?
0: सुबह उठ के आधा लीटर तो पीना चाहिए
1: कुछ लोग
0: पानी,
1: तो कहते हैं मैं तो 1-2 लीटर पी जाता हूं
0: वो
1: बड़े
0: सर
1: आराम
0: अपना अपना
1: से।
0: है, अपने अपने मेटाबॉलिज्म अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार है,
1: उसमें ऐसा कुछ
0: उसमें
1: नहीं
0: कोई इशू
1: है।
0: नहीं है,
1: अच्छा अच्छा
0: लेकिन
1: अच्छा
0: मिनिमम आधा लीटर तो सुबह पीना ही पीना है। उसमें आप अपने हिसाब से कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हो, जैसे कई लोग त्रिफला सुबह ले लेते हैं, वो रसायन का काम करता है,
1: जी
0: वो आपके ऊपर है, वो कोई इशू नहीं है, पर्सन की प्रकृति के अनुसार उसका कोई रोग चल रहा है या फिर कुछ भी। गुनगुने पानी से होगा कि आपकी गट की मोटिलिटी होती है, डाइजेस्टिव फायर को भी हेल्प
1: जी
0: मिलती
1: जी
0: है
1: जी
0: ना, तो वो सारी चीज़ें हेल्प करेंगी।
1: तो ये सुबह उठने का काम हो गया।
0: हाँ ये सुबह उठते ही जो आपने चीज़,
1: अब हम नहा धो लिए, फ्रेश हो।
0: नहीं सर नहाने
1: अच्छा
0: धोने से पहले
1: पहले पहले
0: भी कई
1: पहले भी कुछ
0: चीज़ें,
1: है।
0: कई चीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं
1: अच्छा
0: नहाने धोने से पहले
1: अच्छा
0: भी, मतलब ब्रह्म मुहूर्त पे चलो आप सूर्योदय के टाइम पे उठ गए, तो आपको ऑफिस जाना है और उसके बीच में 3-4 घंटे का गैप है, तो आपको उस बीच में एटलीस्ट सुबह उठ के आपने अपना पानी पूनी पिया, पानी पी के अब
1: जी
0: फिर
1: जी
0: आपने दातून का सेवन करना
1: जी
0: है ना। दातून के सेवन में आयुर्वेद में भी साफ साफ लिखा हो कि दातून दिन में 2 बार करनी है, एक बार सुबह उठ के आपने कर ली और एक बार रात को सोने से पहले, मीन्स रात के
1: दातुन
0: भोजन के
1: दातुन
0: बाद।
1: कौन सी होनी चाहिए वैसे? दातुन
0: दातुन सर, दातुन वैसे तो देखो हमें समय के साथ चलना पड़ता है, आजकल ब्रश आ गए हैं तो लोग ब्रश का
1: ब्रश।
0: यूज़
1: जी
0: करते
1: जी
0: हैं। हाँ अगर किसी को दातुन का यूज़ करना है तो दातुन में उसको कषाय कटु तिक्त रस वाले दातुन ज़्यादा बेस्ट है, जैसे हमारे 6 रस होते हैं है
1: जी
0: ना, मधुर अमल लवण, उन रस वाली दातुन का सेवन आपने नहीं करना, या तो दातुन का रस कड़वा होना चाहिए या तीखा होना चाहिए या
1: अच्छा
0: कषाय होना चाहिए, जैसे नीम बेस्ट है, खदिर जो कत्था जैसे होता है, खदीर जो होता है, खदीर का पेड़ भी होता है, खैर का पेड़ जिसको बोलते हैं,
1: बबूल भी
0: हाँ
1: हो
0: उसका
1: सकता
0: हम
1: है।
0: यूज़ कर सकते हैं, अर्जुन की उसका भी दातुन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन
1: जी
0: ठीक है हमें समय के साथ चलना है तो ब्रश का हम यूज़ कर
1: क्योंकि
0: सकते हैं, कोई
1: ब्रश के
0: इशू
1: बारे
0: नहीं।
1: में तो हम बात करेंगे नहीं, वो सभी
0: हाँ
1: जानते
0: वो
1: हैं,
0: सभी
1: बिना
0: जानते हैं,
1: बताए सब जानते हैं।
0: वो
1: लेकिन दातुन की बात आपने की है, दातुन से होता क्या है?
0: सर दातुन से बेसिकली जो भी आपका ओरल हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी, लेकिन दातुन के साथ साथ एक दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है जो भी हम आगे मैं आपको बताऊंगा, कि दातुन के साथ कई लोग मंजन भी करते हैं है ना,
1: जी
0: मंजन भी बहुत अच्छा है आपके मसूड़ों के लिए,
1: जी
0: तो मंजन के लिए आप तेजोवती होता है, तेज बल जिसको बोलते हैं, उसका पौधा सबसे

0: है,
1: तेजोवती।
0: तेजोवती है ना, तेजबल जिसको हम बोलते हैं, या फिर अगर आपके पास वो नहीं है तो अब त्रिकटू चूर्ण कहीं से आपको इजीली मिल सकता है, आप उसका मंजन कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप सेंधा नमक के साथ थोड़ा सरसों का तेल मिक्स करके उसका भी मंजन कर सकते हैं मसूड़ों पे लगाने के लिए, तो
1: जी
0: वो बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसे आजकल सबको पता है कि हम टंग क्लीन भी करते हैं, जीवन लेखन पहले हम बोलते थे, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन दो तीन चीज़ें हैं सर इसमें दिनचर्या में जो अगर हम फॉलो करेंगे ना तो मैं अपने उदर चतुर्गत यानी कि क्लेविकल से ऊपर के विकार होना बहुत कम हो जाएंगे। चलो आपने दातुन वगैरह कर लिया, आपने पानी पुनी पी लिया, तो अंजन एक चीज़ होती है नेत्र पे, कुछ ना कुछ अंजन के फॉर्म में डालना, वो नेत्रों के लिए हितकर होता है। चलो अंजन आजकल फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है सर, लेकिन हम नस्य का यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। नस्य तो मैं सबको एडवाइस करूंगा कि हफ्ते में हम 2 दिन तो कम से कम करें। नस्य भी अणु तेल ईजिली मार्केट में अवेलेबल होता है, तो अणु तेल का नस्य सबसे बेस्ट है सर। अणु तेल के नस्य से आपके जो भी क्लेविकल के ऊपर के डिजीज़ हैं, जैसे किसी को एलर्जिक राइनाइटिस रहता है, नाक बहता रहता है ठीक ही नहीं होता, बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, झड़ रहे
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: आंखें कमज़ोर हो रही हैं,
1: जी
0: कानों के लिए बहुत अच्छा है अणु तेल का नस्य, क्योंकि नाक को सिर का द्वार माना गया है आयुर्वेद में।
1: तो इसका उपयोग किस तरह से करना है,
0: बहुत सिंपल सा
1: ये
0: उपयोग है
1: सब
0: सर,
1: मतलब दातुन करने के बाद?
0: हल्के हाथों से आपने अपने नाक के सराउंडिंग्स में थोड़े से तिल के तेल से मालिश करनी है, उसके बाद आप दो दो तीन तीन ड्रॉप्स एक एक, वैसे तो संहिताओं में प्रॉपर मैकेनिज्म दिया है लेकिन हम नॉर्मल दिनचर्या के हिसाब से देखें तो 3-4 ड्रॉप्स आप एक एक नाक में डाल दो और थोड़ी देर के लिए लेट के, फिर उसके बाद 5 मिनट बाद आप स्टीम ले लो। फिर नस्य के बाद सर एक हमारा आता है गंडूश या फिर कवल, और ये प्रैक्टिकली बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है सर गंडूश करना। मैं नॉर्मली हफ्ते में
1: गंडोश
0: कोशिश
1: करना?
0: गंडूश मैं
1: हाँ
0: नॉर्मली हफ्ते में कोशिश करता हूँ मैं 3 दिन ज़रूर करूँ।
1: अच्छा, ये
0: मेरे को
1: बताइए
0: पंद्रह
1: कैसे
0: बीस
1: करते हैं।
0: साल पहले दांतों में कैविटीज़ हुई थी, तो मैंने एक कैविटी अपनी फिलिंग कराई थी, उसके बाद मेरे को सेंसिटिविटी रहती थी, लेकिन मैंने जब इसके बारे में पढ़ा गंडूश के बारे में तब से मैं फॉलो करता हूँ, मेरे को आज तक टच वुड दांत की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि जब तक आप
1: अरे
0: खुद पे फॉलो नहीं
1: वाह,
0: करोगे तो आपको नहीं पता लगेगा।
1: कैसे गंडोश?
0: तो गंडूश के लिए सर तिल तेल, सामान्य व्यक्ति के लिए तिल तेल सबसे बेस्ट है, आप तिल तेल ले लो, तिल तेल को मुंह में भर लो। गंडूश और कवल में दो ही डिफरेंस है सर, गंडूश से आप मुंह में तिल के तेल को मूव नहीं कर सकते, आपका मुंह पूरा भर जाएगा जैसे बैलून पूरा भरा रहता है। कवल में ऐसा होता है कि कवल में आप तेल डाला तो आप उसको कुल्ले की तरह मूव कर सकते हो,
1: जी
0: तो हमें गंडूश करना है। गंडूश आपको तिल तेल पूरा मुंह में भरना है और प्रॉपर भर के आप अपने डेली के रूटीन तब तक कर लो, अपना बैग पैक कर लो, अपनी ड्रेस
1: मतलब मुंह
0: प्रेस कर
1: बंद
0: लो,
1: रखना है।
0: मुंह बंद रखना है सर, तेल पूरा भर के गुब्बारे की तरह मुंह फूल जाए आपका। ऐसा बोलते हैं कि जब तक आंखों में गले में कफ ना आ जाए तब तक हमने इसको फॉलो करना है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बोलूँ तो एटलीस्ट 15 मिनट्स हमने इसको गंडूश को मुंह में रखना है,
1: अच्छा, अभ्यास करना पड़ेगा
0: अभ्यास
1: इसका
0: करना है
1: धीरे
0: सर। कई
1: धीरे।
0: बॉलीवुड एक्टर्स करते हैं इसको गंडूश को,
1: अच्छा
0: हाँ बहुत लोग फॉलो करते हैं, इससे आपका जो जो लाइन है वो भी ठीक रहती है, मसूड़े टीथ सब ठीक रहते हैं, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही प्रैक्टिकली इजिली करने वाली चीज़ है सर।
1: है,
0: आयुर्वेद में हर चीज़ का एक बेस्ट चीज़ बोली गई है, जैसे घी में गाय का घी बेस्ट है, तेल में तिल तेल बेस्ट है, तो तिल तेल का ही गंडूश आपको करना है,
1: एटलीस्ट 15 मिनट तक आपने उसको भर के
0: रखना है,
1: रखना
0: आपकी
1: है,
0: अपनी कैपेसिटी है सर, आप 20 मिनट भी रख
1: और
0: सकते हो लेकिन 15 मिनट मिनिमम
1: उस
0: है,
1: दौरान और नियमित जो आपने काम
0: कब
1: करने
0: कर
1: कर सकते
0: सकते हो
1: हो।
0: उसके बाद आपने उसको फेंक देना उसको, और उसके बाद गर्म पानी से कूला कर लेना है, गुनगुने पानी से कूला कर लेना है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है
1: तो
0: गंडूश
1: ये
0: की।
1: हफ्ते में एक बार,
0: हाँ देखो, नस्से हफ्ते में 1-2 बार कर लो, गंडूश हफ्ते में 3 बार तो कर सकते हैं सर।
1: बड़ी ही अनूठी और ऐसी बातें बता रहे हैं आप, मुझे लगता है कि जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उसके लिए तो ये नई चीजें हैं जो कि हमारे पुरातन काल से जुड़ी हुई
0: हाँ
1: हैं।
0: बिल्कुल, और ये वो सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने खुद पे भी यूज़ की और उसका इफेक्ट सामने दिखता है, तो इसलिए जब तक आप खुद प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करोगे आप दूसरे को कैसे सजेशन दे पाते हो, तो
1: और
0: पेशेंट को
1: उसी
0: तो हम बोलते ही हैं।
1: उसी आत्मविश्वास के साथ आप बता रहे हैं कि
0: हाँ
1: आपने खुद किए हैं
0: हाँ
1: इसीलिए आप बता रहे हैं,
0: बिल्कुल सर,
1: और आयुर्वेद में लिखा हुआ है।
0: आयुर्वेद में लिखा है पेशेंट को तो हम बोलते ही हैं, और आयुर्वेद में तो ऑलरेडी ट्रायल मेथड नहीं है, मतलब ऑलरेडी पेशेंट्स को दे के इफेक्ट देख के उसको आयुर्वेद को लिखा गया है।
1: नस्य और गंडूश
0: नशे और गंडूश, नशे एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन, गंडूश हफ्ते में 3 दिन, मतलब
1: जी,
0: ग्रांटेड है सर आपको दांत की मसूड़ों की दिक्कत होनी नहीं वाली कभी।
1: तो ये नहाने से पहले पहले के काम है।
0: हाँ इसके बाद सर वैसे आयुर्वेद में एक धूम्रपान और तांबूल भी दिया हुआ है, मेडिकेटेड धूम्रपान, कि
1: अच्छा,
0: पुराने टाइम में मेडिकेटेड धूम्रपान भी होता था। ये जो आपने सारे प्रोसेस किए, नस्य लिया तो थोड़ा ऑयल नाक में रह गया, गंडूश किया उससे मुंह में ऑयल रह गया, कफ फिर थोड़ा रह गया,
1: जी
0: कफ आया भी गले में इन सब, तो मेडिकेटेड धूम्रपान हम इजिली कर सकते हैं, सूती कपड़े में हल्दी सेंधा नमक थोड़ा सा आपने ये चीज़ें डाली, उसको रोल ऑन किया, थोड़ा सा सरसों का तेल डाला और उसको जला दिया, उसका थोड़ा धूम्रपान ले लिया, तो जिसमें कफ ज्यादा रहता है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है
1: वो धुआं,
0: तो वो बेस्ट है सर। अगर आप गंडूश नशे कर रहे हो उसके बाद आप कर सकते हो हफ्ते में एक आधी बार।
1: वैसे धूम्रपान तो वर्जित है।
0: हाँ वो धूम्रपान वर्जित है सर, जिसपे बाहर लिखा आता है पैकेट पे कि इट कैन कॉज कैंसर।

0: है ना, वो तो वर्जित है, वो तो नहीं सेवन करना। और तांबूल तो सर सब जानते ही हैं, पुराने टाइम में लोग खाने के बाद पान का सेवन करते थे। आप सारी चीजें करोगे तो मुख में थोड़ी सी विशुद्धता आती है, तो उसके साथ आपने तांबूल का सेवन कर लिया, पान के पत्ते में लौंग वगैरह डाल के ये सेवन आप कर सकते। तो इसके बाद आपको अभ्यंग करना है। नॉर्मली आप शिर का, पैर का, कान वगैरह का और हाथ का तो अभ्यंग करना ही करना है, अगर आप फुल बॉडी नहीं कर सकते तेल की मालिश। और तेल की मालिश के बाद आपको व्यायाम करना है। आप कई लोग बोलते हैं तेल की मालिश किससे करें, तो जैसे नहाने से पहले अभ्यंग और अभ्यंग के बाद व्यायाम। तो अभ्यंग में भी हमें शिर का और कान का, पैर का तो अभ्यंग करना ही करना है, वो मस्ट है। शिर का, कान का और पैर का,
1: तलवों की मालिश कह रहे हैं,
0: तलवों की, शिर की और कान की तो करनी करनी है सर, अगर हम फुल बॉडी की नहीं कर सकते।
1: ये नहाने से पहले,
0: ये नहाने से पहले है, पहले अभ्यंग, व्यायाम, फिर नहाना। तो अभ्यंग में हम बोलते हैं अब कौन सा तेल यूज करें। आजकल अलग अलग वर्जिन ऑलिव ऑयल वगैरह वगैरह आते हैं। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो आयुर्वेद में तिल का तेल को तो प्रधान माना ही गया, तिल का तेल तो हमने यूज करना ही करना है। जैसे शीत ऋतु में आप तिल का तेल यूज कर सकते हो
1: जी,
0: या गर्मियों में आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो सर, और ठंडियों में आप तिल का तेल, नॉर्मली भी आप तिल का तेल यूज कर सकते हो, अगर नहीं सूट करता तो कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। उसके बाद सर व्यायाम, अपनी शक्ति के अनुसार व्यायाम। तो व्यायाम को एटलीस्ट हमने 20-30 मिनट्स तो देने देने हैं सर
1: जी।
0: 30 मिनट में लघु व्यायाम जो शुरू करना है, सिर से लेकर पैर तक सभी जॉइंट्स की मूवमेंट करनी है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद आपने हल्की सी जॉगिंग या फिर खड़े खड़े हम जंपिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद सूर्य नमस्कार और 15 मिनट आपने प्राणायाम को देना है, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका, ये सब करना है 15 मिनट।
1: और ये तभी होगा अगर आप सुबह सवेरे समय पर उठोगे,
0: बिल्कुल,
1: और सूरज के जगने से पहले
0: पहले उठोगे। सूरज के जगने पे भी उठ जाएंगे ना सर, फिर भी हो सकता है, फिर भी पॉसिबल है, लेकिन उससे लेट उठेंगे तो फिर पॉसिबल तो, क्योंकि सर ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कुछ आता है कि ये एनर्जी ड्रिंक पी लो, ये सी बक्तोन ले लो, या फिर ये ऐसे कर लो, कुछ बोलते हैं सी बक्तोन के साथ सुगंधा ले लो। जब तक सर आप अपना दिनचर्या ठीक नहीं करोगे ना, आपको कोई एनर्जी ड्रिंक, आपको कोई बहुत संजीवनी बूटी आपको ठीक नहीं कर सकती।
1: खुद जब तक अपने आप नहीं पहले संभलोगे
0: तब तक नहीं कर सकते। तो यहाँ तक ये हमारा स्नान तक था, इसके बाद हम स्नान कर सकते हैं। तो स्नान का भी सर सिंपल सा मेथड है कि नॉर्मली आयुर्वेद में यही लिखा गया है कि सिर से नीचे तक या फिर गर्दन से नीचे तक हम उष्ण जल का यूज कर सकते हैं स्नान में, लेकिन गर्दन से ऊपर हमने उष्ण जल नहीं यूज करना स्नान के लिए
1: जी,
0: चाहे कोई भी ऋतु हो।
1: अच्छा, चाहे ठंडी हो,
0: चाहे ठंडी भी ऋतु हो, उसमें भी सर अगर कई लोग नहीं सूट करता हो, नहीं ठंडे पानी का यूज कर सकते हो, तो नॉर्मली जो हमारा टैप वाटर आता है सर ठंडी में, जो फ्रेश पानी आता है, वो ल्यूक वार्म ही होता है, वो गुनगुना ही होता है, उसका हम यूज कर सकते हैं। नॉर्मली गर्दन से नीचे अगर आपकी शीत ऋतु है तो आप उष्ण जल यूज कर लो, ग्रीष्म ऋतु है तो आप शीत जल यूज कर लो, कोई इशू नहीं है।
1: डॉक्टर संदीप, ये बातें इस प्रोग्राम में आज से पहले मुझे नहीं लगता कि कभी इसके बारे में चर्चा हुई।
0: ठीक है,
1: आज आप बड़े सूक्ष्म तरीके से इन बातों को बता रहे हैं और इन बातों को जानना समझना जरूरी है। तो ये नहाने तक आपने
0: दिनचर्या बताया, बिल्कुल सर, बिल्कुल।
1: अगर ये सब कुछ करना है तो फिर इसके लिए आपको वही है कि सुबह सवेरे जल्दी उठना पड़ेगा और रात को जल्दी
0: सोना पड़ेगा।
1: हर चीज एक चीज के साथ
0: इंटरलिंक्ड है सर, वो आपकी साइकिल भी चल पड़ेगी, आपका हार्मोन का भी बैलेंस हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और बड़ा सिंपल से
1: हार्मोन
0: का बैलेंस हो जाएगा,
1: अच्छी बात,
0: हार्मोन का बैलेंस हो जाएगा, आपका रिदम बन जाएगा। एक
1: नहाने तक अब हम फ्रेश हो गए, फ्रेश होने के बाद एक गाना हो जाए,
0: ठीक है सर,
1: गाने के बाद फिर बात करेंगे।
0: बिल्कुल सर,
1: बताइए अपनी पसंद का गाना।
0: जिंदगी का सफर है कैसा सफर।

0: आज के संजीवनी प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप भाटिया, जो हमें हमारी दिनचर्या इसके बारे में बात कर रहे हैं, बता रहे हैं। आमतौर से दिनचर्या को हम समझ लेते हैं कि हमने क्या खाना है, क्या पीना है और कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, लेकिन दिनचर्या हमारी सुबह सवेरे से शुरू होती है और देर रात तक सोने तक इसमें सब कुछ शामिल होता है।
1: बिल्कुल सर।
0: और वो किस तरह से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इन तमाम बातों के बारे में, एक सामान्य दिनचर्या के बारे में, एक सामान्य व्यक्ति के लिए उसके बारे में बता रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, गाने से पहले हम नहा धो लिए, फ्रेश हो गए,
1: फ्रेश हो गए,
0: अब उससे आगे क्या करना है?
1: बस सर, नहाने के बाद हमारा अब इतना कुछ हमने कर लिया तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी है। हाँ। तो नहाने के बाद हमने भोजन का ही सेवन करना है और भोजन में कोशिश यही करना है सर कि जो भी चीज़ हो वो मात्रा में हो, जितनी आपकी भूख है उससे कम आपने पेट को अपना भरना है। ऐसा नहीं कि हमने
0: ठूंसना
1: नहीं है। हाँ। ना तो आयुर्वेद बोलता है कि मात्राशी से आत मीन्स मात्रा पूर्वक आहार लेना है और हिताशी से आत मीन्स हितकर आहार लेना है।
0: अब जैसे अगर चार चपाती में खा सकता हूँ,
1: हाँ, तो तीन चपाती,
0: तो तीन
1: खानी है सर। मात्रा पूर्वक आहार करना है और हित पूर्वक आहार करना है, हितकर आहार करना है। जैसे कई लोग अब सरसों का साग बड़े चाव से खाते हैं, है ना, लेकिन अगर
0: अभी, अभी उसका समय आएगा।
1: हाँ, लेकिन अगर हम आयुर्वेद में बात करें तो सरसों का साग तो सबसे अहितकर बोला गया है, सबसे निकृष्ट।
0: अच्छा।
1: बोला गया है। हाँ, हाँ। तो हितकर साग जो होता है हमारा चुलाई का होता है, चुलाई का साग सबसे बेस्ट होता है। तो मात्रा पूर्वक और हित पूर्वक हमने आहार करना। सरसों के साग की अगर हम बात करें तो वो जरूर गर्म तासीर का और तीनों दोषों का प्रकोप करता है, लेकिन चुलाई का साग ऐसा नहीं करता, वो तीनों दोषों को सम रखेगा और हमारे गट के लिए भी बहुत अच्छा है। चुलाई का साग
0: गट के लिए भी अच्छा, अच्छा है चुलाई। हाँ, का साग
1: बिल्कुल
0: 12 महीने इसे खाया जा सकता है,
1: खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
0: और इसे
1: मात्रा पूर्वक लस्सी का सेवन साथ में कर लो सर तो बढ़िया रहेगा, कोई इशू नहीं, डाइजेशन भी हो जाएगा अच्छे से। सम
0: मतलब हमने सम याद रखना है,
1: सम याद रखना है, सम और हित याद रखना है, हित कर आहार करना,
0: अति नहीं करनी,
1: अति नहीं करनी। तो बस आपने भोजन कर लिया, फिर आप दिन भर जो हमारी डेली लाइफ होती है, तो कई लोगों को नहीं टाइम मिल पाता, कभी कभी स्किप हो जाता है दोपहर का मील, तो ब्रेकफास्ट हमारा अच्छा होना चाहिए। और साथ में ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक फ्रूट या फिर कुछ भी स्नैक्स के फॉर्म में फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो, स्प्राउट्स यूज़ कर सकते हो, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, तो वो हमने सेवन करना है।
0: सूखे मेवे भी आप,
1: हाँ,

0: में भी ले सकते हैं। हमने एक चाय और कॉफ़ी या फिर कोल्ड ड्रिंक्स या फिर प्रोसेस ड्रिंक्स या प्रोसेस फूड का बिल्कुल अवॉइड करना है, वो अवॉइड करना है। ठीक है, हफ्ते में आप एक बार ले लो, लेकिन उसकी रूटीन को हमने नहीं बनाना। नहाने से पहले व्यायाम की बात की थी ना सर, तो ऑफिस आवर्स में भी आपने ये कोशिश करनी है कि अगर कोई सिटिंग जॉब पे है तो हर टाइम उस जगह पे ना बैठा रहे, बीच बीच में हर आधे घंटे के बाद एक छोटा सा वॉक और आधे घंटे के बाद थोड़ी सी जॉइंट की मूवमेंट आपकी ज़रूर होनी चाहिए। वरना आपको आजकल जो सबको सर्वाइकल लंबर ये प्रॉब्लम हो रही है वो हो जाती है, ओबेसिटी बढ़ रही है वो हो जा रही है, क्योंकि बड़ा आयुर्वेद का बहुत नॉर्मल सा फंडा सर आयुर्वेद में सुश्रुत ने बोला है कि खाने के बाद आपको 100 कदम चलना ही चलना है।
1: अच्छा, जैसे खाना खाया
0: हाँ,
1: उसके
0: उसके
1: बाद
0: बाद
1: 100 कदम
0: आपको
1: आपको
0: हर
1: चलना है।
0: मील के बाद आपकी,
1: आमतौर से लोग ये करते हैं कि खाना खाने के बाद लेट जाते हैं।
0: नहीं नहीं सर वो तो सबसे वर्स्ट चीज़ है, मतलब हम देखें
1: हाँ,
0: सबसे
1: खाना
0: बुरी चीज़
1: खाने के
0: है।
1: बाद हमें चलना है 100 कदम।
0: हाँ, खाना खाने के बाद एक रूल रखो कि हमने 100 स्टेप्स काउंट्स करने हैं बस। आप नॉर्मल व्यायाम डेली कर रहे हो कोई इशू नहीं है, लेकिन हर मील के बाद आपको 100 कदम चलना ही चलना है।
1: ये तो शारीरिक तौर से हमें अपने आप को ठीक रखना है, ये दिनचर्या है अपने शरीर के लिए
0: हाँ।
1: और मानसिक स्वास्थ्य के
0: अब
1: लिए।
0: जैसे सर हम घर से निकलते हैं ना, तो घर से निकलते ही हमारा मानसिक स्वास्थ्य इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। रास्ते में आप गए, ट्रैफिक में आपकी कोई बहस होगी, ऑफिस में मूड खराब हो गया, कुछ भी हो गया, तो हमेशा कोशिश ये करनी है कि जब भी आप सुबह उठो, कोई काम करो, घर से निकलो, जैसे भी, आपने हमेशा अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखनी है। सद्व्रत का पालन करना और एक पॉजिटिविटी रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल
1: सकारात्मक सोच
0: सकारात्मक
1: बनाकर
0: सोच
1: के।
0: बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मानसिक अवसाद बहुत कॉमन हो गया, डिप्रेशन
1: जी
0: बहुत कॉमन हो गया।
1: जी
0: उसके बारे
1: जी
0: में हम चाहे अलग से एक डिटेल में बात करेंगे ज़रूर उस बारे में, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक स्माइलिंग फेस के साथ, और दूसरे को हमेशा ऐसा नहीं सोचना कि उसको अपनी जगह रख के देखना है हमेशा, है ना। सोशली सर्कल आपका ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि बस दूसरे को देख के आपको आपको अपना माइंड ख़राब भी करना है, कुछ भी करना है, आप उसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो। तो सद्व्रत का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
1: और अगर आप ये दिनचर्या का निर्वाह करते हैं
0: हाँ,
1: तो अपने आप पॉजिटिविटी
0: अपने
1: सारा दिन आपके
0: पॉजिटिविटी
1: साथ रहेगी।
0: आएगी सर बिल्कुल, घर पे आके घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना है। और
1: अच्छा,
0: पुराने टाइम के कंपैरिजन में सर अब डिफरेंस बस यही है कि हम फ़ोन पे पूरी तरह से अडेप्ट हो चुके हैं। पुराने टाइम में मानसिक अवसाद इसलिए कम होता था क्योंकि जॉइंट फैमिलीज होती थी, पेरेंट्स से डिस्कशन होती थी, भाई से डिस्कशन होती थी, अपने दोस्तों से डिस्कशन होती थी, आउटिंग होती थी, जो अब नहीं है।
1: वो कट गया।
0: मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत
1: हाँ
0: ज़रूरी है कि आपका किसी से बात करना, डिस्कस
1: जी,
0: करना।
1: अब रात का जो वक्त है तो हमारा रात का खाना कैसा होना चाहिए
0: रात का सर
1: और
0: खाना
1: हम कब तक सो जाना
0: बस
1: चाहिए?
0: सर हमने सूर्य को ही फॉलो करना है, और अगर आप ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली फॉलो कर लोगे कि आपको सूर्यास्त से पहले डिनर कर लेना है, चाहे वो
1: अरे
0: सर्दियाँ
1: वाह
0: हो चाहे
1: वाह।
0: गर्मियाँ हो, आपको सूर्यास्त से पहले डिनर करना है। और अगर आप उस टाइम पे डिनर करते हो तो आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम तो कभी नहीं होने वाली, और आपका स्लीप साइकिल भी मेंटेन हो जाएगा। सूर्यास्त से पहले आप डिनर कर लो, और डिनर करने के 1-1.5 घंटे के बाद आपको सो जाना चाहिए आइडियली। और सोने से पहले जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है वो दूध का सेवन कर सकते हैं, हल्दी के साथ डाल के, जिसको जिनको
1: गरम
0: हल्दी
1: दूध
0: डालनी है वो डाल सकते हैं, गर्म दूध, उससे
1: जी,
0: नींद अच्छी आती है,
1: उसके
0: उसका सेवन
1: बाद
0: कर
1: गुड
0: सकते हैं,
1: नाइट
0: गुड नाइट कर सकते हैं, और सुबह दोबारा सूर्योदय से
1: उठना
0: पहले उठना है सर।
1: है।
0: हाँ
1: डॉक्टर संदीप भाटिया, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत विस्तार पूर्वक आपने, वाकई आपकी बातचीत में हम खो गए थे। जैसे
0: हाँ जी सर,
1: हम सुबह सवेरे उठ गए हैं, अब पूरा दिन व्यतीत करने के बाद रात को हम गुड नाइट कर रहे हैं, तो ये
0: और
1: बहुत अच्छी चीजें
0: सर
1: आपने
0: एक्चुअली
1: बताई।
0: एक ना गीता का भी बड़ा अच्छा श्लोक है कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, मतलब
1: वाह वाह,
0: भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला था। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे लाभ हो चाहे अलाभ हो, आपको सम रहना है उस चीज़ में। अति का तो सेवन, आयुर्वेद में तो
1: हाँ
0: सिंपल बात लिखी है सर, अति सर्वत्र वर्जित, अति
1: जी,
0: सर्वत्र वर्जित मीन्स अति का हर तरह से वर्जन है, भोजन में अति वर्जन, व्यायाम में अति वर्जन, नींद में अति वर्जन,
1: अति नहीं करोगे तो मति काबू में
0: मति
1: रहेगी।
0: काबू में रहेगी, मति काबू में
1: वाह
0: रहेगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा सर,
1: बिल्कुल सही।
0: ये चीज़ है।
1: तो डॉक्टर संदीप भाटिया, आज इस संजीवनी प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे, बहुत लाभान्वित जानकारी दी। अब अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखिए। नमस्कार। अभी आपने संजीवनी कार्यक्रम सुना।
2: हे चंडीगढ़, दिस इज सहज सबरवाल, एन ऑथर, इन्फ्लुएंसर, मोटिवेशनल स्पीकर, यू टाइगर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड एन एरोनॉटिकल इंजीनियर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके सीवी में भी कोई ऐसी जगह है या कहानी है?

0: ट्रेडिशन या टैलेंट जो इंडिया को पता होना चाहिए, देन दिस इज अ चांस फॉर यू ऑल। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में आप 1 से 3 मिनट की अपनी वीडियो बनाएं और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने बताइए। बस आपको क्या करना है कि माई वेव्स पर आपको लॉगिन करना है और जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो 31 अगस्त 2026 तक आपने अपलोड करनी है। डोंट जस्ट विजिट योर सिटी, डिस्कवर टू, सो यू क्रिएट देन पोस्ट देन यू हैव टू स्प्रेड इट इन द होल इंडिया। थैंक यू।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 12 बजने को ही कुछ ही पलों में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। श्री वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6 से 8% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है।
3: इन्वेस्टमेंट स्टोरी, हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब $130 अरब का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में $1 के निवेश पर करीब $3.6 की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
4: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
2: श्री वैष्णव ने कहा कि देश के 99.6% रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है।
3: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
2: श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4th भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के 2025-27 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की 1 तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के मद्देनजर एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है उन्हें मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने मकाऊ के लियोन योक चोंग और एनजी वेंग ची को हराया। क्वार्टर फाइनल में ध्रुव और तनिषा का मुकाबला चीन की जोड़ी चेंग फांग हुई और गुआ शिनवा से होगा। भारत के साथ गोल में क्रिकेट

0: टेस्ट मैच के पांचवें दिन श्रीलंका ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 175 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत अपनी दूसरी पारी में 193 रन पर ऑल आउट हो गया और श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया गया। घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख है। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 342 अंक गिरकर 76,893 पर और निफ्टी 104 अंक गिरकर 24,051 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 12:05 हो चुके हैं। अगला प्रोग्राम है यादों की महफिल। इसके लिए हम आपको लिए चलेंगे विविध भारती मुंबई।

चंबल की कसम, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल थे, खयाम का संगीत था। आइए सुने आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गीत सुलक्षणा पंडित की आवाज में, नक्शलालपुरी के बोल, खयाम का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

0: कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल थे खयाम का संगीत था।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

खेल समझे हो मगर एक दिन दिखा देंगे मोहब्बत इसको।

0: मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना। संगीतकार थे खयाम, फिल्म थी मोहब्बत इसको कहते हैं। आज का ये प्रोग्राम खयाम साहब के नाम।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझवा

0: प्रेयसी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, टोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
1: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
0: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को। आज के मेहमान

0: लता मंगेशकर और तलत अजीज की आवाजें थी। मखदूम मोहिउद्दीन के बोल थे खयाम का संगीत था, फिल्म थी बाजार। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: दोस्तों, प्रोग्राम एफएम लाइफलाइन में इस बार हमारे साथ रहेंगे प्रोफेसर अमित गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। टॉपिक रहेगा कॉर्निया डोनेशन यानी नेत्रदान। नेत्रदान कैसे हो सकता है, इससे जुड़ी अधिक जानकारी, किसी शंका का समाधान आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें। हमारे नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। आज बाद दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा।
2: आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ, बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में। बस 1-3 मिनट का वीडियो बनाओ और शोकेस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है, वीव्स ओटीटी ऐप पर रजिस्टर करो जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वीव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 रुपीज, स्टेट लेवल पर 2 लाख रुपीज और नेशनल लेवल पर 5 लाख रुपीज। सबमिशंस ओपन है 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक, तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।

0: Hey Chandigarh, this is Sahaj Sabharwal, an author, influencer, motivational speaker, youth icon from Jammu and Kashmir and an aeronautical engineer. So, I ask you, do you have any place in your CV, or a story, or tradition, or talent that India should know about? Then this is a chance for you all, Gems of India Challenge, you make your video of 1-3 minutes. और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने बताइए। बस आपको क्या करना है कि माई वेव्स पर आपको लॉगिन करना है और जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो 31 अगस्त 2026 तक आपने अपलोड करनी है। डोंट जस्ट विजिट योर सिटी, डिस्कवर टू, सो यू क्रिएट देन पोस्ट देन यू हैव टू स्प्रेड इट इन द होल इंडिया। थैंक यू।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे आज के बाकी के कार्यक्रमों की। प्रादेशिक समाचार सुनिए, अब से कुछ ही देर में 1:05 पर पहले हिंदी में और उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में। यही क्रम रहता है शाम 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में प्रादेशिक समाचार। दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे 2:15 पर शाम 5 बजे, शाम 6 बजे, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात 11 बजे

एक और स्पॉन्सर प्रोग्राम रात 8:15 पर आप सुनेंगे फार्म टू सिटी। हमारे केंद्र से पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए पेश किया जाएगा शाम 6:30 पर। शाम 7:45 पर मुख्य प्रादेशिक समाचार होंगे, उसके बाद कुछ पंजाबी गाने। रात 10:30 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुरसांझ कार्यक्रम में आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे।

विविध भारती मुंबई से जो प्रोग्राम रिले किए जाएंगे उन प्रोग्रामों के बारे में भी हम आपको बता दें। दोपहर 1:30 पर विविध भारती की जो कार्यक्रम है वो रहेगा सुरीला सफर। 2:00 त्रिवेणी, 2:30 सदाबहार नगमे, 3:00 प्रोग्राम सखी सहेली महिलाओं के लिए, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। पिटारा में शाम 4:00 आज के मेहमान प्रोग्राम में अभिनेता निर्देशक पंकज रैना से हम आपको मिलवाएंगे यानी बातचीत सुनवाएंगे। शाम 7:00 फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम में आपके लिए पंजाबी गीत जो पेश किए जाते हैं वो शाम 6:30 पर होते हैं, शाम 7:45 पर और रात 10:30 पर पंजाबी गीत पेश किए जाते हैं हमारे केंद्र से। फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम में फिल्मी गाने सुनवाए जाएंगे शाम 7:00। रात 8:00 प्रोग्राम हवा महल में आप सुनेंगे झलकी अधूरी बात। अभिनेता उत्पल दत्त पर केंद्रित है आज के फनकार प्रोग्राम रात 9:30। 10:00 सुनिए प्रोग्राम छाया गीत और रात 9:00 प्रोग्राम आपके लिए। ये थी जानकारी हमारे आज के कार्यक्रमों की। बाकी के कार्यक्रमों की कुछ हमारे यहां से जो पेश किए जाएंगे और कुछ विविध भारती मुंबई से रिले किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 1:05 होने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार पहले हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में।

0: प्रादेशिक समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी जालंधर से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना पहली सितंबर से दो चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्र सीजीडी कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सीधी भर्ती में 20% तक क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं, जो इस वर्ष पहली सितंबर से प्रभावी होंगे। ये 20% आरक्षण गृह विभाग के अंतर्गत आने वाले पदों पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, माइनिंग व वाइल्डलाइफ गार्ड, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल तथा फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर पर लागू होगा। इसके अतिरिक्त समूह सी के अन्य पदों पर 5% और कौशल विशेषज्ञता वाले समूह बी पदों पर 1% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक योग्यता परीक्षा और समूह सी की भर्तियों के लिए आयोजित होने वाले सामान्य पात्रता परीक्षा से छूट दी गई है, जबकि निर्धारित लिखित परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य रहेगा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झींडा की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने कल हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। बैठक के बाद जगदीश सिंह झींडा ने बताया कि पंजोखरा साहिब से जुड़े विषय पर मुख्यमंत्री के साथ बातचीत सकारात्मक और सफल रही। मुख्यमंत्री ने इस मामले में हर संभव मदद और सहयोग का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री से मिले इस भरोसे के बाद सिख संगठनों ने 25 अगस्त को अपना प्रस्तावित रोष प्रदर्शन रद्द कर दिया है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रधान ने सभी सिख संगठनों और साधु संगत से किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने प्रदेश में आपसी भाईचारे, शांति और सौहार्द बनाए रखने का आग्रह किया है। जींद पुलिस की अपराध जांच शाखा ने पंजाब हरियाणा सीमावर्ती क्षेत्र में 5 किलोग्राम 700 ग्राम हेरोइन बरामद की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत 10 से 11 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने एक पत्रकार वार्ता में आज ये जानकारी साझा की।
2: कल हमने एक एनडीपीएस की ह्यूज क्वांटिटी सीज की है और ये जो सीजर किया गया है ये पंजाब हरियाणा का जो बॉर्डर एरिया है वहां से किया गया है। इसमें हमारी CIA 1 की टीम का मेन रोल रहा इसको पकड़ने में। चिंता का विषय भी है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में किस तरह से जो कंट्राबैंड मटेरियल है हरियाणा बॉर्डर पे हरियाणा की सीमाओं में आ जा रहे हैं।
1: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कल एक गुप्त सूचना के आधार पर गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पीपलथा गांव के पास घूम रहे दो संदिग्ध युवकों की तलाशी लेने पर उनके बैग से नशे की ये खेप बरामद हुई। पकड़े गए आरोपियों की पहचान पीपलथा गांव निवासी लवप्रीत और बलजीत के रूप में हुई है। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक देश भर में 50 नवजात बेचे हैं। बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक गिरोह से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुरुक्षेत्र पुलिस की CIA टीम और दो शातिर बदमाशों के बीच कल रात हुई मुठभेड़ में दो आरोपी घायल हुए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

0: ਰਾਸ਼ਟਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ 1:40 ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत, मिलकर आनंद लिया जाए कुछ फिल्मी गानों का। तो आइए सबसे पहले करते हैं फिल्म संगीत की शुरुआत इस गाने से।

संगीत मिलकर आनंद लिया जाए कुछ फिल्मी गानों का, तो आइए सबसे पहले करते हैं फिल्म संगीत की शुरुआत इस गाने से।

0: करूं।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

मुकेश और लता मंगेशकर को अभी आपने मिलन फिल्म से सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा,
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य हैं। आज ही अपनाएं BSNL।
3: अगला गाना लता मंगेशकर के साथ सुरेश वाडिकर ने गाया है, गुलजार के बोल हैं। राहुल देव बर्मन का इसमें संगीत है और ये फिल्म है लिबास।

0: लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजों में अभी आपने लिबास फिल्म से ये गीत सुना। गुलजार के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था और यही था अब तक का फिल्म संगीत।
1: नमस्कार चंडीगढ़, मैं हूं ओजस्वी शर्मा, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर। अपने शहर चंडीगढ़ में बहुत सी जगहें, बहुत सी कहानियां, बहुत से ट्रेडिशंस और बहुत सारा टैलेंट है जो कि मैं मानता हूं कि पूरे भारत को पता होना चाहिए। बस एक ही मौके की तलाश है और यही वो मौका है। दिस इज योर चांस। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो बनाइए और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने लाइए। माई वेव्स OTT पर लॉगिन कीजिए, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो 31 अगस्त 2026 तक अपलोड कर दीजिए। सो डोंट जस्ट एक्सप्लोर योर सिटी, डिस्कवर इट्स जेम। दिखा दो पूरे भारत को जो आपके अंदर छुपा हुआ जेम है। शूट इट, शेयर इट, शो इंडिया।
0: और अपने श्रोताओं को हम याद दिला दें, आपको मालूम ही है आज बुधवार का दिन, बाद दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक FM लाइफलाइन प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग का दिन होता है। और इस रिकॉर्डिंग में इस बार हमारे साथ रहेंगे प्रोफेसर अमित गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी PGI चंडीगढ़। और बातचीत का विषय रहेगा नेत्रदान, कॉर्निया डोनेशन। नेत्रदान के बारे में आपका कोई सवाल है, अधिक जानकारी आप चाहते हैं, किसी शंका का समाधान चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कीजिएगा। हमारे नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। हमें आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा बाद दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक प्रोग्राम FM लाइफलाइन में। ये तो थी प्रोग्राम संबंधी जानकारी। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
2: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन। 50

लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: और आइए अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई अगले प्रोग्राम के लिए, जिसका नाम है सुरीला सफर।
2: बचपन वाली बात भी बताइए कि जब तारों को लेकर पहेलियां बुझी जाती थी कि ये कौन सा वाला तारा है, और अगर कोई गलत बताए तो शर्त लगती थी, फिर कुछ पैसों की शर्त लगती थी या फिर कुछ काम करने की शर्त लगती थी कि अगर गलत जवाब दिया तो वो कल फिर कोई काम सौंप दिया जाता था कि ये हिस्सा, अलमारी का हिस्सा साफ सफाई करोगे या आंगन बुहारोगे, या ये सज़ा भी होती थी। तो इस तरह की कोई याद आपके जहन में है तो ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल माया फिल्म का गाना सुनिए और बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम।
3: तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन

माया फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें थी। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सलील चौधरी का संगीत था। हमने ये सवाल आपसे पूछा था और एक श्रोता ने लिखा है कि जब छोटे थे तो दीदी के गांव जाया करते थे, छत पर खटिया डालकर तारे गिना करते थे और आपस में चाची की लड़कियां हम सब बहनें मिलकर यही कहती थी कि तूने कितने तारे गिने। आज वो दिन है कि तारे आसमान पर दिखाई नहीं देते, गिने या देख भी ले तो ऐसा लग रहा है कि बरसों बीत गए तारे नज़र आए हुए। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि जो पिछला गाना सुनवाया था याद को लेकर और अभी तस्वीर को लेकर ये गाना सुनवाया है। और जब बात तस्वीर की चली है तो तस्वीर से जुड़ा हुआ और कौन सा गाना इस वक्त आपके जहन में गूंज रहा है, हो सकता है आपका वो गाना यहाँ पर हम बजाते हैं अभी तुरंत। और एक श्रोता ने लिखा है कि पहले हमारी नानी जी हमेशा तारा देखकर ही शाम का खाना खाती थी, तारे को पहले दर्शन करके, तारीख को पहले दर्शन करके उसका भोग लगाकर खाती थी। भाई चांद को देखकर खाना खाने की परंपरा के बारे में हमें पता है कि जब कोई व्रत त्यौहार होता है, कोई ख़ास त्यौहार जैसे करवा चौथ का व्रत है, तो महिलाएँ चांद देखकर खाना खाती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि छोटे छोटे तारों के साथ चांद बड़ा ही अपना लगता है, हमें बहुत सारी बातें हम याद करते हैं चांद से जुड़ी हुई, पर वो हमारी बातों का जवाब नहीं देता। चांद से बहुत सारी बातें पूछते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देता, बस महसूस ज़रूर होता है कि वो हमें सुन रहा है, पर कभी तो एक छोटा ही सही जवाब देना चाहिए ना। हम रोज़ देखते हैं कि मगर कई दिनों से हमें चांद दिखा ही नहीं, कल ही हम आसमान में देख कर आसमान से पूछ रहे थे कि हमारे चांद को कहाँ छुपा रखा है। भाई चांद से तो सभी बतियाते हैं, बचपन में तो चांद के जो चांद में परछाई दिखती है, लोग कहते थे कि कोई वो बुढ़िया है जो सूत काटती है, और कई गानों में भी कई कविताओं में भी ये बात आती है। तो चांद से जुड़ी हुई तो बहुत सारी बातें हैं हमारे जहन में, बहुत सारी पहेलियाँ हैं। आपके जहन में कौन सी बात है वो आप साझा कीजिए। हाँ तो आपने तस्वीर वाला गाना याद किया क्या जो हम सुनवाने जा रहे हैं, कहीं यही गाना तो आपने नहीं याद किया या कोई और गाना हो तो वो भी बताइए। और ये गाना सुनते सुनते ज़रूर बताइए कि किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। फिल्म है सावन को आने दो।

सावन क्वानेदू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने पूछा था किन कलाकारों पर फिल्माया गया है, अरुण गोविल और जरीना वहाब। हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और तस्वीर से जुड़े हुए गानों के बोल भी लिखे हैं। तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, ये बोल कई श्रोताओं ने लिखा है, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। और सावन को आने दो फिल्म का नाम था, हमारे श्रोताओं ने बताया है। और फिर एक श्रोता लिख रहे हैं तस्वीर बनाता हूँ, फिर एक श्रोता लिख रहे हैं कि दूर गगन की छांव और खुले आसमान के नीचे रहने वाले को ही पता होता है कि तारों को गिनना और अंधेरी रात में चांद देखने का मज़ा ही अलग होता है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि तस्वीर तेरे दिल मेरा बहला न सकेगी, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये गाने के बोल यही लिखे हैं। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा कि सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, और चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। मतलब इबारत से जुड़े हुए ये गाने लिख रहे हैं। और एक श्रोता की टिप्पणी है कि आज की इबारत में खयाम के संगीत सा ठहराव है, चांदनी रात की खामोशी, खिड़की के बाहर टिमटिमाता तारा, मेज़ पर रखी पुरानी तस्वीर और बरसों बाद भी धड़कती हुई एक अधूरी कहानी। एक श्रोता ने लिखा है कि खयाम शब्दों की गहराई को समझते थे, खयाम साहब के जो गाने हमने सुनवाए उसके लिए इन्होंने लिखा है कि उनके गाने सिर्फ संगीत नहीं बल्कि बेहतरीन शायरी और साहित्य का एहसास कराते थे। चलिए अब हम अगला गाना आपको सुनवाते हैं महबूब की मेहंदी फिल्म से। आपको पूछना है कौन है हीरो कौन है हीरोइन, और साथ में एक पहेली और शामिल है कि ऐसा ही एक गाना है मुकेश की आवाज़ में, कौन सा गाना है जिसमें दीवानापन शब्द आता है। और शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है, फिल्म का नाम आपको बूझना है। तो एक ये पहली हो गई, दूसरी पहली कि कौन है हीरो हीरोइन इस गाने में।

महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना था और हीरो हीरोइन का नाम हमने पूछा था, राजेश खन्ना, लीना चंदावरकर। और एक पहेली और पूछी थी जो ये थी कि मुकेश की आवाज़ में एक और ऐसा ही गाना है, ऐसा नहीं मतलब जिसमें दीवानापन शब्द आता है, और उसमें फिल्म का नाम हमने पूछा था और गाने के बोल। मुकेश की आवाज़ में गाना है जिसमें दीवानापन शब्द आता है, गाने के बोल बताइए फिल्म का नाम। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। हिंट के लिए हमने आपको ये बता दिया। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत दिल को छू लेने वाली है, ये बात हमारे कई श्रोताओं ने लिखी है। आप सभी से एक गुजारिश है कि आप प्रार्थना करें कि मैं जल्द ही भारत आ सकूं और विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपके दर्शन कर सकूं। क्या बात है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप विदेश से अपने देश में लौटना चाहते हैं, और ये मेरा बहुत बड़ा सपना है, ये लिख रहे हैं। आपका सपना पूरा हो, हम शामिल हैं आपकी इस दुआ में। और हमारे और भी श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियाँ हैं जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अब तो जिम्मेदारियों का बोझ है, पहले हम तारे गिनते थे, आसमान साफ होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में जब छोटे भाई बहन एक साथ खेलते थे तो बोलते थे ये हिस्सा तारे का मेरा है, फिर हम आपस में एक दूसरे से कहते थे कि मेरी तरफ के तारे ज़्यादा हैं, फिर करते करते लड़ाई हो जाया करती थी। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि गर्मियों के दिन में गाँव जाने पर जब छत पर सोते थे तो बीच रात में अजिया माँ काकी को उठाने लगती थी, सात डरिया सप्तऋषि दिखाई दे रहा है, भोर होने वाला है। क्या बात है भाई, तब तारों से चांद से ही समय का अनुमान लगा लिया जाता था। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत में चांदनी रात की खामोशी है, खिड़की के बाहर टिमटिमाता तारा, मेज पर रखी पुरानी तस्वीर बरसों बाद धड़कती है। तो जो मैंने इबारत लिखी है उसकी समीक्षा इन्होंने कर दी है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेम में दीवानी प्रेयसी, चांद तारों में प्रियतम की तस्वीर देख उसका इंतजार कर रही है, दिल में उठा दर्द आंखों से बयां हो रहा है। कौन सा गाना आपने सोचा था कि अब बजेगा ये, जिसमें इबारत में कौन सा शब्द आता है ये भी बताइएगा। फिल्म शगुन, आपको पहचाननी है आवाज़ किसकी है, किसकी आवाज़ में ये गाना है और संगीतकार का नाम भी। संगीतकार और जिनकी आवाज़ है उनसे एक ख़ास रिश्ता भी है, ज़रा बताइएगा।

0: शगुन फिल्म का गाना, जगजीत कौर की आवाज, साहिर लुधियानवी के बोल, खयाम का संगीत। सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है, लेकिन एक सवाल और पूछा था कि जो संगीतकार हैं और गायिका हैं, इनका खास रिश्ता था, इसके बारे में हमारे श्रोताओं ने नहीं बताया। इसके जवाब का भी हमें इंतजार रहेगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि मजबूरी से दिल तोड़कर चले जाने वाले उस सपनों के सौदागर का प्रेम धागा इतना पक्का था कि प्रियतमा के रूह में सदा के लिए फंस गया था। और एक श्रोता ने लिखा है कि ममता जी आज की अधूरी इबारत को पूरा नहीं करेंगी क्या? भाई, ये तो इबारत को पूरा तो आपको करना था, हमने तो आपसे ही पूछा है।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: भी बताइएगा।
2: हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो।
0: दो आवाजें हैं, दोनों के नाम बताइए।
3: इस दिल को सजा दे तो।
2: हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो।

0: दिल को बता दे तो
1: गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें थी। पूछा था हमने, सभी ने सही जवाब दिया है। साहिर लुधियानवी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था, फिल्म थी प्यासा और माला सिन्हा गुरुदत्त के अभिनय से सजी थी फिल्म। हमारे श्रोताओं ने यह भी सही बताया। और एक पहली हमने आपसे पूछी थी कि मेरे दीवानेपन की कोई दवा नहीं महबूब की मेहंदी, और पूछा था कि एक और गाना है जिसमें दीवानापन शब्द आता है, सभी ने सही जवाब दिया, यहूदी फिल्म ये मेरा दीवानापन है, मुकेश की आवाज़। और हमारे कई श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत में जो कहानी बुनी बहुत पसंद आई। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये जो आज की कहानी थी, अगली बार जब आइएगा तो ऐसी ही कोई कहानी लेकर आइएगा। क्या बात है भाई, लेकिन कहानी का अंत आप सबने बताया नहीं। हमने पिछली दफ़ा भी कहानी का अंत पूछा था, आप सभी ने बताया था, वही अंत हमने किया था, लेकिन आज हमारे श्रोता हम ही से पूछ रहे हैं। तो चलिए अंत, फिर अंत में जो लाइन लिखी है उसी अंत से, उसी लाइन से हमें समापन करना पड़ेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि ये रचना केवल बिछड़ने का रोना नहीं है, बल्कि ये एहसास कराती है कि सच्चा प्रेम पाना या खोना नहीं, बल्कि किसी को अपनी रूह में हमेशा के लिए संजो लेना है। प्रेम का पैगाम कबूल हो गया है तो दोबारा भेजने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए, अब जब असली प्रेम सच्चा प्रेम होता है तो दुख दर्द कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन इबारत का अंत यही था, तो इसी गाने से अंत करते हैं। फिल्म का नाम ज़रा बता दीजिए, क्या है फिल्म का नाम, और गीतकार संगीतकार का नाम पता है तो वो भी बताइए।

शहनाई फिल्म का गाना था, आशा भोसले की आवाज़ थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना। सुरीला सफर का ये सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाज़त।

नमस्कार। सारी दुनिया में 19 अगस्त का दिन विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए आपको इसका इतिहास बताएं। दरअसल विश्व फोटोग्राफी दिवस का जो ताल्लुक है वो है डगेरोटाइप नाम की एक फोटोग्राफी प्रोसेस से, जिसका आविष्कार किया था फ्रांस के लुईस डगेरो और जोसेफ निकोफोन ने 1837 में। फिर हुआ ये कि 9 जनवरी 1839 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज ने डगेरोटाइप प्रोसेस की उद्घोषणा की और 19 अगस्त 1839 के दिन फ्रांस की सरकार ने इसका पेटेंट खरीद लिया और इसे सारी दुनिया के लिए मुफ्त में उपलब्ध करवा दिया। तो इस तरह से ये मानना चाहिए कि 19 अगस्त के दिन फोटोग्राफी की सुविधा सारी दुनिया के लिए उपलब्ध हो गई थी और इसलिए विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। जरा सोचिए कि वो जमाना कैसा था जब फोटोग्राफी बड़ा ही महंगा शौक होता था और बहुत ही रईस लोग अपने फोटो खिंचवा सकते थे।

फोटोग्राफी ने विज्ञान की प्रगति के साथ बहुत सारे बदलाव देखे हैं। एक जमाना था जब फोटोग्राफी के लिए फिल्म रोल की जरूरत पड़ती थी और एक निश्चित संख्या में फोटो क्लिक करने के बाद ही उस फिल्म को धुलने भेज दिया।

किया जाता था। जब वो डेवलप होके और प्रिंट होके आती थी, तब हमें ये देखने मिलता था कि तस्वीरें किस तरह से आई हैं। इनमें से कई तस्वीरें बेकार भी हो जाती थीं। जाहिर है कि फिल्म रोल वाले वो दिन बड़े ही सुहावने थे और बहुत ज्यादा जिज्ञासा और बेकरारी से भरे हुए थे, क्योंकि फिल्म रोल के खत्म होने का इंतजार करना पड़ता था। आज भी वो काली सफेद तस्वीरें पुराने जमाने की यादों को हमारे सामने ताजा कर देती हैं।

आगे चलकर जमाना बदल गया और अब तो वो जमाना आ गया है जब फोटोग्राफी के लिए लोग कैमरे से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे हैं। जरा सोचिए कि एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट मोबाइल आपके लिए कम्युनिकेशन मीडियम का काम भी करता है और दूसरी तरफ वो आपके लिए कैमरे का काम भी करता है। जिंदगी के हर महत्वपूर्ण या आम पल को आप तस्वीरों में बांध सकते हैं, लेकिन इसका असर ये हुआ कि तस्वीरों का जो महत्व था वो बहुत कम हो गया, क्योंकि तस्वीरें बड़ी आम हो गई। ये तस्वीर खींची और ये सोशल मीडिया पर चढ़ा दी, या फिर मोबाइल कम्युनिकेशन मीडियम के जरिए आपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेज दी और उन्होंने फौरन देख ली और वो खुश भी हो गए। यानी चीजें आसान हो गईं तो उनका महत्व कम हो गया, पर फिर भी आज जिंदगी के कुछ पल तस्वीरों में कैद हो जाते हैं और हम विकल होकर उन पलों को याद किया करते हैं।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 100

0: 30 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
1: इन्वेस्टमेंट स्टोरी,
2: हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में $1 के निवेश पर करीब $3.6 की आर्थिक गतिविधि

0: देश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
1: इन्वेस्टमेंट स्टोरी,
2: हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब $130 अरब का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में $1 के निवेश पर करीब $3.6 की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
1: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
2: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
3: उत्तर प्रदेश आज भारत की top 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत और जापान सहयोग महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़े हैं।
4: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पेरिटी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरी कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्री कोइजुमी ने आज मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4थी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गईं। बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
5: इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के नए चांसलरी परिसर की आधारशिला भी रखी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। इसके अंतर्गत उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटल क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास तथा सतत विकास सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की जाती है और नए अवसर तलाशे जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में भारत सिंगापुर आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नए अवसरों पर चर्चा होगी। सकलैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए स्थायी तंत्र शामिल हो। NEET UG 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे अपना घोषणामा दाखिल करें जिसमें ये बताया जाए कि राधा कृष्ण समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि इसका

0: उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। नीट यूजी 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद पूर्व ISRO अध्यक्ष डॉ. के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान तथा उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय DNA और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 8 लाख महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया, जबकि इसके बाद 5 लाख से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्यों को नया वाहन चालक और सहायक दिया जाएगा। इसके अलावा ईंधन खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उत्तरी चेन्नई में 300 करोड़ रुपए की लागत से 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के लिए बीमा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की भी घोषणा की। पंजाब पुलिस ने नवनियुक्त रक्षा कर्मियों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है जो नए भर्ती हुए कर्मियों के दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का सत्यापन करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, विदर्भ, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरलम और माहे में भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई हिस्सों में अब भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
1: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी भारी मुश्किलें पैदा कर रहा है, खासकर भद्रक जिले में जहां बैतरणी और सालंदी नदियों के उफान के कारण बड़े इलाके जलमग्न है। वासुदेवपुर, तिहिड़ी, धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली ब्लॉक के गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज 297 स्कूल और 395 आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ODRAF के जवानों ने केंद्रापड़ा जिले के कुलसाही गाँव में एक सरकारी आवासीय स्कूल में 4 दिन से फंसे 230 छात्रों को बचाया है। IMD ने शुक्रवार से रविवार तक उड़ीसा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में कल देर रात हुई तेज वर्षा से धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: धारचूला क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त होने से आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाला सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है। मार्ग बंद होने से दारमा, चौदास और व्यास घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय और धारचूला क्षेत्र से कट गया है। प्रशासन ने पुल को जल्द बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। BRO के अनुसार आज शाम

0: डायवर्जन रूट का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण सड़कें बाधित हैं। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। वहीं टहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट।
2: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहले से पंजीकृत और वैध RFID कार्ड वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं से श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। नए पंजीकरण पर फैसला मौसम और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा का 455 श्रद्धालुओं वाला तीसरा जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पुंछ के राजपुरा गांव के लिए रवाना हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मीनाक्षी।
1: भारत ने गोल में 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में आज श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में नीदरलैंड्स में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने 2 मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मकाऊ की जोड़ी को उन्होंने हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी वॉकओवर मिलने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता पुलिस ने न्यू मार्केट इलाके में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में लगी आग में 9 लोगों की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। मृतकों में 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल हैं। 16 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट दर्ज की गई। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 76,871 पर और निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,045 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने NEET UG पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। ये खानदान फिल्म का गाना है। लता मंगेशकर की आवाज, नक्श लालपुरी के बोल, खयाम का संगीत है।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं, नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
1: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: दिल अपना और प्रीत पराई, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। शब्दकार थे शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र की रचना थी, शंकर जयकिशन की धुन थी। फिल्म है 11,000 लड़कियां, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, एन दत्ता का संगीत है।

11,000 लड़कियां इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, एन दत्ता का संगीत था। सदाबहार नगमे प्रोग्राम के आखिर में आइए सुनते हैं धूल का फूल फिल्म का गाना सुधा मल्होत्रा की आवाज़ में। साहिल लुधियानवी के बोल, एन दत्ता का संगीत है। सुनिए यह प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: नमस्ते सभी सखियों को, सभी सखियाओं को, सभी सखाओं को और सुनने वालों को स्वीकार कीजिए चंचल वर्मा का नमस्कार। और दीपा बैठी है मेरे सामने, कैसी हो दीपा?
2: बिल्कुल ठीक। और हमारे सभी साथियों को यानी हमारे सखियों
1: हेल्दी नमस्कार।
2: हाँ बिल्कुल, हेल्दी नमस्कार देना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम लगातार ना उस प्रेरणाओं में रहें, इंस्पिरेशन में रहें।
1: हाँ।
2: ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हम आपको दे रहे हैं, आप भी हमें देते हैं
1: जी।
2: हमारे साथी देते हैं जो हमें सुनते हैं उनकी तरफ से भी। और अगर कभी कहीं कोई भूल चूक हो जाए, और इन दिनों ये दिन ऐसे चल रहे हैं, अगर कहीं थोड़ा सा भी आलस आ रहा हो ना, तो फिर से ऐसा लगता है कि हाँ हमारे किसी एक दोस्त ने कहा है अपनी सेहत का ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल
2: बिल्कुल, लगातार इस बात पर अपना ध्यान रहे कि अपनी सेहत का और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उसके साथ कोई हल्का फुल्का उसे कहीं हल्के में ना ले,
1: कोई समझौता नहीं करना है। और आपके कहने से पहले ही मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि हेल्दी नमस्कार आएगा, इसीलिए बहुत उत्सुकतावश
2: हाँ,
1: मैंने कह दिया।
2: तो एक बार फिर से अपने साथियों को, सखियों को और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: चलिए और बता दें कि आज किस विषय पर हम बात करेंगे। देखो, सुंदर दिखने का शौक अगर सबको होता है तो सुंदर फोटो आए ये भी शौक सबको होता है।
2: हाँ बिल्कुल।
1: और कई बार ऐसा होता है ना कि हम यूं ही बैठे हैं, किसी ने फोटो खींचने का अंदाज उसका इतना अच्छा था ना, तो वो फोटो देखकर हमें लगता है कि उस दिन तो मैंने कोई तैयार भी नहीं हुए थे, हम बाल भी नहीं बनाए थे, और कई बार हम जिस जगह पर बैठे होते हैं वो भी बहुत खूबसूरत नहीं होती। लेकिन ये फोटोग्राफी का कमाल है कि आपकी जो छवि है वो उभर कर इतनी सुंदर सामने आती है कि लगता है कि तारीफ कर दो जिसने फोटो खींची है।
2: ये बात तो बिल्कुल सही है। और वो जो सुनहरे पल कैद हो जाते हैं हमेशा के लिए, और फिर जब कुछ सालों के बाद हम एल्बम खोल के देखते हैं, वो वक्त याद करते हैं, तो भाई ये आविष्कार कितना ऐतिहासिक है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और बहुत सारे संदेश इस विश्व फोटोग्राफी दिवस के लिए आए हैं।
1: और एक समय था ना कि कई बार जब कैमरे से फोटो क्लिक होती थी तो हम इंतजार करते थे कि कब वो पूरी रील पहले खींची जाएगी, फिर उसे धुलाई पे जाएगी।
2: हाँ।
1: और फोटो जब डेवलप होके आएंगे तब हम उन्हें देखेंगे। लेकिन अभी जिस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में, जिसे हम मोबाइल के नाम से जानते हैं, आपने जैसे ही क्लिक किया आपके हाथ में फोटो होता है
2: जी।
1: अगर आप किसी को दिखाना चाहते हैं तो आपके पास उसे भेजने के, यानी कि एक दूसरे के साथ शेयर करने के ऑप्शन भी होते हैं।
2: बिल्कुल।
1: अब धुलाई करवाएंगे इतना इंतजार ही नहीं करना होता, और तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आप तुरंत जाकर प्रिंट भी ले सकते हैं उसका। अगर आपको एक हार्ड कॉपी यानी कि अपने पास में रखनी है, आपको कई बार लगता है कि कहीं कोई डिलीट ना हो जाए, तो उसे हमेशा के लिए अगर सुरक्षित रखना है तो बहुत लंबा समय इंतजार नहीं करना है।
2: बिल्कुल सही कहा। और जो डिलीट वाली बात कही है ना आपने, दिल में कहीं कुछ ऐसी भावनाएं आ जाती हैं कभी कभी चंचल, जो हमें डिलीट कर देनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: है ना,
1: यानी कि जो नफरत की, क्रोध की भावनाएं हैं उन्हें भुलाकर हमेशा अपने दिल में एक इंसानियत की, जो मानवता की भावना है, दूसरों का भला करने की भावना है, उसे हम सहेज कर रख सकते हैं।
2: बिल्कुल सही, ताकि हम आगे जो जीवन में चलें तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यानी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें, और खुशियों को और मन की शांति और सुकून को प्राथमिकता देते हुए आगे निकलते चलें जीवन में। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए देखिए, आज है विश्व मानवता दिवस,
1: और यही हमने शब्द लिया है जब हम बात करेंगे कि शब्द हमारे और विचार आपके, तो मानवता को लेकर हमारे सुनने वालों के क्या विचार हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं, वो हमें जरूर लिखकर भेजें। तो मानवतावादी दिवस के बारे में भी बात होगी, और मानवता के बारे में हमारे सुनने वालों की सोच क्या है इस बारे में भी बात होगी।
2: और साड़ियाँ पहनना कैसा लगता है, ये विचार अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या पसंद है आपको साड़ी पहनना?
1: भाई महिलाओं को साड़ी पहनना पसंद ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, और खास मौके जब आते हैं ना, वैसे हम जो भी कैजुअल कपड़े जो होते हैं हम पहन लेते हैं, कई बार सलवार सूट पहनते हैं, कई बार हम जीन्स टॉप भी पहनते हैं, कहते हैं कि वेस्टर्न आउटफिट कभी करने का मन करता है। लेकिन जब कोई खास मौका हो, किसी से मिलने जाना है, घर पे कोई उत्सव है, कोई त्यौहार है, या कभी मन में लगाना कि नहीं आज कुछ मन में खास बनने का अवसर है, तो उस वक्त सबसे पहला परिधान जो हमारे जहन में आता है वो होता है साड़ी।
2: बिल्कुल,
1: और इतने सारे प्रकार

0: है ना साड़ी के, कि कई बार चुनना मुश्किल होता है, लेकिन अलग अलग मौके के हिसाब से साड़ियां चुनी जाती
1: चुनी
0: हैं।
1: जा सकती है, जैसे कि सावन के महीने में लहरिया साड़ी।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, और लहरिया साड़ी की ही आज हम बात करेंगे। लहरिया साड़ी राजस्थान में तो बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन
1: जी
0: आजकल हर जगह ये पहुंच चुकी है। तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं इसके बारे में जरूर हमें बताएं कि हमारी सखियां किस तरह से लहरिया पहनती हैं, या उनके वार्डरोब में साड़ी है कि नहीं।
1: है या नहीं। और जिस दिन आपको साड़ी पहन के कहीं जाना है तो फिर घर में एकदम अफरा तफरी होती है ना कि भाई मुझे जाना है, अब हम जल्दी नहीं आ पाएंगे, तो ऐसे में कुछ झटपट बना के रख दें, खिला दें घर में, जो पीछे परिवार में बच्चे
0: हाँ
1: रह गए हैं या पतिदेव रह गए हैं या कोई और परिवार के सदस्य, तो क्या झटपट बनाया जा सकता है। कुछ संदेश आए हैं, हम चाहते हैं आप और कुछ रेसिपीज
0: बिल्कुल,
1: भेजिए।
0: हमारी सखियां बड़ी होशियार हैं, वो इस तैयारी में होती है कि भाई आज जल्दी से कुछ बनाना है, तो उनके पास उनके पिटारे में झटपट वाले कौन से व्यंजन होते हैं, खासतौर पे जो स्नैक्स के आइटम होते हैं ना, तो वो हमें लिखकर भेजें। तब तक एक गाना सुन लेते हैं सबके साथ
1: चलिए
0: में।

0: कई बार अपनी यादों को भी साथ संजो कर चलना होता है। फोटोज में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। जो हमारी तस्वीरें होती हैं पुरानी, वो
1: जी
0: हमें उन यादों से जोड़े रखती हैं, हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं उनसे भी जोड़े रखती हैं। तो कई बार मन में आता है ना कि फोटोग्राफी क्या चीज़ है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं कि फोटोग्राफी रोशनी का इस्तेमाल करके चित्र बनाने की एक कला होती है। और 19 अगस्त का दिन होता है, इसे विश्व स्तर पर फोटोग्राफी के रूप में हम मना रहे हैं आज भी। और विविध स्तर और रचनात्मक तरीकों से फोटोग्राफी की कला और शिल्प का इस दिन सम्मान किया जाता है।
1: अगर इसके इतिहास में थोड़ा जाएं हम चंचल, तो शुरुआत में फोटोग्राफिक प्रक्रियाओं में डैगोरियोटिप ये
0: हाँ
1: आविष्कार किया गया था,
0: बिल्कुल
1: जिसे 19 अगस्त 1839 में फ्रांसीसी सरकार ने दुनिया को उपहार के रूप में ये घोषित किया था।
0: और ये उपहार देखो ना कितना बहुत काम की चीज बन गई हमारे।
1: बिल्कुल, तो ये लुई और जोसेफ निप्स, इन दोनों ने मिलके इस टाइप को, ये
0: ये जो
1: डेकोरेट,
0: आविष्कार है,
1: हाँ
0: हाँ
1: ये जो आविष्कार है, इसको विकसित किया था और इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने हमारी और आपकी छवियों को कैप्चर करने और उससे सुरक्षित और हमेशा संरक्षित रखने के लिए, आप यूं कहें कि एक क्रांतिकारी बदलाव आ गया है ना
0: बिल्कुल सही
1: हम
0: कहा।
1: सबके ही जीवन में।
0: और इसी की याद में तो आज का दिन हम मना रहे हैं। और ये दिन जो इस आविष्कार का सम्मान करता है, फोटोग्राफी को इस तरह से मतलब पेश करता है, और सदियों में ये विकसित हुआ जिसने कला, विज्ञान, पत्रकारिता, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति सभी को प्रभावित किया है। फोटोग्राफी की दुनिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ वो जो अपना जुनून है, अपना शौक है, उसे साझा भी करते हैं, और जो उनका काम है इसके माध्यम से सबकी वाहवाही भी बटोरते हैं इसे दिखाकर, है ना।
1: अब अगर कभी पूछा जाए कि एक तस्वीर क्या है, तो एक तस्वीर किसी स्थान या अनुभव या विचार या किसी समय को जब कैद कर लिया जाता है, उस क्षण को,
0: जी
1: उसे एक हम तस्वीर कहते हैं। भाई
0: बिल्कुल
1: अगर कभी पूछ लिया किसी ने ये सवाल, तो हम कम से कम परिभाषा तो दे सकते हैं, है ना।
0: जी सही कहा दीपा आपने।
1: और फोटोग्राफी के रूपों का सम्मान करते हुए हर साल एक वैकल्पिक थीम के साथ इस दिन को मनाया जाता है। तो इस साल का जो थीम है वो है घर, यानी हमारा हाउस होम जो हम कहते हैं। तो ये थीम उस स्थान या उस एहसास को दर्शाती है जिसे हम अपना घर मानते हैं, जहाँ आप रहते हैं, या आपका कोई, आपका गृह, आपका देश, या वो स्थान जिस जहाँ आपको अपना सा लगे, एक सुकून भरा महसूस हो,
0: जी
1: तो ये थीम है। तो आप घर को लेकर के तस्वीरें अलग अलग खींच सकते हैं और सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह पर आज के दिन उस फोटोग्राफ को शेयर कर सकते
0: और
1: हैं।
0: देखो हमारे सुनने वाले लिख रहे हैं कि ये अद्भुत कला बीते हुए पलों को, भावनाओं को, यादों को हमेशा के लिए सहेज लेती है। अच्छी तस्वीर केवल एक दृश्य नहीं दिखाती, बल्कि अपने भीतर एक पूरी कहानी, एहसास और पूरा समय समेटे हुए रहती है। फोटोग्राफी ने दुनिया को देखने और समझने का नज़रिया भी बदला है। तस्वीरें समय को रोक नहीं सकती, लेकिन बीते हुए समय को हमारी यादों में हमेशा के लिए जीवित रख सकती हैं। और ये बहुत अच्छी बात लिखकर भेजी
1: बिल्कुल। और एक संदेश और आया है बड़ा प्यारा सा। ये संदेश में कहती है हमारी सखी कि सच कभी कभी हमारा ऐसे ही खींचा गया फोटो इतना अच्छा होता है कि उसके सामने बहुत ही बन ठन के खींचे गए फोटो बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। मतलब हम कभी कभी बिल्कुल तैयार होकर के खड़े होते हैं कि हाँ हमारा क्लिक करना चाहिए फोटो,
0: है।
1: लेकिन एक कैजुअल वाले भी जो पिक्चर है फोटो खींची हुई, वो बहुत सुंदर लगती है उसके
0: बिल्कुल।
1: सामने।
0: और एक संदेश में बात लिखी गई है कि तस्वीरें बीते हुए कल और इतिहास को सुरक्षित रखती हैं। तस्वीरों की कोई भाषा नहीं होती, ये बिना बोले सब कुछ कह देती हैं। ये बिना बोले सब कुछ कह देती हैं और अपने नए दिन और पुराने फोटोग्राफरों को अपनी कला दिखाने का मौका देती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश कहता है कि पहले के समय में हमारे देश में लोगों के पास कैमरे नहीं होते थे, कैमरा बहुत महंगा हुआ करता था,
0: हाँ
1: उसकी रील भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाली होती थी, और फोटो खिंचवाने के बाद धुलवाने के लिए स्टूडियो में जाना पड़ता था, जैसे अभी हम बात कर रहे थे,
0: जी
1: और तब जा कर के फोटो मिलते थे। अच्छी आई या बुरी वो तो बाद की बात थी, फिर
0: हाँ
1: कलर फोटो खिंचने लगी और पहले स्टूडियो में जाना पड़ता था फोटो खिंचवाने के लिए। आज के समय में मोबाइल से ही फोटो खींचे जा सकते हैं, किसी के पास भेज दो, कोई टाइम नहीं लगता। अब तो लोगों के पास मोबाइल है, कैमरे बहुत कम लोगों के पास, लोग भी बहुत कम रखने लगे
0: जी
1: हैं, और वो भी उन्हें जिन्हें कैमरे का शौक है, या
0: एक
1: वो जो कि इसको प्रोफेशनली इसको
0: हाँ
1: लेते हैं, वो लोगों के पास कैमरे होते हैं।
0: लेकिन उन कैमरों में भी आजकल ये एक सुविधा आने लगी है कि आप तुरंत उसको डेवलप करा सकते हैं। पहले जो कहते हैं कि इंतज़ार करना पड़ता था ना,
1: हाँ
0: वो
1: जी।
0: जो इंतज़ार की घड़ियां हैं वो लोगों की कम हो गई हैं। कई बार हम शादी में भी देखते हैं ना, फोटोग्राफर जब तस्वीर खींचते हैं तो चार पांच फोटो एक साथ में खींच लेते हैं और फिर आप सेलेक्ट करवा लेते हैं कि किस फोटो

0: को फाइनल करके रखा जाए।
1: बिल्कुल,
0: कई बार होता है कि आंखें बंद हो गई, कहीं आप यहाँ वहां देख रहे होते हैं, तो वो फोटो पहले ऐसा ये सुविधा हमारे पास नहीं थी। अगर आपकी तस्वीर में आंखें आपने बंद कर ली, झपका दी, या आपके कहीं इशारे से कुछ कह रहे हैं, आपका हाथ जहां का तहां है वहीं रह जाएगा।
1: हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। और आज के दिन क्या क्या होता है? तो आज के दिन के पे फोटोग्राफी की कला और शिल्प का सम्मान किया जाता है। चंचल, दुनिया भर के फोटोग्राफर तरह तरह के प्रदर्शनियों में भाग लेकर के अपने काम को चित्रित करते हैं। फिर अलग अलग वर्कशॉप्स होती हैं, कई जगह पर ऐसा होता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं जिसमें फोटोग्राफी के बारे में जानकारी दी जाती है। फिर फोटो वॉक करने वाले और टूर फोटोग्राफी के शौकीन को आसपास के स्थानीय लोगों का पता लगाने और उन्हें कैमरे में कैद करने के लिए भी एक साथ ले जाया जाता है। तो ऐसा भी होता है कि आपको फोटोग्राफ खींचनी है, हाँ, तो आपको कोई ऐसे छोटे से गाँव, कोई ऐसे जगह हो, ट्राइबल एरिया कोई, हाँ, हो, तो वहां पे लेके जाते हैं और उनको बोला जाता है कि ये विशेष समुदाय, इनके इनका फोटोग्राफ खींचा जाए और फिर इन्हें अलग अलग जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है और साझा की जाती है।

0: और उन्हें कैमरे में कैद करने के लिए भी एक साथ ले जाया जाता है। तो ऐसा भी होता है कि आपको फोटोग्राफ खींचनी है तो
1: हाँ
0: आपको कोई ऐसे छोटे से गांव, कोई ऐसे जगह हो, ट्राइबल एरिया कोई हो,
1: हाँ
0: तो वहां पे लेके जाते हैं और उनको बोला जाता है कि ये विशेष समुदाय, इनके इनका फोटोग्राफ खींचा जाए और फिर इन्हें अलग अलग जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है और साझा की जाती है वो सारी तस्वीरें।
1: हमारे एक श्रोता का संदेश है कि पहले तस्वीरें कैमरे में कैद होती थी, पर आजकल इसकी जगह मोबाइल ने ले ली है और डिजिटल रूप में ये होने लगी हैं। तस्वीर बहुत कुछ बयां कर देती हैं। तस्वीरों का होना हमारे अपनों को हमारे नज़दीक रखता है, यादों से जोड़े रखता है। तस्वीर हमारे लिए खास थी और हमेशा खास ही रहेंगी।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि तस्वीरें बीते हुए कल और इतिहास को सुरक्षित रखती हैं। तस्वीरों की कोई भाषा नहीं होती, बिना बोले सब कुछ कह देती हैं। और ये दिन नए और पुराने फोटोग्राफरों को अपनी कला दिखाने का मौका देता है।
1: हमारे एक संदेश में लिखा गया है कि एक समय था जब राजा रजवाड़े या बहुत धनाढ्य परिवार के लोग होते थे, उनके पास कैमरा होता था या फोटो का चलन उस समय ज़्यादा था। फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया, वैसे वैसे सुविधाएं भी सुलभ होती गईं, जैसे सामान्य मानवीय तक फोटोग्राफी का ज़माना था, पर्यटन, धार्मिक स्थल और सभी जगह फोटोग्राफी होने लगी और ये एक व्यवसाय था। जब लोग अपनी तस्वीरों को घर पर पोस्ट के द्वारा भेजा करते थे, ऐसे वक्त ने लोगों के साथ कैमरों को भी रखा और आज मोबाइल के माध्यम से जो चीज़ कभी दुर्लभ थी वो सहज हो गई है। तो चलिए अभी गीत सुन लें।
0: चलिए।

0: फोटोग्राफी की हम बात कर रहे थे ना, इस पर अपना एक किस्सा हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि कॉलेज के दिनों की उन्होंने बात लिखी है। कॉलेज में उन्हें एक कार्ड बनवाना था, उन्हें फ़ोटो की ज़रूरत थी। तो शहर के पास, आगे लिखते हैं कि शहर के पास ही हमारी दुकान थी, उसके पास में एक फ़ोटो स्टूडियो था। उसमें दोनों पिता पुत्र काम किया करते थे, लेकिन उस दिन लड़के के पिता दुकान पर नहीं आए थे। और उसी दिन क्योंकि मुझे फ़ोटो की ज़रूरत थी और उनके लड़के के साथ मेरी आपस में बनती नहीं थी, लेकिन वो लड़का बोला कि मैं तुम्हारी तस्वीर अच्छी बना दूंगा। लेकिन मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि शायद भूतकाल में उनके साथ ऐसी कुछ घटना हो चुकी थी उसके साथ में। लेकिन उस लड़के ने विश्वास दिलाया कि वो फ़ोटो अच्छी लेगा, तो डरते डरते उसकी बात पर विश्वास करके वो तैयार हो गए फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और जब वो तस्वीर ले रहा था लड़का, तो मैं बहुत डरा हुआ था, घबराहट भी चेहरे पर थी, और मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन कोई अनहोनी नहीं हुई, उसने तस्वीर मेरी बहुत अच्छी बनाकर दे दी। वो तस्वीर मेरे पास आज भी है, जब भी मैं उस तस्वीर को देखता हूँ तो उसमें मेरा चेहरा बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ दिखाई देता है।
1: देखिए कितने मज़ेदार उनकी यादें हैं ना
0: जी
1: तस्वीरों को लेके। और 1962 की एक याद हमारे श्रोता भाई यहाँ पे साझा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया की शादी का फोटो एल्बम बनाने पहली बार फोटोग्राफर को बुलाया गया था साल 1962 में।
0: जी
1: उन दिनों ब्लैक एंड व्हाइट का ज़माना था, हर जगह हर एक फोटो खींचने के बाद फ्लैश का लैंप बदलना पड़ता था। और उन दिनों मेरा बचपना था, तो 11 साल की उम्र थी उनकी। मंडप के बीच भाई भाभी के फोटो खींचते वक्त मैं भी हर फोटो में बीच में खड़ा हो जाता था।
0: और पहले ऐसा अक्सर होता था कि छोटे बच्चों को बड़ा शौक होता था कि वो हर तस्वीर में नजर आए,
1: हाँ
0: और
1: बिल्कुल
0: कहीं ना कहीं से वो झांकता हुआ चेहरा उनका
1: नजर आ ही जाता था।
0: पुराने एल्बम जब भी हम खोलते हैं ना, तो एक ना एक बच्चा ऐसा नजर आएगा जो हर फोटो में कहीं ऊपर से, कहीं नीचे से, अगल बगल से, या और जब तक फोटो उन्हें हटाया जाए वो फोटो क्लिक हो चुकी होती थी, वो एंड टाइम पर इस तरह से तस्वीर में घुस जाते
1: और
0: थे।
1: ये देखो एक और मज़ेदार संदेश आया है। हमारी सखी कह रही है कि फोटो में तो ऐसी ताकत है कि सिर्फ फोटो देखकर ही 18 साल पहले मेरी शादी हुई थी। वो कैसे? उधर से फोटो कागज़ में लपेट कर आई और इधर से हमने कागज़ में लपेट के दे दी फोटो और
0: जी
1: बस हो गई शादी। क्या बात है भाई, ये ज़माना कितना सुलभ और सुंदर और एकदम सादा सा था, है ना।
0: बातें आगे बढ़ाएंगे, पहले गीत सुन लेते
1: चलिए
0: हैं।

0: ही आना, और मैं भी तुम्हें बुला रही हूँ दीपा सखी, बस आना क्योंकि बहुत सारे संदेश हैं, इन्हें भी पढ़कर सुनाना। तो पहले एक संदेश मैं ही पढ़कर सुना देती हूँ।
1: चलिए सुनाइए।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं। विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और हमने बहुत सारी बातें फोटोग्राफी के बारे में की। और आज एक और दिवस हम मना रहे हैं, 19 अगस्त के दिन मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस, और ये उन लोगों की याद में मनाया जाता है दीपा, जिन्होंने विश्व स्तर पर मानवतावादी संकट जो भी आए हैं उनमें या तो अपनी जान गंवा दी या फिर मानवीय उद्देश्यों के कारण और अपने दूसरों की सहायता के कारण उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया।
1: जी, और इसके पीछे अगर इतिहास जाने तो वो ये था कि 19 अगस्त 2003 को संयुक्त राष्ट्र कार्यालय पर हमला हुआ जिसमें करीब 22 मानवीय सहायता कर्मी मारे गए, और जिनमें संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो वियरा डिमेलो भी शामिल थे।
0: जी।
1: तो साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस इसके रूप में नामित करने का प्रस्ताव

0: प्रस्ताव पारित किया गया था और फिर ये प्रस्ताव स्वीडन ने रखा था।
1: और जिस दुर्घटना की या जिस हादसे की आप बात कर रही हैं, ऐसा माना जाता है कि अब तक जितनी भी त्रासदी हुई उनमें ये बहुत खतरनाक थी और करीब 4,000 से भी अधिक राहतकर्मी ने इसमें जान गंवाई थी, उनको निशाना बनाया गया था। और कि जो जानलेवा हमले हुए थे इसमें न जाने कितने घायल हुए, कितनों ने अपनी जान दे दी और कुछ गिरफ्तार भी हुए, कुछ का अपहरण भी हुआ। इस तरह की घटनाएं ना हो, मानवता लोगों में बनी रहे, इसीलिए ऐसे दिन मनाए जाते हैं ताकि जो भी अशांति संघर्ष है उससे अलग किया जा सके खुद को और एक शांति की स्थापना की जा सके।
0: बिल्कुल सही कहा। और ये देखिए ना, ये विश्व भर में फैली अशांति और संघर्ष में लाखों लोग अपने सरजमी से भी अलग हो जाते हैं और किसी अन्य जगह पर उन्हें स्थापित किया जाता है, तो ऐसे लोगों की संख्या आज ये अनुमान किया जाता है कि 6.5 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों को

0: दूसरों के प्रति दया भाव रखना, प्रेम रखना, अहंकार त्याग कर सरल ढंग से पेश आना, ये सब मानवता के ही स्तंभ हैं।
1: बिल्कुल। और एक और संदेश है, मनुष्य को जीवन में सत्य प्रेम, करुणा, दया, सहयोग, सद्भावना, आपस में मेल मिलाप की राह पर चलना चाहिए, नहीं तो कैसे मानवता महकेगी। और वसुधैव कुटुंब

0: से परे जाकर मनुष्यता के वास्तविक स्वरूप को परिभाषित करता है।
1: बड़े अच्छे अच्छे संदेश हमें मानवता के ऊपर मिल रहे हैं। एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता द्वारा जो बात कही गई है वो मैं पढ़कर सुनाती हूँ आप सभी को। मानवता और इंसानियत, जिसका अर्थ होता है किसी दूसरे के प्रति दया, प्रेम और भलाई करना, सभी के प्रति प्यार की भावना रखना, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों का हित सोचना। और वाकई में ये चीज़ें अभी देखने को नहीं मिलती हैं। आगे लिखते हैं कि ये व्यक्तिगत व्यवहार से जुड़ा हुआ है, यानी एक व्यक्ति का दूसरे के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव, यही मानवता है।
0: बिल्कुल सही। और आज के समाज में देखो मानवता को लेकर बहुत उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। कभी कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कहीं दुर्घटना हो गई, किसी संकट के समय लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं। रक्तदान करना, गरीब बच्चों की शिक्षा में सहायता करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, पशु पक्षियों के प्रति दया रखना और पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी मानवता के रूप हैं।
1: बिल्कुल। आज जब विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को दीपा बहुत आसान बना दिया है, लेकिन जो कहते हैं ना कि मानवता, इसे तकनीक से हम जोड़ के देख ही नहीं सकते ना। कोई व्यक्ति कितना भी उसके पास धन है, लेकिन वो उसके धन का वो सिर्फ अपने लिए ही सहेज कर रखता है, किसी की सहायता नहीं करता, तो कहते हैं कि उसके धनी होने का भी कोई महत्व नहीं है। अगर आप किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, भले आपने बहुत सारा धन खर्च नहीं किया, आपने कोई छोटी सी ऐसी काम कर दी, छोटी सी ऐसी कोई बात कह दी जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। अगर मान लीजिए किसी दुखी को, दुखी दिल है उसको सहारा दे दिया, सांत्वना के दो शब्द कह दिए, तो ये भी मानवता का परिचय देता है। हमारे समाज में मानवता के बहुत सारे उदाहरण हैं दीपा, जिसमें प्राकृतिक आपदा के समय या किसी दुर्घटना के समय जब लोग आगे आकर एक दूसरे की मदद करते हैं, रक्तदान करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तो ये चीजें हैं ना, यही असली मानवता होती है।
0: हमारे एक सखी ने चार शब्द लिखा है मानवता के लिए, जियो और जीने दो।
1: क्या बात है, तो चलिए अब गाना सुन लेते हैं।

0: और भाई एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होनी ही चाहिए। जब कोई उत्सव होते हैं ना, तो ये भावना हमारे देश में सब जगह देखने को मिलती है। सब मिलजुल कर उस त्योहार को मनाते हैं, और महिलाओं में सावन के महीने का एक खास आकर्षण होता है। सब मिलकर सखियां साथ झूला झूलने जाती हैं,
1: बिल्कुल।
0: और तीज के दिन खास तौर पर लहरिया पहना जाता है। अभी हाल ही में तीज का त्योहार गया है, जिसे राजस्थान में बहुत धूमधाम से मनाया गया।
1: बिल्कुल।
0: तो जो राजस्थान की हमारी सखियां ना, जो इस वक्त सखी सहेली कार्यक्रम सुन रही हैं, उससे जुड़ी हुई हैं, तो वो हमारी बात से जरूर सरोकार रखती होंगी कि उन्होंने भी लहरिया पहना होगा। नहीं पहन पाई किसी कारणवश, तो मन में मलाल जरूर रह गया होगी, लहरिया नहीं पहन पाई।
1: तो कोई बात नहीं, इस दफा लहरिया साड़ी ले आए, क्योंकि सावन अभी बाकी है। तो और उसे पहन के खूब सुंदर सजे धजें और ढेर सारे तस्वीरें खींचें, और फिर अब तो कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म से आप साझा कर सकती हैं।
0: और जब आपने सजने धजने की बात कही ना, तो साड़ियों के बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं। हर परिधान के साथ में एक अलग तरह का श्रृंगार किया जाता है। जो ज्वेलरी हम पहनते हैं ना, जो जेवरात हम पहनते हैं, तो हर परिधान के साथ अलग तरह के जेवर पहनते हैं। अगर आपने बनारसी साड़ी पहनी है, तो जेवर अलग तरह के
1: अलग
0: होंगे।
1: होगा
0: आपने सूती कोई साड़ी पहनी है, तो वो
1: जी।
0: अलग तरह के होंगे। जॉर्जेट की पहनी है, लहरिया पहना है। अब लहरिए में भी आपने भारी भरकम पहना है या हल्का फुल्का पहना है, तो आपके जो श्रृंगार की चीजें होती हैं, वो उस तरह से हो जाती हैं। बहरहाल हम बताते हैं कि लहरिया राजस्थान की एक पारंपरिक और बहुत खूबसूरत साड़ियों में से एक होती है, और इसकी खास पहचान होती है इसके जो लहरदार और तिरछे पैटर्न बने हुए होते
1: पैटर्न
0: हैं ना।
1: जो बने होते हैं जी।
0: और खास तौर पर राजस्थान की जो रंग बिरंगी संस्कृति उत्सव है, वहां की जो संस्कृति है, उससे जुड़ी हुए ये परिधान होते हैं।
1: अब देखो ना चंचल, ये लहरिया, ये शब्द ही लहर से आया है। इसमें कपड़े को विशेष तरीके से मोड़ कर या बांध कर रंगाई की जाती है, जिससे कपड़े पर लगातार लहरों जैसी धारियां बन जाती हैं। और ये खास तौर पे टाई और डाई, यानी वो तकनीक, बंदेज या रंगाई, इसकी तकनीक का ही एक रूप है। और इस साड़ी के लहरदार धारियां इसकी खासियत के साथ इसकी सबसे प्रमुख पहचान भी है। लहरिया साड़ी ज्यादातर आप देखो तो एकदम चटक कलरों में होगी, है ना, पीली, गुलाबी, लाल, हरा, नीला, नारंगी, सारे जो चटक कलर होते हैं हमारे, वो उनमें इन साड़ियों को आप देख सकते हो। हालांकि आजकल अब थोड़े से इंग्लिश कलर, इंग्लिश टोन्स भी लेने लगे हैं, लेकिन फिर भी
0: जो
1: जो
0: पारंपरिक चीजें हैं,
1: पारंपरिक कलर जो इस साड़ी के साथ जाता है ना, गुलाबी पहन लीजिए आप, हरा पहन लीजिए, आहा,
0: जैसे
1: और
0: आपने पहना,
1: लाल कलर
0: जो
1: की सुर्ख साड़ी हो तो क्या बात है।
0: आपने पीले कलर का अगर बेस है, तो उस पर कुछ नारंगी या हरे रंग की
1: हाँ
0: धारियां होंगी। अगर
1: बिल्कुल।
0: गुलाबी बेस है साड़ी का, तो कुछ ज्यादा गहरे रानी रंग की या हरी सी कुछ धारियां। तो जो बीच में धारियों का रंग अलग होता है ना, वो इसे और खूबसूरत बना
1: बिल्कुल
0: देता है।
1: खूबसूरत बना देता है। और शादी ब्याह में तो आप देखिए थीम रखने लग जाते हैं आजकल तो, कि एक किसी फंक्शन पे हम ये वाली साड़ी या इसका लहंगा बना करके पहनेंगे। और फिर देखिए जब चटक कलर में पारंपरिक नृत्य होता है, तो उसका तो जो नज़ारा ही कुछ एक अलग आनंद देता है।
0: हमारे बहुत सारे श्रोताओं के संदेश हमें मिल रहे हैं। एक संदेश में कहा गया है कि लहरदार यानी लहरिया साड़ी मूल रूप से राजस्थान, विशेषकर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, यहाँ की पारंपरिक पहचान है। अपने खूबसूरत लहरनुमा डिज़ाइन के कारण राजस्थान के अलावा अन्य जो राज्य हैं, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मुंबई, सभी जगह सावन, तीज और मेलों के अवसर पर ये बहुत पसंद की जाती है। राजस्थान की इस कला का ये मुख्य केंद्र है। यहाँ के स्थानीय त्योहारों में और रोजमर्रा के पहनावे में लहरिया का विशेष स्थान है। उत्तर भारत में सावन मास, हरियाली तीज, रक्षाबंधन के मौकों पर इन लहरिया साड़ियों का बहुत भारी क्रेज देखने को मिलता है। और गुजरात, महाराष्ट्र के पारंपरिक बाजारों में शादी ब्याह के उत्सव पर भी इनकी बहुत मांग रहती है। सावन और मानसून के मौसम में हरी, पीली, लाल और मल्टी कलर की लहरिया साड़ी पहनी जाती है, जो
1: अभी तो
0: जॉर्जेट,
1: बहुत
0: कॉटन,
1: फैशन में है ये मल्टी कलर वाली
0: जी, और
1: जी।
0: अलग अलग फैब्रिक में लोग इन्हें पसंद करते हैं।
1: और हम अगला संदेश सुनाएं चंचल, तब तक हम अपनी सखियों से भी पूछते हैं कि लहरिया साड़ी आपने इन दिनों में पहनी या नहीं पहनी, हमें जरूर बताइएगा। और सुनिए ये संदेश, ये भी यही बता रहा है संदेश कि टाई एंड डाई ये वाले कला से इसको बनाया जाता है, जिसमें पानी की लहरों की तरह तिरछे और सुंदर धारियों वाले पैटर्न बनते हैं। और राजस्थान का ये पारंपरिक पहनावा है। साथ में कह रहे हैं कि इसमें कपड़े को तिरछा मोड़ कर धागे से बांधा जाता है, फिर चमकीले रंगों से रंगा जाता है। पचरंगा लहरिया जो है उसमें 5 रंगों वाली विशेष डिजाइन होती है, यहाँ की सबसे पुरानी और लोकप्रिय शान है।

0: ये वाली स्टाइल। और प्रमुख प्रकार और रंग है लाल, पीला, हरा, गुलाबी, बहुरंगी शेड सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। अगर कपड़े की बात करें तो ये संदेश कहता है कि जॉर्जेट, क्रेप, शिफॉन, सिल्क जैसे इन जैसे हल्के और जो
1: हाँ
0: लहरदार, जो एकदम बिल्कुल आराम से जो जिसे पहना जा सके ऐसे वाले फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं। गोटा पत्ती का वर्क होता है फिर तो त्योहारों और शादियों के लिए इस तरह महीन गोटा पत्ती या जरदोसी का काम इस पर किया जाता है। राजस्थानी सावन और उत्सवों के माहौल में सजी खूबसूरत लहरिया साड़ियाँ, ये ताज़ा डिज़ाइन आजकल खूब वहाँ के मार्केट में आप देख सकते हैं।
1: सिर्फ साड़ियाँ ही नहीं, जो पुरुष हैं वो दुपट्टे डालते हैं लहरिया के, जो दुपट्टे बनने लगे हैं वो कुर्ता पायजामा पहनकर उस पर लहरिया पहनना, सिर्फ हम कहते हैं ना कि महिलाएं शौकीन होती हैं, तो लहरिया के जो दुपट्टे हैं जहाँ महिलाएं उनको शौक से पहनती हैं, तो पुरुष भी इसे बहुत चाव से अपने कुशल कुर्ते पजामे पर सजाते हैं।
0: और सिर्फ दुपट्टा ही नहीं, पुरुष तो उसके कुर्ते बनते हैं, शॉर्ट कुर्ता जीन्स के ऊपर आप पहनिए, देखिए क्या खूबसूरत लगता है।
1: इसके अलावा
0: यहाँ
1: पगड़ियां भी पहनी जाती हैं, पगड़ियों में भी लहरिया होता है, जो पगड़ी जिस कपड़े की आप बांध कर पहनते हैं उसमें भी लहरिया का इस्तेमाल किया जाता है। एक अन्य संदेश में कहा गया है कि लहरिया, इसके ब्राइट कलर कॉम्बिनेशन और लाइट वेट होना, ये हर उम्र की महिलाओं पर बहुत फबता है। हाथ से बनी असली लहरिया साड़ी रंग की शुरुआत, इसमें रंग जो है वो धुलाई में थोड़ा सा निकल सकता है क्योंकि ये टाई डाई से बनाई जाती है।
0: और लहरिया को एक प्रकार, एक संदेश में हमारी सहेली ने लिख भेजा है, एक दली यानी इसमें केवल एक ही रंग की लहरदार धारियां होंगी और इसमें 5 अलग अलग रंगों का इस्तेमाल होगा जो बेहद शुभ माना जाता है, जैसे कि लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी। और एक होता है, एक और प्रकार है मोठड़ा। तो जब लहरिया की धारियां एक दूसरे को काटती हुई चेक्स वाला पैटर्न बनाती हैं, मतलब एक तरफ से और दूसरे तरफ से जब आती है तो उसे मोठड़ा कहते हैं।
1: तो चलो भाई गाना सुन लेते हैं, सुंदर साड़ियों की बात हो रही है, सुंदर गीत।

0: और देखो, जब हम तुम दोनों मिल जाते हैं ना, तो बहुत सारे संदेश लेकर आते हैं। और अब कुछ आगे संदेश की तरफ बढ़ते हैं, और हमने बात की थी ना कि कुछ छटपट बनने वाली जो चीज़ें होती हैं ना, उनकी बात की जाए। क्योंकि कई बार हमारे पास समय की कमी होती है, या अचानक से मेहमान आ जाते हैं, हमें कहीं जाना होता है, और हम ऐसे ही किसी चीज़ की तलाश में रहते हैं कि झटपट ऐसी कोई चीज़ बना दी जाए जो स्वादिष्ट भी हो और जिसे आहार बना रहे पेट में। तो
1: बिल्कुल सही।
0: सूजी के अप्पे ऐसे होते हैं जिन्हें झटपट बनाया जा सकता है। इसके लिए सामग्री क्या चाहिए, हमारे श्रोता ने हमें लिखकर भेजी है। 1 कप सूजी में आधा कप दही और आधा कप पानी डालकर एक गाढ़ा घोल बना लीजिए। इसमें आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, घिसा हुआ गाजर मिलाएं, 2 हरी मिर्च और हरा धनिया भी काट कर डाल दें। अब ये जो सब्जियों की सामग्री बनाई गई है, इसमें आप जो चीज़ें नहीं खाते हैं उन्हें आप ना डालें, और कुछ स्वाद के लिए और चीज़ें डालना चाहते हैं तो उन्हें आप जोड़ भी सकते हैं। आगे इसे बनाने के लिए रेसिपी है कुछ इस तरह से है कि एक छोटे पैन में 1 चम्मच गर्म तेल करके डालें, राई, जीरा, नीम की छोटी पत्तियों का तड़का लगाकर इसमें एक गाढ़ा घोल तैयार कर दें। इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। अब आधा चम्मच इसमें कुछ भी आप या तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इस तरह का कुछ भी डाल सकते हैं, और तुरंत अप्पे के सांचे में डालकर गर्मा गर्म फूले फूले अप्पे तैयार कर लीजिए। नारियल की चटनी या फिर हरे धनिया की चटनी के साथ में इसे परोस कर खाया जा सकता है।
1: बिल्कुल। और एक और ये रेसिपी भेजी हमारी सखी ने, भुट्टे की टिकिया बनाना बताया है कि कटोरी, 1 कटोरी उबले हुए भुट्टे आप ले लें, मिक्सी में पीस लें। 1 कटोरी उबला हुआ आधा आलू ले सकते हैं, आधा कटोरी पनीर, और इन सबको मिक्स कर लें। हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक वगैरह डाल लें, और थोड़ा सा चाहे तो शिमला मिर्ची डाल लें। सब कुछ मिक्स करके अपने हिसाब से मसाले डाल लें, टिकिया बनाकर इसे सेक लें।
0: और अभी गाना सुन लेते हैं।
1: चलिए।

0: अच्छा, अगर झटपट से आपको बनाना है, कोई अचानक आ जाए, तो आप ऐसा करिए कि थोड़े से पोहे को पानी के में अंदर से धो के उसको निचो लीजिए, और फिर जो उबले हुए अगर आलू पड़े हैं फ्रिज में, तो उसको भी आप इसके साथ में मिक्स कर लीजिए, और फिर देखिएगा जब आप पोहा निचोड़ेंगे ना, तो अच्छे से वो फूल जाते हैं थोड़ी सी देर के बाद। इसमें उबले हुए आप आलू डालिए, भुनी हुई अगर मूँगफली घर में है तो उसको दरदरा पीस के वो भी डाल लीजिए, एक ब्रेड का टुकड़ा पानी में भिगो कर उसे भी निचोड़ कर मसल कर अच्छे से डाल दीजिए। अब बारीक कटे हुए प्याज डालकर आप अगर खाते हैं तो बारीक धनिया पत्ती प्याज अगर खाते हैं तो वो डाल लीजिए, हरी मिर्ची डाल लीजिए, और इसका एक थोड़ा सा डो जैसा, मतलब आटे जैसा तैयार
1: हाँ,
0: कर
1: मतलब
0: लीजिए।
1: ये एक साथ में इकट्ठा हो जाए।
0: हाँ, टिकिया का, टिकिया जैसा बनना है, और बस आप टिकिया का उसका शेप लेकर के झटपट इसे आप चाहें तो फ्राई कर लीजिए या शैलो फ्राई कीजिए, और देखिए बन गई आपकी बढ़िया सी टिकिया।
1: और बस हमारी सखियां ये टिकिया बनाकर खाएंगी, क्योंकि समय हो चला है पूरा। हम लेते हैं इजाजत, दीजिए चंचल वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी को इजाजत, नमस्कार।
1: नमस्कार सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं डायरेक्टर, एक्टर और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना से विधि जैन की बातचीत।
1: हमारे सामने है एक बहुत बेहतरीन कलाकार जिनके हाथ में सब कुछ है, सारी रेखाएं हैं कला की।

0: और उन्हीं रेखाओं में से रेखाएं चुनने की बारी आई तो हम भी थोड़ा परेशान हो गए किस विषय पे बात की जाए। तो हम आपसे ही पूछ लेते हैं पंकज जी कि आप क्या ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप एक एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, वॉइस ओवर डायरेक्टर भी हैं, और आपकी आवाज में भी बड़ा दम है जो अभी लोग सुनने वाले हैं। इसलिए विविध भारती में आपका स्वागत करते हैं बहुत हृदय से, बहुत प्यार से। और पहला प्रश्न हम आपसे पूछ चुके हैं, स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विविध भारती के सारे दर्शकों को और विविध भारती से जुड़े हुए सारे लोगों को मैं मेरा आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया, याद किया और कहा कि हम कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे।
0: जी
1: और जैसे आपने कहा कि मैं एक्टर भी हूं, सिंगर भी हूं, डायरेक्टर भी हूं, प्रोड्यूसर भी हूं, वॉइस ओवर डायरेक्टर, हाँ,
0: जी
1: एज ए डबिंग डायरेक्टर मैंने तकरीबन
0: जी
1: 18-20 फिल्में की हैं
0: जी
1: और अलग अलग विषय पे झुकी हैं। तो आपने मुझे पूछा कि आपको कौन सा वाला सब्जेक्ट इसमें से पसंद है, तो मुझे सारे ही पसंद हैं। जब जब जो मेरे पास सामने जो प्रोजेक्ट होता है
0: जी
1: मैं उसको बहुत आनंद से, बहुत अंतरात्मा से करता हूँ,
0: जी
1: बहुत सिंसेरिटी से करता हूँ, ताकि इसमें मेरी जितनी भी कैपेबिलिटी जो भी है,
0: जी
1: वट एवर आई एम कैपेबल ऑफ, मैं उसको अच्छी तरह से कोशिश करके बहुत अच्छी तरह उसको प्रस्तुत करूं।
0: तो चलिए हम इसको और सरल बना देते हैं पंकज जी। छोटे वाले पंकज ने जो बहुत छोटा सा था उम्र में, वहां पे उस पंकज ने सबसे पहले क्या किया था?
1: ये बात जाती है, बहुत पीछे जाती है। व्हेन आई वाज इन कश्मीर,
0: जी
1: असल में मैं कश्मीरी पंडित हूँ,
0: जी
1: पंकज रैना। रैना से नाम तो समझ ही आया होगा आपको कि हम कश्मीरी पंडित हैं।
0: जी
1: कश्मीर में रहते थे, जवाहर नगर हमारा अपना घर था, और हमारा जो घर था वो एक कल्चरल हब जैसा था।
0: अच्छा
1: ये पूरा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है,
0: जी
1: पंडित महेंद्र नाथ रैना, जो आत्मा से अंदर से बहुत अच्छे लेखक और शायर थे। वैसे
0: जी
1: वो J&K असेंबली में काम करते थे, कार्यरत थे, लेकिन उनके अंदर की जो आत्मा थी वो एक कवि की थी और लेखक की थी।
0: जी
1: तो उनकी वजह से जो मेरे जो बाकी भाई बहन थे वो भी कला क्षेत्र से जुड़ गए थे।
0: अच्छा
1: पिताजी वैसे बहुत सारे पेपर्स के भी एडिटर रहे हैं जो हमारे J&K में हुआ करते थे। लेकिन हमारे घर में जैसे मेरे एक भाई, बड़े भाई थे भुवनेश, वो पेंटर स्कल्प्टर थे, पेंटिंग में स्कल्प्चर का काम था उनका,
0: क्या बात है
1: उनको स्कल्प्चर और पेंटिंग का शौक था। तो हमारा ये नीचे एक कमरा था जो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर वाला डेडिकेटेड था, उसमें पत्थर पे भी स्कल्प्टर बनते थे, लकड़ी पे भी बनते थे, ऑयल पेंट भी होता था, ये सब चीज़। हम बहुत छोटे छोटे थे,
0: अच्छा
1: तो हमारे बड़े भाई थे, उनसे बड़े भाई थे जो फिजिक्स के डीन प्रोफेसर हुए हैं, वो मेरे पहले गुरु थे, जो प्रोफेसर तेज रायना, जिन्होंने कभी किसी से संगीत सीखा नहीं, जिन्होंने उस तरह का कुछ किया नहीं, लेकिन मैं जब 10 साल की उम्र में था तो उन्होंने मुझे पहली एक गज़ल सिखाई थी इसकी, फैज़ अहमद फैज़ की। तो मैंने वो बच्चों के कंपटीशन में गा के मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। वहाँ से
0: आपको
1: मेरी यात्रा शुरू हुई। तो दूरदर्शन नया नया आया था
0: जी
1: 1972 में कश्मीर में, तो फिर वहाँ से मैं बच्चों के प्रोग्राम में मुझे बुलाया जाने
0: मैं
1: लगा।
0: आपको यहाँ रोक रही हूँ। आपको फैज़ अहमद फैज़ की एक गज़ल गाने पर फर्स्ट प्राइज़ मिला था, तो हमारा अधिकार बनता है कि वो गज़ल हम भी सुने जिस पे आपको प्रथम पुरस्कार मिला था, और वो हमारा हमारे श्रोताओं का अधिकार तो बनता है, तो अगर आप कुछ गुनगुना दें उसके कुछ हिस्से
1: वो तो
0: तो
1: मेरी, लेकिन बच्चों जैसी आवाज कैसे आएगी?
0: अब इस उम्र की उसी आवाज में सुना दीजिए, हम सुनना चाहते हैं।

0: क्या बात है।
1: दोनों जहान तेरे।
0: आ खूबसूरत आवाज है, इतना तो विश्वास है कि हमारे श्रोता तालियां जरूर बजा रहे होंगे सुनते सुनते। अब हम आगे बढ़ेंगे कि वो जो बच्चा है वो रेडियो पे जा रहा है ना गाने के लिए, या
1: टेलीविजन पे और रेडियो पे। फिर टेलीविजन में बच्चों का प्रोग्राम होता था
0: जी
1: 1972 में, तो मैं वहाँ जाने लगा। तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं छोटा सा था, तो मैं गाता भी था। उससे पहले भी मैंने एक, जो हमारे प्रोफेसर साहब थे, तो उनका एक एनुअल फंक्शन में मैंने ऑन द स्पॉट कहा था कि मैं भी गाऊंगा। उनका वो 15 अगस्त का प्रोग्राम था,
0: जी
1: तो मैंने वो बच्चों की आवाज़ में ही 8 साल की उम्र में ऐ मेरे वतन के लोगों गाया था। और मैंने
0: आहा
1: कहा था मैं भी गाऊँ, जिद की मैंने,
0: जी जी
1: और चारों तरफ लोग खड़े थे। बहुत पुरानी बात है, इट इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 70 की
0: हाँ
1: बात कर रहा हूँ मैं। और लोग उस वक्त

0: तरह का स्टेडियम भरा भी नहीं था, तो उस तरह के लोग आसपास खड़े थे, सब सबकी आंखों में आंसू थे। मैं मेरी आवाज़ एकदम लता जी जैसी थी, बच्चों की आवाज़ थी, ऐ मेरे वतन के लोगों गा रहा था। तो यहाँ से एक तरह से जैसे बोलते हैं ना, वो समझ आने लगा कि हाँ इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलने लगा।
1: जी
0: फिर वो होते होते फिर वो बच्चों का प्रोग्राम आ गया दूरदर्शन का, फिर रेडियो में सुनने लगे। आकाशवाणी और विविध भारती का मेरे
1: जी
0: जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बचपन से, जो कि तब तो टेलीविजन था नहीं, नया नया आया था, घर में एक रेडियो होता था, चाहे मर्फी का या फिलिप्स का, लेकिन वो तार से जुड़ा होता था, इलेक्ट्रिसिटी, वो चलता था, और गीत और तरह तरह के प्रोग्राम आते रहते थे, हम सब सुनते थे।
1: जी
0: भाषा उच्चारण सीखने में तो काफ़ी योगदान रहा है विविध भारती का और आकाशवाणी का, तो हम इनके हमेशा से शुक्रगुजार रहे हैं, हम अब भी रहते हैं। आज भी बहुत सौभाग्य है कि आकाशवाणी में आके हम कुछ चर्चा कर पा रहे हैं आकाशवाणी और विविध भारती के बारे में।
1: जी
0: तो इनका बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में, जबकि कहते हैं कि देखिए हर प्रांत, हर राज्य का एक अलग भाषा होती है, हर राज्य की एक अलग डायलेक्ट होता है, हम जाते हैं तो वो दिखता है जब कोई बात करता है। लेकिन इन सब चीज़ों पे हमने जब वर्क किया, तो हमें, क्योंकि अगर आप कश्मीरी, नॉर्मल एक कश्मीरी से बात करेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कश्मीर
1: कश्मीर का
0: का
1: है।
0: रहने
1: जी
0: वाला है,
1: जी
0: या ये चेन्नई का रहने वाला है, या
1: जी
0: ये कलकत्ता का रहने वाला है।
1: जी
0: हमने लेकिन भाषा और उच्चारण पे बहुत काम किया कि ताकि हमें एक नॉर्मल, एक जनरलाइज्ड एक हमारी भाषा हो, ताकि हम एक, जिसको देवनागरी हिंदी में जब बात करें तो लगे कि हिंदी बोल रहे हैं, कश्मीरी हिंदी नहीं बोल रहे हैं,
1: जी
0: बंगाली हिंदी नहीं बोल रहे हैं।
1: जी
0: तो इसमें हमारा आकाशवाणी और विविध भारती का बहुत बड़ा हमारे जीवन में योगदान रहा है, मैं हमेशा आभार व्यक्त करता हूँ।
1: विविध भारती के और आकाशवाणी के पुराने उद्घोषक जो रहे हैं, उनकी बात बहुत निराली है और उनसे सीखकर हम भी
0: हमारे
1: बने हैं।
0: शिक्षक
1: और
0: रहे हैं,
1: जी
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल, तो उन सबको हम सविनय प्रणाम करते हैं और
0: बिल्कुल करते
1: धन्यवाद
0: हैं,
1: देते हैं कि ये बात सुनने को मिल रही है और हमें भी बहुत अच्छा लग
0: बिल्कुल
1: रहा है।
0: मैं हमेशा इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं आज भी आकाशवाणी और विविध भारती का एक, मतलब ये श्रोता हूँ, मैं
1: जी
0: सुनता हूँ जब भी ड्राइव करते करते कहीं जाते हैं लंबे सफर में, तो आई विल ऑलवेज प्रेफर कि मैं 102.8
1: एट जी जी
0: सुनूँ,
1: जी
0: या एक और है 107.,, जो जैसे आकाश
1: आप
0: गोल्ड
1: जहां
0: है।
1: जहां शहर
0: हाँ
1: बदलेंगे हमारे नंबर्स
0: जी
1: बदल
0: जी
1: जाते हैं,
0: नंबर्स
1: इसलिए
0: बदल
1: आपको
0: जाते
1: अलग
0: हैं,
1: अलग शहर में अलग अलग दिखाई
0: लेकिन
1: देता
0: मुझे
1: है।
0: इनके ही प्रोग्राम सुनना अच्छा लगता है, बिकॉज
1: जी
0: एक तो मर्यादा में बोलते हैं, भाषा रेस्पेक्टेबल भाषा में बात करते हैं,
1: जी
0: और कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत ही सुंदर एकदम, मतलब प्रसारण होता है।
1: जी
0: मैं माफ़ी चाहता हूँ उस बात के लिए, लेकिन मैं FM सुनता नहीं आजकल के, क्योंकि वहाँ ना उच्चारण है, ना भाषा है, ना कोई उसका अंदाज है, लेकिन आकाशवाणी ने और विविध भारती ने हमेशा से वो कंटिन्यू रखा है कि किस तरह से एक भाषा को एक रेस्पेक्टेबल वे में प्रस्तुत किया जाए।
1: जी हम हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता और हमारे इतिहास को संभालने का विविध भारती प्रयास कर रहा है, और आप सब लोगों जैसे लोगों का साथ रहता है तो
0: हम
1: अच्छा
0: हमेशा
1: चलता
0: साथ
1: जाता है।
0: हैं, हम
1: जी
0: हमेशा साथ,
1: तो अब हम वापस आपके
0: मेरे
1: जीवन
0: बचपन
1: पे
0: में
1: आ
0: चलते
1: जाते
0: थे। फिर
1: हैं।
0: मेरे एक ब्रदर है चंद्रशेखर,
1: जी
0: वो हमारे थिएटर भी हमारे यहाँ होता था, हमारे कश्मीर में एक हॉल होता था, जहाँ एक ही हॉल था, टैगोर हॉल,
1: जी
0: अब भी है वो, जहाँ
1: जी
0: पे प्लेज होते थे, म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते थे। तो हमारे घर में चूंकि इस तरह का वातावरण था ही, तो हम बच्चों छोटे थे, हम भी फॉलो अप करते थे, तो इस तरह से ये क्रिएट हुआ।
1: जी
0: घर से हमारे उस वक्त चीज़ें ले जाते थे जो सेट डेकोरेशन करने
1: सेट
0: के
1: लगाने
0: लिए,
1: के लिए।
0: लगाने
1: जी
0: के लिए, और आकाशवाणी का भी, विविध भारती का भी योगदान था, ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर का भी बहुत योगदान था। वो वक्त वक्त पे बड़े बड़े पंडित और उस्ताद लोगों को वहाँ, उनके प्रोग्राम्स होते थे, जैसे शिव कुमार शर्मा जी का, उनके हरिप्रसाद जी का, और बहुत अच्छे अच्छे परवीन सुल्ताना, ये बड़े बड़े जितने भी दिग्गज संगीत के जो मार्तंड हुए हैं, उन लोगों का प्रोग्राम आकाशवाणी प्रस्तुत करवाती थी, और कभी आकाशवाणी में होता था, कभी हॉल में होता था, तो हम लोग देखते जाते थे, क्योंकि हमें बड़ा शौक था, हम लोग इस तरफ इंक्लाइंड थे, झुकाव
1: जी
0: था हमारा,
1: जी
0: तो हमने वहाँ से ही शुरुआत की है, वहीं से शुरुआत हुई है, उस तरह के ही वहाँ से असर पड़ा है। तो फिर धीरे धीरे हम लोग, फिर मैं और मेरी बहन प्रेरणा, हम लोग अपना म्यूजिक एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स था
1: हाँ
0: J&K एकेडमी का, वहाँ जाके हमने सारे गामा सीखना शुरू किया, छोटे
1: जी
0: छोटे थे
1: जी
0: तब, तो फिर हमें थिएटर में उतना मिलता नहीं था मौका,
1: जी
0: लेकिन गीत संगीत की तरफ पूरा ध्यान जाता था।
1: जी
0: फिर धीरे धीरे वहाँ थिएटर करना शुरू किया हमारे, क्योंकि घर में ही था, जितने भी अच्छे अच्छे कलाकार, इतने बड़े बड़े जिन्होंने नाम किया बाद में, तो वो हमारे थिएटर ग्रुप में भी थे कश्मीर में, और उनकी वजह से हमें बड़ा आनंद होता था कि इन्होंने बॉम्बे जाकर और दिल्ली जाकर इतना नाम कमाया, इतनी ख्याति पाई। तो देखा जाए तो बचपन से ही इसकी नींव पड़ी थी, जो आज तक चली जा रही है। नाउ आई एम ए सीनियर
1: बीच
0: सिटीजन, इट्स बीन लॉट ऑफ टाइम,

0: आई हैव बीन विद म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट ऑलवेज.
1: ये जो बीज सही पड़ा था, ये बीज आगे बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते एक होता है ना कि अभी तक तो आप सीख रहे हो या मजाक मस्ती में कर रहे हो या शौक के लिए कर रहे हो, प्रोफेशनली या कहा जाए जैसा शायद पूछा भी जाता है सामान्यतया, ये हालांकि मजाक का विषय लिया जाता है, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं गायक हूं तो उससे उसका होने वाला ससुर पूछता है पर खाने के लिए क्या करता है तो इसी विषय के नाते मैं आपसे पूछूंगी कि आपने इसको अपने दाना पानी का विषय यानी अपने प्रोफेशन का विषय कब बनाया और कैसे बनाया?
0: वो थोड़ा बाद में बनाना पड़ा, बिकॉज जब मैं बहुत ही अर्ली एज से, क्योंकि बच्चों के प्रोग्राम में जाता था, फिर हमारे रेडियो कश्मीर में युववाणी की स्थापना हुई,
1: जी
0: और युववाणी में जब हम टीनेजर थे, 16-17-18 साल के थे, 16-17 साल, 15-16-17 साल के ही थे, तो तब हमें वहाँ पे हमें मौका मिला कि हम प्रसारण कैसे करें. उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया सिखाया,
1: सिखाया।
0: तो फिर वो शामे गज़ल और आपकी फरमाइश, इस तरह के प्रोग्राम हम युवानी में प्रस्तुत करने लग गए.
1: अच्छा
0: फिर हमारे वहाँ ड्रामा प्रोड्यूसर थे प्राण किशोर कौल साहब,
1: जी
0: तो फिर उन्होंने बोला तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम आओ, तुम ड्रामा का भी ऑडिशन दो,
1: जी
0: मैं प्लेस करते रहता हूँ, रेडियो प्लेस
1: हाँ
0: जो
1: हाँ
0: होते थे. तो हमारा फिर ड्रामा के लिए ऑडिशन हुआ रेडियो का, तो उसमें हम अच्छी ग्रेड में हुए, तो फिर हम
1: पास हो
0: उसमें
1: गए
0: प्लेस करते थे.
1: जी
0: तो वहाँ से कुछ ना कुछ, शुरू शुरू में कभी 15 रुपए का चेक मिलता था, फिर बाद में धीरे धीरे 50 रुपए का हुआ,
1: हाँ
0: ऐसी शुरुआत हुई. तो यहाँ से तो आना शुरू हुआ ही था एकदम, कोई ना
1: जी
0: कुछ. लेकिन पिताजी की वजह से हमें इस तरह का वो नहीं था, उनका हम आज भी धन्यवाद करते हैं, बहुत करते हैं, कि उन्होंने कभी हमें सप्रेस नहीं किया, दबाया नहीं,
1: जी
0: कि उन्होंने हमें खेलने दिया जैसे हम खेलना चाहते थे.
1: जी
0: तो उन्होंने हमेशा कहा कि बेटा, उन्होंने सिखाया कि हाँ, ये अब चेक मिला है तो कहाँ रखे, 15 रुपए का चेक मिला है, छोटे छोटे थे. तो पिताजी अपने साथ बैंक ले गए, उन्होंने बोला कि ये अकाउंट खुलवाया तो इसमें चेक डाल दो. फिर जब वो पैसे जमा होते थे तो हम कभी वो हमारे लिए कभी कभी शूज लेके आते थे,
1: हाँ
0: जाते थे, कभी वो लाते थे. तो उस तरह का उन्होंने सिखाया शुरू से बचपन से
1: जी
0: कि कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इकोनॉमिक जब से कुछ पैसे कमाए हैं तो उनको कैसा उपयोग होना चाहिए. फिर होते होते मैं घर से निकल पड़ा था, एक्चुअली सच बताएं तो मेरे
1: निकल
0: भाग्य
1: पड़े थे,
0: में
1: मतलब
0: ऐसा था कि
1: भाग पड़े
0: मैं
1: थे या निकल पड़े थे?
0: नहीं, घर वालों की सहमति से ही आया था, ऐसा नहीं
1: अच्छा
0: भाग के नहीं आया.
1: जी
0: तो मैं 1980 में दिल्ली आया, और दिल्ली में मैंने भारतीय कला केंद्र में एडमिशन लिया, और मैं थिएटर भी करता था, और मैं पंडित अमरनाथ जी से म्यूज़िक भी सीख रहा
1: संगीत भी
0: था.
1: सीखा।
0: और वो भारतीय कला केंद्र दिल्ली मंडी हाउस में बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है जो श्री राम लोगों का है, तो वहाँ हमने म्यूज़िक क्लास में मुझे एडमिशन मिला अमरनाथ जी के यहाँ. तो पीछे हॉस्टल में रहने की व्यवस्था भी थी, और बाकी टाइम सब हर वक्त क्लास नहीं होता था, लेकिन बाकी टाइम 1-2 घंटे निकाल के मैं और हम लोग, मेरे कुछ साथी थे, उनके साथ हम थिएटर वगैरह, प्लेज पढ़ना, प्लेज की
1: जी
0: रीडिंग करना और प्ले करना. तो वहाँ पे श्रीराम सेंटर, कमानी ऑडिटोरियम, फिक्की ऑडिटोरियम, बहुत
1: जी
0: सारे ऑडिटोरियम मंडी हाउस में थे. तो वहाँ हम कभी कभी फिर नाटक करते थे, और कभी कभी यहाँ, छोटे ही थे, आई वॉज आई थिंक ऑलमोस्ट वो टीनेज की एंड ही था मेरा कुछ ऐसा, जब मैं दिल्ली आ गया
1: एटीन
0: था.
1: ट्वेंटी ईयर्स का एज
0: हाँ,
1: होगा, अठारह
0: उन्नीस
1: बीस
0: बीस
1: साल
0: साल की उम्र थी.
1: हाँ
0: तो वहाँ मैं 5 साल दिल्ली में रहा, वहाँ पे उस दौरान फिर मैंने कुछ वहाँ भी रेडियो में मैंने म्यूज़िक में ऑडिशन दिया, तो मैं मुझे पास हुआ था दिल्ली रेडियो से, मैं
1: जी
0: सिंगिंग में बी हाई ग्रेड में
1: मतलब
0: पास
1: रेडियो
0: हुआ.
1: का साथ छोड़ा
0: रेडियो मेरे साथ में
1: नहीं
0: हमेशा रहा है,
1: जी
0: और मेरी बहन का तो ये था कि हमारे एग्जाम्स होते थे ना,
1: हाँ
0: तो उसका रेडियो चलता रहता था, गीत भी चलते रहते थे, वो
1: और
0: प्रिपेयर भी
1: पढ़ते भी
0: करती
1: रहते थे।
0: रहती
1: जी
0: थी.
1: जी
0: मुझसे
1: जी
0: ऐसा नहीं होता था, उससे हो जाता
1: जी लड़कियां मल्टी टैलेंटेड होती
0: था.
1: हैं
0: तो मेरी ट्रेनिंग ही इस तरह की रही है,
1: जी
0: लेकिन कभी उस तरह की वो रही नहीं डेस्परेशन की हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कहीं नौकरी करनी है, ऐसा नहीं रहा. लेकिन मुझे लगता है ट्रेनिंग ऐसी होती रही, उसके साथ में इंडलजेंस वैसी होती रही, जैसे कि जैसे म्यूजिक भी था, थिएटर भी था, और अपनी भाषा पे और उच्चारण पे तो शुरू से ही ध्यान देते थे, तो आवाज़ का भी कुछ एक समझ आया कि आवाज़ को कैसे इस्तेमाल करना है.
1: जी
0: कुछ वहाँ दिल्ली में प्रोग्राम करने का मौका मिलता तो एंकरिंग करने का मौका मिला,
1: जी
0: तो इस तरह की सारी चीज़ें होती रही अपने आप ही, सच बताएं तो.
1: मतलब आपके लिए अपने आप ही सब हो रहा था, और उसी अपने आप में आपने ना आवाज़ की बात के बारे में कई बार बोला,
0: जी
1: उच्चारण के बारे में कई बार बोला, तो मैं आपके जीवन की जो परिधि पे हम चल रहे थे उस परिधि पे 1 मिनट के लिए रुक के एक बात पूछना चाहती हूँ। आप वॉइस ओवर डायरेक्टर हैं, हमारे श्रोताओं में कई सारे बच्चे हैं जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, शायद उनको मॉड्यूलेशन भी आता है खुद से अपने आप से, और वो ऐसा सोशल मीडिया पे कई चीज़ें करके भी डालते होंगे, पर वो चाहते हैं कि वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाएं, तो उसके

0: वो क्या करें, अगर आप थोड़ा सा बीच में कुछ सिखा दें फिर हम आपकी यात्रा पे वापस आ जाएंगे।
1: मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर कोई वॉइस ओवर या डबिंग करना चाहता हो
0: जी
1: या वॉइस एक्टर बनना चाहता हो,
0: जी
1: उसे सबसे पहले तो अपनी भाषा पे और उच्चारण, जो मैं बार बार कह रहा हूँ,
0: जी
1: क्योंकि ये आजकल सबसे ज़्यादा कमी अगर मुझे कहीं महसूस होती है, कहीं ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट सुनने में, तो ये बहुत तकलीफ होती है कि लोग, उनका भी शायद कितना दोष है, उनके शिक्षक वैसे हैं क्या, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, उच्चारण पर बहुत ध्यान देना चाहिए, वॉइस क्वालिटी पे देख उनकी वॉइस। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी आवाज़ में बेस कैसे आएगा,
0: हाँ,
1: ऐसा नहीं हो। मुझे कहीं सो लोग सवाल पूछते हैं कि हमारी आवाज़ ऐसे कैसी होगी, आपके जैसे हमारी आवाज़ कैसी होगी।
0: हाँ,
1: लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की एक आवाज़, एक अपनी क्वालिटेटिव आवाज़ वो नेचर से मिलती है।
0: जी,
1: उसमें थोड़ा सा हम लोग एनहांसमेंट कर सकते हैं अगर हम उसका थोड़ा रियाज करें, जैसे हम खरज का रियाज करें मॉर्निंग में उठ के, वो संगीत
0: खरज
1: की
0: का रियाज कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा
1: वॉइस को थोड़ा सा नीचे के टोन, जैसे ऑक्टेव्स हैं, जैसे सप्तक है,
0: हाँ,
1: मंद सप्तक है, मध्य सप्तक है और तार सप्तक है, तीनों

0: मॉर्निंग में उठ के, वो संगीत
1: करज का रियाज कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा
0: वॉइस को थोड़ा सा नीचे के टोन, जैसे ऑक्टेव्स हैं, जैसे सप्तक है,
1: हाँ,
0: मंदर सप्तक है, मध्य सप्तक है और तार सप्तक है, तीनों ऑक्टेव्स जो है उसमें मध्य सप्तक से आपको मॉर्निंग में, चूंकि आप नींद से उठते हैं तो उसके बाद आपके पास थोड़ी सी बैठी होती
1: बेस
0: है, मतलब
1: काफी
0: बेस
1: अच्छा
0: होती है,
1: होता
0: तो
1: है,
0: उसमें
1: हाँ,
0: आप नीचे की तरफ सा
1: साके
0: नी,
1: बाद नी,
0: हाँ नीचे
1: जी,
0: आए
1: जी.
0: आ, आ, नीचे की तरफ जितना जाएंगे,
1: जी
0: और कहते हैं कि जितना नीचे जाएंगे उतना ऊपर छू सकते हैं, हमारे
1: अच्छा,
0: बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है कि वेन्यू आप जब खरज का रियाज करते हैं तो तार सप्तक में आपकी आवाज और भी आगे
1: खुलती
0: जब
1: है
0: खुलती है,
1: जी,
0: तो इस तरह का मुझे लगता है वॉइस क्वालिटी में अगर थोड़ा बदलाव लाना है तो थोड़ा आपको खरज का रियाज करना पड़ेगा, चाहे आप संगीत का करें
1: जी
0: या आ आ करके ही कर सकते हैं,
1: जी
0: लेकिन हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की, हर एक स्त्री की अपनी अपनी एक वॉइस क्वालिटी है जो नेचुरली होती है, तो उसको ही कैसे अच्छा इस्तेमाल करना है वो आपको ढूंढना है। अगर
1: ओके,
0: आपका उच्चारण सही है, अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, तो आपको उच्चारण पे पढ़ के आपको पढ़ाई बहुत करनी है,
1: जी
0: किताबें बहुत पढ़नी चाहिए आपको, और थोड़ा सा लाउडली पढ़नी चाहिए, जैसे आप अकेले अगर हो तो किताबें पढ़ना चाहिए उसको,
1: किस तरह की किताबें पढ़नी
0: कोई भी,
1: चाहिए?
0: जैसे उपन्यास हो कोई भी हो,
1: अच्छा
0: जिसमें अगर आपको, क्योंकि भाव की भी जरूरत होती है,
1: जी
0: आवाज के साथ में उच्चारण के साथ में भाव भी चाहिए,
1: जी
0: तभी आप अच्छे आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं,
1: जी
0: जब आपको मालूम, क्योंकि मेरे संगीत के योगदान ने मुझे उसमें एक अलग तरह का, एक मेरे जीवन में योगदान किया है, कि क्योंकि मैंने बेसिकली थोड़ा म्यूजिक भी सीखा है, बहुत ज्यादा मैं उस्तादी म्यूजिक नहीं सीखा, मैंने
1: जी
0: बेसिक म्यूजिक सीखा है, जो
1: जी
0: मैंने संगीत सीखा है उस वजह से मेरे डायलॉग डिलीवरी में, या मैं जब डबिंग करवाता हूं किसी से, तो मैं उनको वो गाइड कर सकता हूं कि इस सेंटेंस का भाव ऐसा है, और किस शब्द को आपको कितना पुश करना है, कितना सॉफ्ट करना है, और उसको कैसे साथ में लेके चलना है,
1: जी
0: तो वो मैं इसलिए बता पाता हूं क्योंकि मेरा संगीत से मेरा जुड़ाव है, संगीत की मेरी सोल है,
1: जी
0: मेरी म्यूजिक की सोल, मुझे वो जो सुरों की जान पहचान की वजह से मुझे लगता है कि जो डायलॉग को हम किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं
1: जी
0: वाइल एक्टिंग या रेडियो एक्टिंग या फिल्म की एक्टिंग या टेलीविजन की एक्टिंग करते हैं, तो वो भाव उसमें आना बहुत अनिवार्य होता है, आवश्यक है,
1: ठीक है
0: तभी तो आपके सेंटेंस में वो एक वो कन्वे होगा कि आप क्या कहना चाहते हैं,
1: जी,
0: तो उसमें उच्चारण के साथ साथ, वॉइस के साथ साथ आपको भाव पे भी ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी,
1: जी
0: और जैसे आजकल तो बहुत सारे एपरेटस हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, उसमें रिकॉर्डर होता है, उसमें कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, दो एक छोटा पैसेज रिकॉर्ड कर लिया, फिर आपने उसको सुन लिया, तो अगर आप जेन्युइनली एनालिटिकली अपने उसको जो आपने रिकॉर्ड किया उसको सुनेंगे और समझेंगे कि कहीं त्रुटि है, कहीं गलती तो नहीं हुई है, कहीं कुछ ऐसा हुआ तो नहीं, तो आप उसको दोबारा से कर सकते
1: खुद खुद
0: हैं,
1: के गुरु भी बन सकते
0: खुद
1: हैं,
0: क्या, और वैसे भी बहुत सारी कुछ लोगों की क्लासेस चलती हैं जो वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस एक्टिंग, ये सब चीज़ें और ब्रॉडकास्टिंग के बारे में सिखाते हैं, काफ़ी लोग इंस्टीट्यूशन से, वो वहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा उसका मंत्र जो है कुछ करने के लिए दीवानापन और दीवानगी होनी चाहिए, अगर
1: जी
0: आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है,
1: जी
0: इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग,
1: जी तो वो पागलपन चाहिए, अगर पागलपन है तो
0: हाँ
1: आप
0: वो
1: वहां पहुंच
0: दीवानापन
1: सकते हैं,
0: चाहिए,
1: और कुछ शिक्षाएं तो इसमें दी गई हैं, तो आप उन शिक्षाओं का भी ध्यान
0: जी
1: रखें,
0: जी बिल्कुल, बिना
1: उच्चारण
0: गुरु के
1: और
0: ज्ञान तो मिलता
1: जी
0: नहीं है,
1: जी
0: और
1: जी
0: गुरु आपको बनाना पड़ेगा किसी को गुरु, कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं
1: हाँ
0: इनसे सीखूं,
1: जी
0: तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही,
1: जी
0: तो हम बचपन में गए ना वापस
1: नहीं, अभी बचपन में नहीं जाते एक काम करते हैं, हम वापस आते हैं, और वापस आके जब आपने इतनी अच्छी शिक्षा दी, और आपने कहा कि संगीत ने आपका बहुत साथ दिया,
0: जी जी
1: आपने बहुत अच्छे से दिल्ली में सीखा भी संगीत, तो अगर आप हमें कोई गीत गाकर सुना दे, ताकि वही गीत हम हमारे श्रोताओं को सुना पाए।
0: ठीक है, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, पता नहीं आपका दिल चाहे तो मतलब
1: नहीं, स्वागत है, स्वीकार है जी
0: मैं चूंकि संगीत से मेरा बहुत पुराना साथ है, मेरा इट
1: जी
0: हैज़ बीन माय फ्रेंड ऑलवेज, मेरा साथी हमेशा संगीत रहा है, अकेलेपन का भी बहुत साथी रहा है,
1: जी
0: बीच में तो काफ़ी साल मैं एक्टिंग करता रहा, 1987 में पहली बार मैंने बॉम्बे में सीरियल किया था, एक्टिंग करते करते करते मैं डबिंग करता रहा, वॉइसिंग करता रहा, फिर डबिंग डायरेक्टर बना करते करते, उसके बारे में बाद में तो बात करूँगा आपसे, तो उसके साथ साथ मैं अभी एक प्रोग्राम करने वाला हूँ, मैं एक ट्रिब्यूट दे रहा हूँ, हमारे बहुत बड़े आइकॉन फिल्म इंडस्ट्री के रहे हैं धर्म जी, धर्मेंद्र,
1: जी
0: उनको ट्रिब्यूट देने का मेरा बड़ा दिल किया, तो मैं उनको एक ट्रिब्यूट दे रहा हूँ, प्यार ही प्यार।

0: बेशुमार
1: क्या
0: टाइटल
1: बात
0: रखा है मैंने प्रोग्राम का, और आई थिंक अगले अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास में सेंट एंड्रयूज ऑडिटोरियम में वो शो कर रहा हूँ। उसमें एक गीत मुझे बहुत पसंद है, धर्म जी को मैंने डेडिकेट किया। उसमें
1: जी,
0: गाने तो बहुत सारे हैं, हमने तकरीबन बहुत सारी लिस्ट बनाई है। उसमें एक गाना है जो मुझे बहुत बेहद पसंद है, उसकी दो लाइनें आपको सुनाता हूँ,
1: जी
0: क्योंकि
1: स्वागत
0: आपने मुझे कहा है कि दो लाइनें सुना दीजिए।

0: बस कोई हिसाब नहीं, दुनिया ओ दुनिया।
1: कितना खूब गाया आपने, बेहतरीन। चलिए।

0: ये खूबसूरत गीत आपने गाया और हमने हमारे श्रोताओं को सुनाया, मतलब हमारे श्रोताओं की भूख बढ़ गई है कि अब जो भी गीत आप चुनेंगे उस गीत को आप गाकर सुनाएंगे और फिर हम आगे सुना देंगे।
1: वाह वाह, मेरा
0: ये
1: सौभाग्य,
0: है
1: मेरा
0: ना, ये
1: सौभाग्य।
0: होता रहेगा। पर अब आपने बताया कि 1987 में आप मुंबई आए थे और पहला
1: 1986 में आया था।
0: 1986 में,
1: इनफैक्ट जनवरी 20-40 साल हो गए तकरीबन बंबई में।
0: ऐसा बताने से उम्र पता चल जाती है,
1: मुझे कोई गम नहीं है उसका।
0: पर आप 1986 में मुंबई आए और यहाँ पर आके आपने अपना एक नया कदम, एक नया पायदान चढ़ा, एक नई सीढ़ी चढ़ी यहाँ से
1: जी,
0: आपने। तो अब जरा उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें थोड़ा।
1: ऐसा सुनने में आया था कि बॉम्बे में बिना गॉडफादर के कुछ होता नहीं है।
0: अच्छा।
1: तो ये बात एक तरह से वाजे भी है, अच्छी भी है, सही भी है। लेकिन अब जब मेरा कोई था ही नहीं बॉम्बे में, तो मुझे तो खुद ही अपनी पगडंडी बनानी थी, अपने रास्ते खुद बनाने थे। तो मैं उससे पहले

0: भी कई बार, एक बार ऐसे छुट्टियां होती थी मेरे कॉलेज में, तो वो सब दिल्ली में भाग भाग के आता था, क्योंकि बम्बई अपनी तरफ खींचता था मुझे हमेशा शुरू से। फिर फाइनली मुझे बम्बई आना ही पड़ा। मुझे बहुत लोगों ने वहाँ दिल्ली में कहा कि आप दिल्ली में क्यों रहते हैं, आप बॉम्बे जाना चाहिए, आपको बॉम्बे में इतना अच्छा आपके टैलेंट का विकास होगा, आपको बहुत सारे अच्छे मौके मिलेंगे। तो मैं बॉम्बे आया, तो उसके बाद फिर मैंने इधर उधर कुछ, मैंने एक फोटो सेशन करवाया था। उस वक्त के बेस्ट फोटोग्राफर जो थे, स्टिल फोटोग्राफर, उनका नाम था गौतम राजाध्यक्ष।
1: जी जी
0: अब वो
1: जी
0: है
1: जी
0: नहीं,
1: जी जी
0: लेकिन मैंने बड़ी बहुत जद्दोजहद करी, बहुत मेहनत करी, तो मैंने उनका पता ढूंढा। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे फोटो सेशन कराना है, तो सिर्फ आपसे करवाना है।
1: बड़े महंगे हुआ करते थे उस
0: लेकिन
1: समय.
0: बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे
1: जी
0: थे
1: जी
0: वो, बहुत ही
1: बिल्कुल.
0: अच्छे। एंड ही वॉज द बेस्ट पोर्ट्रेट फोटोग्राफर, बहुत बड़े बड़े
1: यस
0: लोगों का करते थे। एंड ही अग्रीड टू डू माई फोटो सेशन फॉर दैट टाइम। एंड तो फिर उनके घर पे उन्होंने मुझे, बाबुलनाथ मंदिर के पास में उनका घर था, ह्यूज रोड पे, तो वहाँ उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, बोला यू कम ऑन सैटरडे, वी विल शूट। तो उन्होंने खट खट खट खट मेरी तस्वीरें लेते गए वो, और कुछ फोटोग्राफ्स उन्होंने दी। तो फिर मेरे पास, जब वो उस ज़माना वो था, तो कुछ फोटोग्राफ्स होती थी, तो मैंने बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में मैंने
1: अप्लाई
0: वो
1: कर
0: दिया
1: दिया.
0: उनका अपना पीछे। अच्छा, उस वक्त ऐसा ज़माना था कि फ़ोन भी नहीं होता था सबके पास में, सबके मतलब केयर ऑफ नंबर होते थे। मेरे भी एक अंकल रहते थे बांद्रा में, तो पीछे उनका केयर ऑफ नंबर देके हम लोग रखते थे नाम और केयर ऑफ नंबर। कभी कभी वो फ़ोन करते भी थे और मैसेज मिस भी हो जाते थे। और
1: हाँ
0: मेरी आंटी घर पे रहती थी, वो बोलती थी अरे बेटा किसी का फ़ोन आया था, वो कोई अच्छा सा था, नाम भी अच्छा सा था, कुछ क्या कुछ बताती नहीं, कोई कोई
1: भूल
0: मैसेज मिलता नहीं
1: गई
0: था,
1: भूल गई.
0: लेकिन हाँ वो भूल जाती थी। तो इस तरह का भी वक्त देखा है। तो फिर बहुत सारे लोगों से मिलना होता था। उस वक्त मुझे एक एड फिल्म मिली थी ब्रूक बॉन्ड की, 3 रोज़ेस चाय,
1: अच्छा.
0: आई थिंक दैट वाज फॉर कुछ साउथ के लिए था।
1: हाँ.
0: उसमें एक मॉडल थी राधा, और मुझे उन्होंने लिया था। ज्योति ठाकुर डायरेक्टर थे उस एड के,
1: जी
0: बहुत बड़े
1: जी जी जी
0: एड फिल्म मेकर थे ज्योति
1: जी
0: ठाकुर।
1: जी
0: तो उस एड में मुझे काम करने का मौका मिला था, ब्रूक बॉन्ड की 3 रोज़ेस चाय। फिर मैंने जिंगल गाया, एक बन फूल आयुर्वेदिक तेल का जिंगल मुझे गाने का मौका मिला। मैं बहुत, मतलब मैं जितनी मुझसे कोशिश खुद से हो सकती थी मैं करता था, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर था नहीं, मुझे कोई लॉन्च करने वाला था नहीं, तो आई हैड टू डू माई ओन थिंग्स। तो आई यूज टू बी इन टच, मैं पृथ्वी थिएटर में अक्सर जाता था, वहाँ लोगों से मिलना होता था, वहाँ बहुत लोग मिलते थे। कुछ मैंने उस पहले आके इप्टा के साथ में भी एक उनके साथ फंक्शन किया था इप्टा डे का, तभी वो बहुत अच्छे अच्छे लोग हुआ करते थे। इकबाल कुरैशी साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे, कुलदीप सिंह जी थे, तो MS सत्यू साहब, ये लोग बहुत पुराने इप्टा के
1: बड़े
0: लोग थे।
1: लोग थे.
0: तो इन लोगों के साथ में भी इप्टा डे में भी मैंने गाया भी था, एक्टिंग भी किया था। तो इस तरह से मुझे जितने जितने मुझे जो भी मौका मिलता था मैं कर लेता था। आई थिंक आई यूज टू, मुझे लगता है अपने आप को मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, शायद रिफाइन कर रहा हूँ। तो इनिशियली वैसे ही काम चलता रहा। फिर ये 1987 में दूरदर्शन में एक सीरियल आता था अधिकार, उसमें मेरा उसमें हुआ था, तो मैंने उसमें एक्टिंग की। फिर उनका ही नेटवर्क 7 का ही, मंजू सिंह, जोत सिंह का एक कहानी, उसमें मैंने एक्टिंग की। फिर उसके बाद तरह तरह के करता रहा। फिर मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, मैं आपको बताऊं, मैं जो मैंने शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं है, मैंने प्यार किया फिल्म की कास्टिंग हो रही थी,
1: हाँ.
0: तो मैंने प्यार किया कास्टिंग के लिए मुझे किसी ने मुझे मुझे भेजा था, बोला उनको ज़रूरत थी उस वक्त एक्टर्स की। तो उन्होंने शायद सलमान खान और भाग्यश्री का सिलेक्शन हो चुका था, उसमें किरदार था जीवन का, उसके लिए मुझे उन्होंने स्क्रीन टेस्ट किया। सूरज जी से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया था, और उस स्क्रीन टेस्ट में सलमान खान भी मौजूद थे और भाग्यश्री भी। वो एक प्रॉपर सीन शूट हुआ राजश्री प्रोडक्शंस की सीढ़ियों में, जहाँ पे वो लिफ्ट है, वो वहाँ सीढ़ियों से उतरते मैं एकदम सूटेड बूटेड आता हूँ, और नीचे आके सलमान और भाग्यश्री खड़े हैं, उनके साथ मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था उस फिल्म के लिए। वो एक डायलॉग था, वाह सुमन वाह, पराए अजनबी घर में, पराए लोगों से इतना दोस्ताना, ये सब डायलॉग्स थे। तो सलमान आके मेरा कॉलर पकड़ते हैं, सूट पकड़ते हैं, तो मैं ऐसे, फिर वो डायलॉग बाजी थी, वो मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था उसमें। और हमारे दो लोगों का, मेरा हुआ था और एक और लड़का था, मेरा सिलेक्शन मुझे मालूम पड़ा हुआ था, लेकिन फिर वो फाइनली दैट रोल वेंट टू अप टू टू मोहनीश बहल। तो वहाँ से थोड़ा मेरा लगा था कि हाँ सचमुच जो लोग कहते हैं कि गॉडफादर होता है तो गॉडफादर होना चाहिए। लेकिन मेरी कोशिशें एकदम बरकरार थी, चालू थी, मैं हमेशा कोशिशें करता रहा, करते करते करते फिर टेलीविजन में करते रहे, बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए, महाराणा प्रताप मेरा एक तरह से लास्ट सीरियल, उसके बाद मैंने फिर टेलीविजन नहीं किया।
1: जी
0: महाराणा प्रताप था, अदालत, बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए, कागज की कश्ती
1: जी,
0: तो अब तो नाम भी याद नहीं रहते कितने, उस
1: इतने सारे
0: जमाने में
1: सीरियल्स कर

0: ये गाने तो याद रहते हैं ना। अब आपने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि जिंदगी में जो कुछ आता जा रहा है वैसे ही चलता जा रहा है,
1: जी
0: तो एक गाना अगर आप हमारे श्रोताओं को कुछ सुन
1: फुज

0: जिंदगी का साथ निभाता चला
1: क्या
0: गया।
1: बात है, मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत बहुत खूबसूरती से आपने गाया, और अब सुनते हैं यही गीत।
0: मैं जिंदगी

0: तो ये गाना तो आपने सुना दिया और आप सोच रहे होंगे कि हाँ हमसे बात करने के लिए बुलाया है या गाना गाने के लिए। तो विविध भारती की एक बात है कि यहाँ पर अगर कोई हुनरबाज आता है तो हम सारे हुनर का आनंद उठाते हैं और सब में बांटते हैं, तो ये
1: नहीं,
0: प्रेम
1: मुझे
0: हम
1: भी
0: बांट
1: खुशी
0: रहे
1: है
0: हैं आपका।
1: बिल्कुल आपके साथ, जिस तरह हम जो वार्ता कर रहे हैं, जो भी एक चर्चा कर रहे हैं,
0: जी
1: मेरे बारे में चर्चा हो रही है, मेरे सफर के बारे में चर्चा हो रही है, उसमें मेरा साथी तो आकाशवाणी विविध भारती है ही, और विविध
0: जी
1: भारती के श्रोताओं को
0: जी
1: खासकर, उनको भी तो गीतों का आनंद मिलना चाहिए, उनको भी
0: जी
1: हमारी बातों का आनंद आना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। तो अब जब बातों का आनंद चल रहा है, तो अभी तक तो आप मुंबई आए, फिर से दूरदर्शन यानी प्रसार भारती ने आपका हाथ पकड़ लिया, आपको बहुत सारे नाटकों का, धारावाहिकों का हिस्सा बनने का मौका मिल
1: जी
0: गया।
1: जी
0: अब आपने धारावाहिक कर लिए, उन्हें छोड़ दिया, लेकिन साथ साथ में कुछ फिल्में भी आपके हाथ में आ रही हैं और आप उन फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, एक
1: जी
0: एज ए एक्टर काम कर रहे हैं। तो वो जमाना कैसा था, आप काम करते थे तो कैसा लगता था, और आपने किन-किन जगहों पर क्या-क्या किरदार किए, ये बड़े प्यारे से प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम जानना चाहते हैं।
1: असल में शुरुआती दौर में बेसिकली मेरे जहन में ऐसा बैठा था कि एज मैटर्स अ लॉट। जैसे मैं 20s में था तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी मुझे अगर लीडिंग कैरेक्टर्स मिल जाएं, फिर मुझे वो लीडिंग कैरेक्टर ही चाहिए थे। उसके बदले में मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ भी दी उस वक्त, क्योंकि शायद मेरा गाइड या मेंटोर या गॉडफादर कोई था नहीं, या जो मुझे मतलब समझा सकते थे। मैं खुद ही अपनी एनालाइज करके अपनी डिसीजंस लेता था।
0: जी
1: जैसे मुझे मैंने प्यार किया नहीं मिली तो मेरा दिल थोड़ा सा दुख
0: टूटा
1: गया था।
0: होगा।
1: तो
0: हाँ
1: देवानंद साहब से मैं बहुत मुतासिर था, बहुत उनसे प्रभावित था। तो उनसे मुझे मेरे मित्र

0: मिलवाया था देव साहब से, वो उनके असिस्टेंट चीफ असिस्टेंट थे, तो वो देव साहब बहुत प्यार करते थे मुझे, कश्मीरी करके बुलाते थे, ए कश्मीरी कम हियर, कम कम व्हेन हैव यू कम, उस तरह से बहुत स्टाइल से बात
1: आप
0: करते थे
1: थोड़ा और इसको क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात करते समय देव साहब यहाँ पर आए थे, तो देवानंद को सुनना हम चाहते हैं, अगर थोड़ा और सुना
0: मैं उनके अंदाज में बताऊंगा जो उन्होंने मुझे जवाब दिया
1: जी,
0: था।
1: जी बिल्कुल,
0: क्योंकि एक फिल्म बन रही थी उस वक्त अव्वल नंबर
1: जी,
0: देव साहब का ऑफिस खीरा नगर सेंटर कुछ में भी था जहां मैं कई बार उनसे मिला भी था, उनका आनंद डबिंग भी था
1: जी,
0: और महबूब स्टूडियो में वहां भी एक उनका कमरा था जहां पे वो अक्सर बैठते थे बैंड्रा में, मुझे उन्होंने सूचना मिली तो मुझे उन्होंने वहां बुलाया था। वो शायद उसके बाद वो कहीं लंदन जाने वाले थे
1: जी,
0: लेकिन उससे पहले उन्होंने अव्वल नंबर फिल्म की उन्होंने बातचीत चल रही थी तो मुझे भी उन्होंने वहां मिलने के लिए बुलाया, तो मैं वहां गया था तो मुझे उन्होंने एक रोल ऑफर किया जो एक पुलिस वाले का रोल था,
1: अच्छा
0: तो वो मैंने उनसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहा, मैंने कहा देव साहब मुझे पुलिस वाले का रोल नहीं करना है, इट्स द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, तो मैं एक पुलिस वाले का रोल करके मतलब इट इज
1: उसी लूप
0: नॉट,
1: में
0: मुझे
1: फंस
0: मुझे हाँ
1: जाएंगे।
0: ऐसा लग रहा था। उस फिल्म में आमिर खान साहब कास्ट हुए थे और उन्होंने मुझे कहा रायना आई एम रोल रियली सॉरी आई कान गिव यू दैट, मैंने उनको कहा था कि वो जो सेकेंड लीड रोल है जो नेगेटिव रोल था तो मैंने कहा था वो मुझे आप दे दीजिए ना इस फिल्म के लिए, तो मुझे वो पुलिस वाला रोल नहीं करना है। कहता आई एम सो सॉरी रायना आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड आदित्य अबाउट दैट रोल एंड आई हैव टू गिव इट टू हिम, आई कैन नॉट गो बैक ऑन माय प्रॉमिस, सो वी विल यू बेटर डू दैट वन, दैट्स अ गुड रोल ऑफ अ पुलिसमैन। तो
1: जी
0: मैं बहुत उनका फैन था, बहुत ज़बरदस्त फैन रहा हूँ उनकी फिल्मों का भी, तो इस तरह से उन्होंने मुझे जवाब दिया तो मैं फिर थोड़ा सा मेरा मैंने कहा ये पुलिस वाला रोल मुझे नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं देव साहब मैं आपके साथ में नेक्स्ट फिल्म में ही काम करूँगा, इस फिल्म में पता नहीं ये क्या था मुझे मालूम नहीं, ये मेरी अब मैं अगर को कहूँ गलतियाँ थी लेकिन उस वक्त मुझे सही लगता था, मुझे लगता था कि मेरा करियर का बिगिनिंग है, मेरा कोई है नहीं, मुझे वन ऑफ द लीडिंग रोल करना चाहिए चाहे नेगेटिव रोल में, नेगेटिवली मेरा बहुत अच्छा एक शौक था कि मैं नेगेटिव रोल्स करूँ, मेरी आवाज़ और मेरी पर्सनालिटी और मेरी आंखों की वजह से मुझे ऐसा लगता था कि नेगेटिव रोल विल सूट मी। तो उन्होंने जब वो कहा कि मुझे आदित्य को प्रॉमिस किया है तो मेरा फिर दिल थोड़ा सा वो हो गया,
1: फिर से टूट गया
0: फिर थोड़ा सा वो हो गया कि हाँ मतलब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हाँ आपका कोई होना चाहिए,
1: जी
0: देर हैज टू बी सम सपोर्ट, जैसे आप तो जानती हैं इतिहास भी जानती हैं कि बहुत सारे लोगों को लॉन्च उनके घर वालों ने ही किया हुआ है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा
1: जी
0: लेकिन किया तो है ना हमारा, मेरा ऐसा कोई था नहीं, कुछ लोगों को लेकिन भाग्य के अंतर्गत मिला भी है, जिनका कोई गॉडफादर नहीं था उनको भी मिला है
1: जी,
0: लेकिन मेरे साथ में ऐसा हुआ। फिर उसके बाद देव साहब से अक्सर मिलना होता था, मुझे कश्मीरी बुलाते थे, कश्मीरी जो कि म्यूजिक से भी मेरा रिलेशन था तो इसलिए मैं म्यूजिक के प्रोग्राम भी करता रहता था, मैं शोज भी करता रहता था।
1: अच्छा,
0: जैसा आपने अंदाजा लगाया एक्टिंग, और किशोर कुमार साहब हमारे वन ऑफ द गुरुज हैं तो इसलिए जैसे वो एक्टिंग और सिंगिंग
1: दोनों करते थे।
0: तो ऐसा ही हमारा भी कुछ वैसा ही था
1: जी।
0: लेकिन अब अच्छी अच्छी फिल्में कुछ मैंने वीर ज़ारा मुझे यश चोपड़ा जी के साथ में काम करने का मौका मिला और उस कव्वाली में उन्होंने अपने किसी मित्र से कहा था कि मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए जो जिसको म्यूजिक का नॉलेज हो, तो मेरे साथ में यश जी के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स की गई फिल्म सिटी में, तो वहाँ उन्होंने मुझे आई वॉज कॉल्ड 10 बजे मुझे उन्होंने फिल्म सिटी बुलाया था, तो मैं वहाँ ड्राइव करके आया तो वो भी आए मेरे साथ में, तो यश जी से उन्होंने मुलाकात करवाई तो उन्होंने मुझे पूछा अच्छा कश्मीर के हो, अच्छा अच्छा म्यूजिक आता है वो ये, तो फिर उन्होंने मुझे वो उस वीर ज़ारा में उन्होंने मुझे कास्ट किया
1: जी
0: उस कव्वाली बहुत अच्छी अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की गाई हुई आया तेरे दर पे दीवाना, ये सुना
1: वो
0: सकती
1: थोड़ा
0: हैं
1: सा आप गा के, नहीं आप थोड़ा, वही मैं कहने आई थी, आप थोड़ा गा के सुना दें तो आगे वो कव्वाली हम हमारे श्रोताओं तक पहुंचा देंगे।
0: जो बन

0: तो इस पे मैंने एक्टिंग की है, तो मुझे खुशी तो इस बात की थी कि यश चोपड़ा जी मेरा नाम लेके मुझे एड्रेस करते थे, रैना चलो अब तुम्हारा ही शॉर्ट्स होने हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। सरोज जी वहां से कोरियोग्राफ कर रही थी, तो हाँ पंकज जी रैना जी चलिए अब आपकी शॉर्ट्स लेने हैं, तो इस तरह से नहीं ये लोग जब मुझे एड्रेस करते थे आई यूज टू फील रियली गुड अबाउट इट। एंड तो वो कवाली हुई उसमें, उस पर मैंने एक्टिंग की। उसके बाद कई और फिल्में, अभी मेरी एक फिल्म आने वाली है आमिर खान प्रोडक्शंस की, बंटवारा 1947, जिसका
1: अच्छा
0: नाम पहले लाहौर 1947 था,
1: अच्छा
0: अब उसमें सनी देओल और शबाना जी हैं, राजकुमार संतोषी डायरेक्टर हैं,
1: जी
0: आमिर खान प्रोड्यूसर है, मेरा भी बहुत अच्छा है उसमें किरदार है।
1: जी
0: सनी के साथ बहुत सारे अच्छे हमारे साथ के रोल्स हैं। वो 14 अगस्त को रिलीज़ हो रही है, वो देखिएगा। और एक मेरी वेब सीरीज़ ऑन एयर है जियो हॉटस्टार पे, लुटेरे,
1: अच्छा
0: और तनाव भी एक वेब सीरीज जो सुधीर मिश्रा ने की है, वो हंसल मेहता की प्रोडक्शन है।
1: जी
0: तो इस तरह की इस गेटअप में मेरे कुछ चीज़ें
1: आपको
0: हैं
1: आने
0: अवेलेबल।
1: वाली फिल्म और सीरीज के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई।
0: बहुत बहुत
1: और
0: शुक्रिया।
1: जी अभी है ना, हमारे बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, गढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हमारे सामने जो इतना बड़ा आर्टिस्ट बैठा है, जिसके पास में संगीत का भी ज्ञान है, आवाज का भी ज्ञान है, जिनके पास दिग्दर्शन का भी ज्ञान है तो निर्देशन का भी ज्ञान है,
0: जी
1: जिनको पता है कि किस तरह से किस अभिनय को करना है, जो नेगेटिव किरदार भी कर सकते हैं, जो मस्ती भरे माहौल में भी जी सकते हैं। इस सब का निचोड़ एक कुछ ऐसा हमारे श्रोताओं के लिए मिल जाए आपकी बातों से, आपके जज्बात से, ताकि हमारे जो श्रोता हैं जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं वो आपकी उन बातों का सहारा लेकर आगे बढ़ सकें। तो एक कोई संदेश, एक कोई बात, एक कोई सीख हमारे आगामी पीढ़ी के लिए, या जो श्रोता भी इस राह में संघर्षरत हैं वो भी ये काम कर सके।
0: मैंने जैसे पहले भी आपसे जिक्र किया कि ये जो कला क्षेत्र है, इसमें ये तो एक तपस्या की तरह है।
1: जी
0: कला क्षेत्र में जब तक इंसान तपस्या भाव से इस फील्ड में नहीं आता, तो वो भाग्य के द्वारा हो भी सकता है, बन भी सकता है, लेकिन है तो तपस्या।
1: जी
0: आपकी चीज़ों का सराहा तभी जाएगा जब आप उस तरह का एक्ट करेंगे, उस तरह का गाएंगे, उस तरह का संगीत निर्देशन करेंगे।
1: जी
0: और उन सब चीज़ों के लिए तो स्टडी और दीवानगी की जरूरत तो होती है। आपको
1: बिल्कुल
0: मीडियम का कितना ज्ञान है, उसमें आपकी कितनी

0: दीवानगी है, आपने अपने आप को उसमें कितना
1: ढाला है
0: एनग्रॉस किया हुआ है, उसमें ढाला है। तो वो सब तो नए लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए तो ऐसा ही है कि वो दीवानगी की तरह से ही करेंगे, तब जाके होता है, तब जाके आपको सराहा जाएगा। अदरवाइज
1: अगर वो हारते हैं टूटते हैं तो क्या करें?
0: नहीं, हारना टूटना नहीं होता। देखिए, अगर आप सोच लेते हैं कि दीवानगी मतलब एक चीज ये करनी है तो करनी ही है
1: जी,
0: अब उसका निष्कर्ष कुछ भी निकले उसको, जैसे कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये एक श्लोक है
1: जी,
0: इसका एक्चुअल अर्थ ये है कि मेरा काम है कर्म करना, फल की इच्छा भी नहीं करना
1: जी।
0: तो हमको कर्म लगातार करने हैं, बिकॉज ये एक इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ वन जन्म। मुझे लगता है जन्म जन्मों की तपस्या के बाद अमिताभ बच्चन बनते हैं, जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद इतने बड़े बड़े महान कलाकार बलराज सहनी जैसे होते हैं
1: जी,
0: जो मतलब अपनी छाप छोड़ जाते हैं सदियों तक।
1: जी
0: तो वो एक इट्स नॉट, अगर 13 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को इंडियन कैप मिलेगी तो वो जन्म जन्मों के कर्म होते हैं
1: जी।
0: ऐसा कौन सा चीज उन्होंने सीख लिया कि वो सचिन तेंदुलकर बन गए? लता जी 11 साल की उम्र में उनको सक्सेस मतलब गाने का मौका मिला और वो आगे बढ़ी और सारा जीवन 94-95 की एज तक गाती रही। मुझे लगता है कि इट्स ए कर्मा, इट इज द डेडिकेशन विच मैटर्स लॉट। आप अपने आप को निखार सकते हैं, कुछ चीजें बना सकते हैं, कुछ चीजों की त्रुटियों को खत्म कर सकते हैं, बट बेसिकली वो डेडिकेशन और वो जुनून जब तक नहीं होगा आप में तो, और आपने उसके लिए कुछ वैसा सैक्रिफाइस नहीं किया होगा ना, तो होता नहीं है। तो इट हैज टू बी डन विद द डेडिकेशन, टोटल डेडिकेशन,
1: बहुत मेहनत करनी पड़ेगी,
0: टूटना नहीं होता है,
1: टूटना नहीं है। जी, तो जब आपका इतना अच्छा विचार हमारे श्रोताओं तक जा रहा है तो एक कोई बात, एक कोई बड़ा सुंदर सा किस्सा और एक गीत, इतनी अपेक्षा तो हम आपसे कर सकते हैं।
0: चलिए मैं आपको बताऊं, मैं बचपन से, जैसे मैंने बताया कि मेरे घर का माहौल बिल्कुल कल्चरल हब जैसा था, पेंटिंग भी थी, म्यूजिक भी था, शायरी भी थी, ये सब था
1: जी।
0: मैं जब रफ़ी साहब और किशोर कुमार और मुकेश जी जो तीन बड़े जो स्टॉलवॉर्ट्स हैं, मतलब इतने बड़े दिग्गज जो मेल सिंगर्स हुए हैं, उन तीनों का मेरे जीवन पे बहुत असर रहा है, बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग देयर म्यूजिक और मैंने उनकी सिंगिंग की स्टाइल्स और अदायगी पे जो लटके खटके झटके सब सबको मैंने शुरू से मैंने शोध किया, उस पर रिसर्च किया कि उनका क्या क्या कैसे कैसा स्टाइल है। फिर इस दौरान एक बीच में, ये तो गुरु हैं ही हमारे तीनों, और मेहदी हसन साहब भी बहुत अच्छा है, उनका भी वो भी हमारे वन ऑफ द गुरुज हैं। एक और शख्स बीच में आए जिनका नाम था भूपेंद्र। तो भूपेंद्र पहले वो भी आकाशवाणी में कार्यरत थे, दिल्ली रेडियो में काम करते थे ये, और 12-स्ट्रिंग एकॉस्टिक गिटार बजाते थे। और मदन मोहन जी एक बार दिल्ली गए थे तो उन्होंने उनसे मुलाकात करके उन्होंने बंबई बुला लिया भूपेंद्र को। तो चेतन आनंद साहब की फिल्म थी हकीकत, उसमें भूपेंद्र को उन्होंने एज ए म्यूजिशियन उन्होंने गाया भी है
1: जी।
0: वो हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, उसमें पहला अंतरा भूपेंद्र ने गाया। मैं बड़ा प्रभावित हुआ था भूपेंद्र की आवाज से, बहुत ही अलग तरह की आवाज थी, बहुत ही अलग तरह का उनका एक टोनल क्वालिटी थी और एकदम बेस वाली और कमाल की आवाज थी। तो मैं पता नहीं क्यों शुरू से जब छोटा ही था तो बहुत प्रभावित हुआ उनकी आवाज से, उनके गीत गाता था उन दिनों, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, मौसम फिल्म का गाना उनका आया, गरोंधा का एक अकेला इस शहर में, इस तरह के कई गाने उनके भूपेंद्र जी के उन दिनों आते थे। तो मैं सब पिकअप करता था, सब सुनता था, गाता भी था। एक बार बड़ी चाहत हुई मैं बॉम्बे आया तो मैं भूपेंद्र से मिलूं
1: जी।
0: तो वो उस वक्त पाली हिल बैंड्रा में रहते थे
1: जी,
0: हाईलैंड बिल्डिंग का नाम था। तो मैं उनसे मिलने एक बार आ गया, तो मिलने आया तो मैं लिफ्ट के बाहर खड़ा हूँ तो लिफ्ट खुली तो अंदर से भूपेंद्र बाहर आ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। बोले कहाँ से आए? मैं बोला कश्मीर से आया हूँ। तो बोला चलो चलो चलो ऊपर,
1: मिलने की चाहत ने मिला दी।
0: नहीं, मैं मिलने गया ही था उनसे तो देखा तो वो अंदर से आ, लेकिन वो नीचे ही मिल गए। तो फिर उनके साथ ऊपर उनके घर पे गए तो वहां पे फिर बोला अच्छा बताओ क्या क्या है, वो ये बातें बातें हुई। फिर उन्होंने गिटार उठा ली तो साथ में हम लोग, मैं और भूपेंद्र जी, मैं उनको सुनाता रहा उनके गाने
1: जी।
0: तो बहुत खुश हुए। बाद में वो बहुत मिलते थे, अक्सर उनसे मिलना होता था। राम लक्ष्मण जी ने से भी, उनसे भी मिलना होता था। राम लक्ष्मण जी ने भी कहा मेरे पास नया भूपेंद्र आ गया है, इस तरह की बातें। तो मेरे जीवन में इस तरह के कुछ अच्छे किस्से हैं जो महान महान लोगों से मिले भी हैं। तो बॉम्बे जब आए थे शुरू शुरू में तो हमारी कश्मीरी पंडित एसोसिएशन है यहाँ पे
1: जी,
0: तो उनका फंक्शन था तो मुझे उन्होंने कहा कि एक गाना सुनाओ जैसे आप कह रही हैं। तो मैंने पहला गीत यही गाया था
1: तो
0: जो मैं दो लाइन आपको सुना के

0: श्री पंकज रैना जी हमारे समक्ष हैं और उनके जीवन की बहुत सारी बातें हमने सुनी, संघर्ष को भी सुना और जीत को भी सुना, बहाव के साथ बहने को भी सुना और जीतने को भी सुना, और जहां नहीं जीते वहां अडिग खड़े रहने को भी सुना। ये सब सुनने के बाद जब पंकज जी हमारे सामने आए हैं, विविध भारती तक आए हैं, तो बहुत बड़ा परिवार है पंकज जी विविध भारती का।
1: जी
0: इसमें केवल उद्घोषक नहीं है, उद्घोषकों के साथ में बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पीछे से परोक्ष में रहकर बहुत सारा काम करते
1: जी
0: हैं,
1: जी जी मैं
0: और
1: अंडरस्टैंड करता
0: इन
1: हूँ।
0: सब के साथ बहुत सारे श्रोता हैं जिन्हें हम गिन नहीं
1: वाह
0: सकते। तो उस बड़े से परिवार की तरफ से हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ तक आए, इतना साथ दिया, और बहुत आभार व्यक्त करते
1: मैं
0: हैं।
1: अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे याद किया और मैं यहाँ चला आया, और मुझे अपनी जड़ों से, अपने रूट से, अपने कश्मीर से, अपने दिल्ली की यात्रा से और बम्बई की यात्रा से मुझे कुछ कहने का, साझा करने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत दिल से, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे आज इस जगह पे मुझे बुला के बहुत ही एकदम आत्मविभोर कर दिया। मैं
0: बहुत
1: बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ।
0: धन्यवाद।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में

0: अभी आप सुन रहे थे डायरेक्टर, एक्टर और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना से विधि जैन की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के मेहमान।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में।
3: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 5 बजने को है, थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुम्मीडी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन और कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि 42 किलोमीटर से अधिक लंबी यह परियोजना 3,590 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। नई दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में श्री वैष्णव ने कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
2: उत्तर प्रदेश आज भारत की top 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में दोनों देशों

0: रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्नपत्र लीक जैसे मामले को रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया। इसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल करने की बात कही गई है। गृहमंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, तेलंगाना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंची। यह बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4611 लोग घायल हुए हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और खेलों में भारत ने गोल में आज दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा,
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
3: आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अब पेश है फिल्म संगीत, और पहला गीत आइए सुनते हैं दिल तो पागल है फिल्म से, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार उत्तम सिंह।

दिल तो पागल है फिल्म के इस गीत के बाद आइए सुनते हैं कुछ कुछ होता है फिल्म का गीत, उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णामूर्ति की आवाज़ों में, बोल समीर के और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और अब एक गीत अलका याग्निक की आवाज में धड़कन फिल्म से। इस गीत में बोल है समीर की और धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। श्रोताओं, अब पेश है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, नए प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूँ आरजे चेतन। आज हम एक ऐसे विषय उठा रहे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से हमने से कई लोगों की रुचि है, कार्य और जीवन में संतुलन। स्वस्थ जीवन शैली के लिए रणनीतियाँ, चाहे आप यात्रा पर हो, व्यायाम कर रहे हो या बस एक शांत पल का आनंद ले रहे हो, आइए अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करने के ठोस तरीके पर गौर करें। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसके इस भवंडर में काम और जीवन के बीच उस मधुर स्थान को छूना एक तेज रफ्तार ट्रेन पकड़ने की कोशिश करने जैसी महसूस हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि क्या ये सिर्फ एक पहेली से कहीं अधिक है। ये हमारी भलाई को बरकरार रखने और हमारी खुशी के स्तर को ऊपर रखने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। जब तक ये प्रोग्राम खत्म न हो आप आराम से बैठ जाइए, क्योंकि हम कुछ व्यावहारिक रणनीतियों को उजागर करने जा रहे हैं। ये केवल आपकी सामान्य युक्तियां नहीं है, ये कार्य प्रतिबद्धताएं और व्यक्तिगत पूर्ति को संतुलित करने का नाजुक नृत्य के माध्यम से शानदार ढंग से चलने के लिए आपके भरोसेमंद रोड मैप की तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस संतुलन क्रिया को थोड़ा और अच्छा संतुलन बनाते हैं। तो अब दोस्तों, इस तथ्य पर हाँ कहकर शुरुआत करें कि उस आदर्श संतुलन तक पहुंचना एक बार की मंजिल के बजाय निरंतर चलने वाला साहसिक कार्य की तरह है। इसे एक यात्रा के रूप में देखें, न कि एक पड़ाव के रूप में। चाल एक ऐसी लाए कि खोज करना है जो आपके लिए क्लिक करती है, कुछ ऐसा जो आपको अपने व्यक्तिगत जीवन और जुनून को बढ़ावा देने के साथ साथ उन पेशेवर कर्तव्यों को पूरा करने देता है। यह सब उस जगह को खोजने के बारे में है जहां आपका काम और व्यक्तिगत दुनिया सामंजस्य स्थापित करती है, एक ऐसा माहौल बनाती है जो विशिष्ट रूप से आपका है। हाँ प्रिय श्रोता, काम में आपके समय का एक बड़ा हिस्सा लग जाता है और ऐसा महसूस होता है जैसे व्यक्तिगत गतिविधियां आपके शेड्यूल में लुका छुपी खेल रही है। तो आइए इस बारे में बात करें कि आत्म देखभाल कैसे करें, क्योंकि आप व्यस्त कार्यक्रम के बीच है, तरोताजा और विश्राम के उन क्षणों के हकदार हैं। तो आइए दोस्तों एक गेम चेंजर पर जूम इन करें, वह है सीमाएं निर्धारित करना। नॉनस्टॉप डिजिटल कनेक्शन के इस युग में काम उस दोस्त की तरह हो सकता है जो अपने स्वागत से ज्यादा देर तक रुकता है। काम के घंटे और व्यक्तिगत समय के बीच एक रेखा खींचना अपना खुद का जादुई मंत्र रखना जैसा है। यह अराजकता में संरचना

आता है और उस भयावह राक्षस के खिलाफ ढाल के रूप में कार्य करता है। दोस्तों हम सीमाएं तय करने की बात कर रहे हैं। आप जूम कॉल, ईमेल और कार्य से निपटने के एक दिन पूरा करते हैं। आप सोशल मीडिया पर लगातार स्क्रॉल करने के बजाय आप विराम कर सकते हैं। ये सीमाएं निर्धारित करने का जादू है। ये घोषणा करने के बारे में है, ठीक है, काम करो, आपकी बारी है, अब ये व्यक्तिगत समय है। ये न केवल आपके निजी जीवन को काम के बोझ तले दबने से बचाता है, बल्कि आपके मस्तिष्क को भी वह आवश्यक विश्राम देता है जिसका वो हकदार है। काम और फैमिली के बीच तालमेल रखना ही वर्क लाइफ बैलेंस कहलाता है मेरे दोस्तों। इस तालमेल के बिगड़ने से काफी कुछ बिगड़ सकता है, इसीलिए इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिट एंड फाइन रहने के लिए लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस का होना बेहद जरूरी है। कामयाबी के लिए घंटों घंटों तक मेहनत करना ठीक माना जाता है, लेकिन कुशल और हेल्थी लाइफ के लिए काम और फैमिली के बीच बैलेंस बनाइए। इसे वर्क लाइफ बैलेंस कहा जाता है। सरल शब्दों में कहे तो काम और फैमिली के बीच तालमेल रखना ही वर्क लाइफ बैलेंस है। आप प्रायोरिटीज फिक्स करें मेरे दोस्तों, प्राथमिकता तय करें। एक समय में एक ही काम करना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले प्रायोरिटीज तय करना पड़ेगा। जो काम पहले जरूरी है उसे पहले करना चाहिए और गैर जरूरी कामों को बाद में करें। इससे पर्सनल लाइफ के लिए समय मिल जाता है। काम में जो छुट्टियां मिले उसे सही तरह मैनेज करें, जिससे घर के किसी जरूरी इवेंट मिस न हो। बात समझनी चाहिए कि जिंदगी में जो समय आ रहे हैं वो बीत जाएंगे और दोबारा नहीं आएंगे। फैमिली के साथ दोबारा टाइम भी नहीं मिलेगा, इसीलिए ऑफिस के काम के साथ साथ अपनी फैमिली और पर्सनल लाइफ को भी मैनेज करें। हर किसी के पास एक निश्चित समय है, इसीलिए टाइम को मैनेज करना सीखे। अगर एक काम निश्चित समय पर नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी दूसरे की मदद ले। इसके लिए कभी भी हिचकिचाए नहीं। इससे काम आसानी से हो जाएगा और थकान भी आप पर हावी नहीं होगा। ऑफिस और फैमिली के लिए वक्त निकालते निकालते खुद को समय देना न भूले। अपनी हेल्थ के लिए खुद के लिए समय निकालना चाहिए। इस वक्त में जो काम आपको खुशी दे वही करें। इससे आप खुद को और दूसरों को खुश रख पाएंगे। हर चीज को पहले से प्लान करके चले, स्पेशली फॉर वर्किंग वुमन। इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि आप अपनी पूरी दिनचर्या की सही प्लानिंग करें। इसके लिए आपको सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट की सबसे पहली शर्त यह है कि आपको वक्त बर्बाद करने के बजाय इसको आपको फोकस करने के लिए यूज करना चाहिए। अपने बच्चों की रूटीन और फिर ऑफिस पहुंचकर वहां के कामों को पूरा करने का प्लान पहले ही करना चाहिए। हर काम का प्राथमिकता तय करें, जैसे कि मैंने आपने पहले बोला कि प्रायोरिटाइज योर वर्क। अपना होमवर्क समय पर करें, अपने लिए कुछ समय निकालें, जीवन साथी से खुलकर बात करें। वर्किंग वुमन होने के नाते आपकी जिंदगी बिल्कुल सहज और सामान्यता तरीके से चले। इसके लिए आपको अपने जीवन साथी की मदद लेनी चाहिए। उसे हिचक तोड़कर सारी बातें करें और दोनों मिलकर घर परिवार की सारी जिम्मेदारियों को आपस में बांट लें। इससे आपको परेशानी नहीं होगी और काम भी आसानी से मिल बांट कर हो जाएगा। घर का काम ऑफिस, ऑफिस का काम घर पर न लाए। ये भी सुखी जीवन जीने का मूल मंत्र है कि घर के काम को कभी भी ऑफिस में न लाए। प्रोफेशनल की तरह बर्ताव करें और ऑफिस के काम को भी कभी घर पर न लेकर जाए। ऑफिस का सारा काम वही खत्म करके आए। जो महिला घर को और ऑफिस दोनों मैनेज करती है, उनके दिमाग में कई सारे बातें चलती रहती है। इससे इन्हें तनाव भी अधिक होता है। इससे कई बार डिप्रेशन के शिकार भी होते हैं। इसके लिए इन बातों का रखे ध्यान जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। दोस्तों, जिंदगी में हर बात को बहुत अधिक गंभीरता से न लिया करें। किसी भी चीज के बारे में दिन भर सोचते न रहना। सकारात्मक चीजें करें और नेगेटिव बातों को दिमाग में लेने की कोशिश न करें। दिन में कम से कम समय ही सही मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। काम को बाद में करने में भरोसा न छोड़ो। इससे आप अपने दिमाग को शांत रखकर अपने मेंटल हेल्थ को खुद मैनेज कर सकते हैं। कहने को ये बात आम लगती है, लेकिन ये सच है। घर परिवार और ऑफिस के चक्कर में कई बार हम खुद को पूरी तरह से भूल जाते हैं, लेकिन सेहत का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका शेड्यूल कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अपनी सेहत के लिए थोड़ा वक्त

0: जरूर निकालें। सुबह व्यायाम करने से दिन भर आपका दिमाग और शरीर अच्छा रहेगा। ये भी बेहद जरूरी है कि बड़ी खुशियों का इंतजार न करें। वक्त मिलते ही कम दिनों के लिए सही वेकेशन पर जरूर जाइए, कई परिवार के साथ घूमें और कभी बाहर खाने पर चले जाएं या कभी फिल्म देखने जाए। कुछ नहीं तो नहीं, अपने घर के आसपास वाले पार्क में जाके वॉक कर लीजिए, अपने दोस्तों से मिलिए, कुछ अच्छा सा काम जो आपको अच्छा लगे करने में, जैसे कि आपके हॉबीज रहे होंगे, आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पटिंग, ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, जो भी आपको पसंद है ये सब आप कर सकते हैं और अपने आप को खुश रखिए। विद दिस लवली इन्फॉर्मेशन, दिस इज योर आरजे चेतन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।
1: आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। श्रोताओं, अब पेश है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: उमंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: घड़ी की सुइयां कभी नहीं रुकती, समय भी किसी का इंतजार नहीं करता। जो हर पल का सम्मान करता है, भाग्य भी उसी का साथ देता है। समय बहुत अनमोल है, उसकी कद्र करें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर संदेश के लिए, जिसने सच में हम सबको समय का महत्व समझाया। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता के साथ साथ डिंपल देवांगन।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, नगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी।
2: सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से।
3: श्रोताओ, एक बार फिर से करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जी
3: श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी कुछ ऐसे शब्दों की जो हैं तो हिंदी, संस्कृत और उर्दू के, लेकिन अब वे विश्व की कई भाषाओं में, विशेषकर अंग्रेजी में इस्तेमाल किए जाते हैं।
2: आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं कुछ और शब्दों को जो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं, लेकिन अब दुनिया भर में प्रयोग में लाए जाते हैं। श्रोताओ, आपने बंगलो यानी बंगला शब्द अवश्य सुना होगा। शायद ही कोई सोचे कि ये शब्द भारतीय है। अक्सर ऐसा लगता है कि ये शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन तथ्य कुछ और है।
3: जी श्रोताओ, तथ्य ये है कि अंग्रेजी का बंगलो शब्द बंगला या बांग्ला से निकला है।
2: जी।
3: इसका अर्थ था बंगाल शैली का मकान।
2: ब्रिटिश
3: अधिकारियों ने भारत में जब देखा कि भारत के बंगाल क्षेत्र में एक मंजिला चौड़े बरामदे वाले घर गर्मी के मौसम के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं।
2: जी।
3: तो उन्होंने भी अपने रहने के लिए इसी प्रकार के मकान बनवाए और उन मकानों को उन्होंने बंगलो कहना शुरू किया।
2: जी।
3: धीरे धीरे ये शब्द पूरे ब्रिटिश साम्राज्य और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तो श्रोताओ, जानकारी ये थी कि बंगला शब्द बांग्ला शब्द से निकला है।
2: जी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अनेक देशों में

0: आज भी जहाँ जहाँ ब्रिटेन का प्रभाव रहा, एक मंजिला स्वतंत्र मकान को बंगलो ही कहा जाता है।
1: आशा है श्रोताओं कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर बड़ी रोचक लग रही होगी, है ना? आइए अब सुनते हैं एक और नया शब्द, और वो शब्द है खाकी। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस और सेना की वर्दी का प्रसिद्ध रंग खाकी कहाँ से आया?
0: तो हम आपको बता देते हैं, ये शब्द फारसी उर्दू के खाक शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धूल, मिट्टी या राख। तो जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में खाकी शब्द कहाँ से आया।
1: होता ये था कि भारत में अंग्रेज सैनिकों की सफेद वर्दी बहुत जल्दी गंदी हो जाती थी,
0: जी,
1: इसीलिए उन्होंने धूल जैसे भूरे रंग की वर्दी पहननी शुरू की। ये रंग इतना उपयोगी सिद्ध हुआ कि बाद में पूरी ब्रिटिश सेना और फिर अनेक देशों की सेनाओं तथा पुलिस ने भी इसे अपना लिया।
0: जी,
1: इसलिए आज खाकी केवल एक रंग ही नहीं बल्कि अनुशासन और सेवा का प्रतीक भी माना जाता है।
0: और अब बात करते हैं एक और बहुत प्रचलित शब्द की। शब्द है लूट। अंग्रेजी का लूट शब्द भी भारत से गया है। ये शब्द हिंदी के लूट या संस्कृत के लुंट शब्द से संबंधित है। इसका अर्थ है छीन लेना या लूट लेना।
1: श्रोताओ, अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज लोग अधिकतर जज, सैनिक या प्रशासनिक अधिकारी होते थे।
0: जी,
1: न्याय करने की प्रक्रिया में या प्रशासनिक मसलों में अंग्रेज अक्सर ये शब्द भारतीयों द्वारा सुनते थे।
0: जी,
1: उन्होंने इस शब्द को, यानी लूट शब्द को, अपनी भाषा में अपना लिया।
0: जी,
1: आज अंग्रेजी समाचारों, फिल्मों और पुस्तकों में लूट शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में होता है।
0: और अब लेते हैं दो और शब्द जिनसे सभी परिचित हैं। वो शब्द हैं योग और गुरु। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां योग शब्द न सुना हो। योग शब्द संस्कृत धातु युज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना।
1: श्रोताओ, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की जीवन पद्धति है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, जिसके बाद ये शब्द पूरी दुनिया में और अधिक लोकप्रिय हो गया। इसी प्रकार से गुरु शब्द भी संस्कृत से आया है।
0: आज भारतीय अंग्रेजी में ये प्रचलन हो चला है कि किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी गुरु,
1: मार्केटिंग गुरु
0: या म्यूजिक गुरु।
1: श्रोताओ, दूसरी भाषाओं में शब्दों का यह स्थानांतरण भारत की ज्ञान परंपरा का विश्व पर गहरा प्रभाव दर्शाता है।
0: जी, तो प्रिय श्रोताओ, भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती बल्कि संस्कृति की वाहक भी होती है। जब किसी देश के शब्द दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचते हैं तो वे अपने साथ उस देश का इतिहास, संस्कृति और जीवन दर्शन भी लेकर जाते हैं। जिस भाषा के शब्द दुनिया अपनाने लगे, समझिए उस संस्कृति ने दुनिया को कुछ अमूल्य दिया है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। तो अब हो जाइए तैयार आज के प्रश्न के लिए। हमारा आज का प्रश्न है, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
0: जी
1: श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, नदी का सफर।
0: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में नदी की यात्रा के बारे में बताते हुए उसके उद्गम, प्रवाहित होने के क्षेत्रों, जल प्रपात बनने और अंततः समुद्र में मिल जाने के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है।
2: नमस्कार साथियों, कलकल करती नदियाँ धरती की नसों में बहता हुआ जीवन है जो हर प्राणी को जीवन दान देती हैं।
3: नदियाँ प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं, जिनकी गोद में न जाने कितनी मानव सभ्यताएं पनपी, फूली फली और विकसित हुई। नदियाँ न केवल जल का स्रोत हैं बल्कि जीवन, संस्कृति और सभ्यताओं की आधारशिला है। अक्सर एक जिज्ञासा हमारे मन में उठती है कि नदियों का उद्भव कैसे हुआ। तो आइए सुनते हैं एक रोचक कहानी, नदी का सफर।
2: एक समय था जब पृथ्वी पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ये लगभग 20 लाख

0: वर्ष पहले की बात है। इस काल को हिमयुग यानी आइस एज कहते थे। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ा, बर्फ पिघलने लगी थी और पेड़ पौधे भी उगने लगे थे।
1: इस तरह से हजारों वर्ष बीत गए। हिमालय पर्वत पर कहीं एक बर्फ की चोटी थी और वहीं रहती थी एक चंचल और चमकदार बर्फ की बेटी। नाम था हिमशिला। वो बहुत बड़े ग्लेशियर यानी हिमनद में रहती थी।
0: एक दिन सूरज ने मुस्कुरा कर कहा,
2: पुत्री हिमशिला, अब तुम्हें धरती पर उतरना होगा। वहां नीचे बहुत से जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें तुम्हारे जल की आवश्यकता है।
3: क्यों, मैं क्यों नीचे जाऊं? मैं तो यहाँ ऊपर बहुत खुश हूँ। बादल मेरे साथ आंख में चौली खेलते हैं। यहाँ सब कुछ कितना शांत है, मैं नीचे क्यों जाऊं?
2: पुत्री, ऊपर रहोगी तो केवल ठंडी बर्फ बनकर यहीं पड़ी रह जाओगी। हमें यूं ही पड़े नहीं रहना चाहिए, किसी के काम भी तो आना चाहिए।
3: अच्छा,
0: वो सोच में पड़ गई। फिर सूरज ने अपना ताप और बढ़ाया। फिर धीरे धीरे हिमशिला ने मन बना ही लिया पर्वत से उतरकर नीचे जाने का। वो एक छोटी सी धार बन गई और बहने लगी तीव्र गति से ढलान की ओर।
1: रास्ते में कई भूमिगत जलधाराओं ने भी यात्रा में उसका साथ दिया। उसकी गति और बढ़ गई। अचानक उसने महसूस किया, कोई उसे खींच रहा है। वो डर गई और बोली,
3: अरे ये कौन मुझे नीचे खींच रहा है?
0: पर्वत पर तपस्या करने वाले एक बूढ़े साधु ने हंसकर कहा,
2: पुत्री, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। डरो नहीं, धरती माँ तुम्हें अपने पास नीचे बुला रही है ताकि उसे जीवन मिल सके।
1: वो खुशी खुशी बहने लगी।
3: देखो, जरा देखो, अरे ये क्या, और भी इतनी सारी छोटी छोटी धाराएं बहती हुई आ रही हैं मेरी तरफ। हाँ देखो ना, मेरी तरफ।
1: ये सभी आपस में मिल गईं और सभी मिलकर बहने लगी। अब उन्होंने नदी का रूप धारण कर लिया था। कहने लगी,
0: सखी, अब हम सब मिलकर बहेंगी। हम सब एक दूसरे की सहायक हैं।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब मिलकर बहेंगी।
0: हाँ।
1: अब मिलकर बहने के कारण उनकी बहने की ऊर्जा और बढ़ गई। फिर क्या था, छोटी सी जलधारा ने अब एक विशाल नदी का रूप धारण कर लिया। मार्ग में कई पत्थर मिले, चट्टाने मिली, मार्ग रोकने की भी कोशिश की, लेकिन नदी को तो अब बस एक ही धुन थी,
3: मुझे तो बस आगे बढ़ना है, आगे और आगे।
1: एक दिन की बात है, बहते बहते नदी एक

0: बहुत ऊंची चट्टान के पास आ गई। नीचे देखा तो बहुत गहराई थी। उसे बहुत डर लगा। क्षण भर के लिए वो रुक गई और सोचने लगी,
1: हाँ अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं।
0: उसने दाएं बाएं देखा। तब पर्वत ने कहा,
2: कूद जाओ ना।
1: कूद जाऊं?
2: डरो मत।
1: हाँ?
2: धरती माता तुम्हें अपनी बाहों में ले लेंगी।
1: अच्छा तो कूद जाती हूँ। कूद गई।
0: लोगों को खुश देखकर नदी को बड़ी खुशी हो रही थी। और हाँ एक बात और है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो रुकी नहीं, अपने लक्ष्य की ओर बहना जारी रखा। कई बार रास्ते में या पहाड़ों पर वर्षा हुई तो उसका जल प्रवाह और भी बढ़ गया।
3: फिर क्या था, भला भूमिगत झरने भी क्यों चुप रहते, उन्होंने भी पूरा योगदान दिया और वो भी शामिल हो गए नदी की इस रोमांचक यात्रा में।
0: वो आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसने कई गांव देखे जहां लोग और पशु पक्षी प्यासे थे। पेड़ पौधे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सारे खेत सूख गए थे। नदी बोल उठी,
1: अब समझी, सूरज दादा ठीक ही कहते थे, मेरा बहना दूसरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां जहां मैं जाती हूँ वहां हरी हरी घास उगाती है, पेड़ खुशी से झूमने लगते हैं, पशु पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं, लोग मुझे माता कहते हैं, मेरी पूजा करते हैं। न जाने कितनी सभ्यताओं को मैंने अपनी गोद में फलते फूलते और पनपते देखा है, लेकिन कई बार मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मुझ में कूड़ा फेंकते हैं, शहरों की प्रदूषित नालियां तक मुझ में बहा देते हैं और मैं बीमार हो जाती हूँ।
3: जब वो सागर तक पहुंची तो सागर ने कहा,
2: पुत्री तू इतनी दूर कैसे आ गई?
1: माँ धरती का गुरुत्वाकर्षण मुझे यहाँ तक बहा कर ले आया।
2: पुत्री तू बहती रही इसीलिए जीवन चलता रहा।
1: अच्छा,
2: तू रुकती तो हा? जीवन चक्र ही रुक जाता। चलती रहो।
1: मैं चलती रहूंगी। हाँ मैं हमेशा चलती रहूंगी।
3: चरैवेति, यही तो जीवन है।
0: चरैवेति, नदियों का संदेश यही महान। चलते रहना कर्तव्य पथ पर, हो यही बस तुम्हारे जीवन की पहचान।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम नदी का सफर। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विनीत कुमार शर्मा, कलाकार पूनम एस कुदुसिया, सुनील लोहिया, शशांक शर्मा और बबीता त्रिपाठी, आलेख अजीत होरो, संपादन एवं निर्माण कुसुमलता।

0: शिक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है हेलेन केलर।
2: इस कार्यक्रम में दिव्यांग अमेरिकी महिला हेलेन केलर के जीवन और दिव्यांगता से उनके संघर्ष और विजय की गाथा का सप्रसंग उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार वे विश्व की करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं।

0: आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनका नाम है हेलन केलर।
1: हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में हुआ था। जब ये 2 साल की हुई तो बहुत बीमार पड़ी और
2: डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना?
3: मिसेस केलर, मुझे बेहद अफसोस है, पर हेलन अब कभी देख, बोल और सुन नहीं पाएगी। हिम्मत रखिए मिसेस केलर, हिम्मत रखिए।
0: हेलन की शिक्षा उसकी मां के लिए अब एक चुनौती बन गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हेलन की देखरेख और शिक्षा के लिए उन्होंने एक अनुभवी अध्यापिका को चुना, जिनका नाम था मिस सेलिवन।
4: आओ हेलन, मेरे पास आओ। हाँ, इधर। मैं हूँ सेलिवन। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, बहुत सारे काम एक साथ करेंगे। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, ऐसे। दोस्त हूँ ना तुम्हारी। शाबाश।
1: इस तरह एनी सेलिवन ने हेलन को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो भी शब्द हेलन को सिखाना होता वो उसके हाथ पर लिख देती थी। इस तरह पढ़ते हुए हेलन ने सबसे पहले गुड़िया शब्द सीखा।
4: हेलन, आओ, आज तुम्हें एक शब्द लिखना सिखाती हूँ। हेलन है गुड़िया जैसी, तो हम लिखते हैं तुम्हारे हाथ पर गुड़िया। लाओ हाथ दो। गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया।
0: अचानक एक दिन बाग की सैर करते हुए पानी का नल देखकर मिस सेलिवन के मन में एक विचार आया।
4: अरे, ये पानी का नल

0: हाँ, अगर पानी का स्पर्श कराकर हेलेन के दूसरे हाथ पर पानी लिखूं तो कितना अच्छा होगा। अभी देखती हूँ। ये रहा पानी का नल। हेलेन, हेलेन, अपना हाथ मुझे दो। हाँ, शाबाश। अच्छा, अब अपनी हथेली खोलो। ऐसे हाँ, अच्छा, अब मैं एक शब्द लिखूंगी तुम्हारी हथेली पर। देखो, मैं लिख रही हूँ पानी। हाँ हाँ, शाबाश। पानी। पानी। एक बार फिर कोशिश करो। हाँ,
1: यूं शुरू हुआ हेलेन का पढ़ना। अब तो वो चीजों को छू छू कर इशारे से उनके नाम पूछने लगी।
2: जल्दी ही वो अपनी अध्यापिका के मुंह और गले को छूकर बोलना भी सीख गई, यहाँ तक कि वो संगीत का भी आनंद लेने लगी।
0: मिसेस केलर
3: जी,
0: हेलेन तो अब बहुत कुछ सीख गई है। संगीत का आनंद भी लेने लगी है। आप तो खुद इतना अच्छा पियानो बजाती हैं। आज हेलेन के लिए मेरे लिए पियानो बजाइए ना।
3: जरूर, मैं अभी बजाती हूँ।

0: तुम अच्छा पिया नो
1: हेलेन हेलेन शाबाश हेलेन मिस सलीमन मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं
2: अरे नहीं नहीं मिसेस
1: मेरी बच्ची अब थोड़ा सुन सकती है और बोल भी सकती है मिस सलीमन
2: हेलेन
1: बोल सकती है।

0: सिर्फ इतना ही नहीं, हेलेन उभरे अक्षरों यानी ब्रेल लिपि को पढ़ने लगी। वो अंग्रेजी के अलावा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीख गई।
1: यही नहीं, वो तैराकी, घुड़सवारी और नाव चलाने में भी रुचि लेती। हेलेन ने अमेरिका के प्रसिद्ध महाविद्यालय रेडक्लिफ से स्नातक परीक्षा विशेष सम्मान से उत्तीर्ण की। हेलेन ने आत्मकथा लिखी जो एक प्रसिद्ध पत्रिका में छपी। दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है।
0: बाद में उन्होंने 10 किताबें और लिखी। वो अंधेपन, बहरेपन और उनसे जन्मी समस्याओं के बारे में अखबारों में लेख लिखती रही। अमेरिका और विदेशों में अंधेपन के लिए काम करने वाली संस्थाओं से वो जुड़ गईं।
1: उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की। सभी जगह हेलेन केलर को भारी सम्मान मिला। सन 1955 में वो भारत आईं। दिल्ली में विशाल जनसभा में उन्हें सम्मानित किया गया।
0: ।1964 में हेलेन केलर को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया।

0: हेलेन अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का एक अमर स्रोत थीं, हैं और हमेशा रहेंगी।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम हेलेन केलर, और श्रोताओं इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का, 3rd एंड 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोन बरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। नई दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में श्री वैष्णव ने कहा कि देश 6 से 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025 से 27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्नपत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल।

0: हो। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें जिससे ये बताया जाए कि राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4611 लोग घायल हुए हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय के अनुसार अब से कुछ देर में शुरू होगा। भारत ने अब तक 2 मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को भी बाई मिली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz ਤੇ।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा,
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।

आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 states और 4 union territories में। बस 1 to 3 minute का वीडियो बनाओ और शो केस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? वीव्स OTT ऐप पर रजिस्टर करो जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वीव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 रुपीज, स्टेट लेवल पर 2 lakh rupees और नेशनल लेवल पर 5 lakh rupees। सबमिशंस ओपन है 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक। तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती।

0: स्पीकरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
0: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
0: कम खर्च, बड़ी पहुंच।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: ਸਰੋਤੇ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਅਤੇ 7:45 ਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ। ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰਸਾਂਝ ਸੁਣੋਗੇ ਰਾਤ 10:30 ਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz 'ਤੇ। ਸਰੋਤਿਓ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ 6:10 ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਤੇ 6:20 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰੀਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के विकास यात्रा में निवेश की भूमिका को अहम बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में पेपर लीक को रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को संस्थागत रूप देने की जरूरत पर जोर दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में शिक्षा ग्रहण कर रहे 14 देशों के विद्यार्थियों से मुलाकात की। युवाओं से नई तकनीक अपनाने और बदलती दुनिया के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने गन्नौर के दातौली गांव स्थित पीएम श्री सरकारी बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। छात्रों की हर जरूरत का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए। कैथल की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के एक आरोपी को उम्र कैद और 55,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। और हांसी के मुक्केबाज नरेंद्र बेरवाल का अर्जुन अवार्ड के लिए चयन हुआ। और अब खबरें विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
2: इन्वेस्टमेंट स्टोरी, हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब $130 अरब का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में $1 के निवेश पर करीब $3.6 की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे। बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट
1: ऑफ द सोसाइटी। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
2: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में पेपर लीक को रोकने के लिए आज एक बार फिर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को संस्थागत रूप देने की जरूरत पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। नीट UG 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की

0: सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को शामिल करते हुए राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर हलफनामा दाखिल करें। न्यायालय ने कहा कि उसका मकसद ये पक्का करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा एजेंसी हो जो विशेषज्ञता बनाए रखने और तकनीकी बदलावों के हिसाब से खुद को ढालने में सक्षम हो। न्यायालय ने खास तौर पर प्रश्न पत्रों को सील करने के लिए एक स्थायी समिति बनाने, वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और संस्थागत विशेषज्ञता तैयार करने से जुड़ी सिफारिशों को लागू करने के बारे में भी जानकारी मांगी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में 14 देशों से आकर हरियाणा में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के साथ मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने युवाओं से नई तकनीक अपनाने और बदलती दुनिया के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। श्री नायब सिंह सैनी ने उम्मीद जताई कि हरियाणा से पढ़ाई पूरी करने के बाद ये विदेशी छात्र अपने देशों में प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। बातचीत के दौरान विदेशी विद्यार्थियों ने भी मुख्यमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों द्वारा विदेशी संस्थानों के साथ समझौतों और शैक्षणिक सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने आज सोनीपत जिले के गन्नौर के दातौली गांव स्थित पीएम श्री सरकारी बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्कूल परिसर की साफ सफाई, बुनियादी सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। शिक्षा मंत्री ने न केवल भौतिक व्यवस्थाओं को जांचा बल्कि कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों से सीधा संवाद भी किया। उन्होंने छात्रों से पढ़ाई के स्तर, शिक्षकों की उपस्थिति, पठन पाठन की सामग्री और स्कूल में मिलने वाली सुविधाओं को लेकर खुलकर बात की। मंत्री ने विद्यार्थियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और अधिकारियों को निर्देश दिए कि छात्रों की हर जरूरत और समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैथल में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुपामिश मोदी की अदालत ने आज चचेरे भाई की हत्या के आरोपी को उम्र कैद और 55,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर आरोपी को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला 4 अक्टूबर 2020 का है, जब बालू गांव में जमीनी विवाद के चलते आरोपी जितेंद्र उर्फ छोटा ने अपने चचेरे भाई पलविंदर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस की ओर से अदालत में कुल 23 गवाह पेश किए गए, जिनके बयानों और सबूतों के आधार पर अदालत ने 58 पन्ने के फैसले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए ये सजा सुनाई। हांसी जिले के सोरखी गांव के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले मुक्केबाज नरेंद्र बेरवाल का अर्जुन अवार्ड के लिए चयन हुआ है। किसान परिवार से संबंधित नरेंद्र को अर्जुन अवार्ड के लिए चुने जाने की खबर मिलते ही परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। आज हमारे संवाददाता ने वर्ष 2009 में मुक्केबाजी शुरू करने वाले नरेंद्र बेरवाल से बातचीत की। उन्होंने बताया कि अर्जुन अवार्ड के लिए चुने जाने से उसका परिवार बहुत खुश है।
1: मुझे पता लगा कि मेरा अर्जुन अवार्ड में नाम है और अर्जुन अवार्ड मिलने पर घर वाले बहुत खुश हैं और हमारे जो सिविल रेजिमेंट के विवेक डोगरा साहब है, लेफ्टिनेंट जनरल, उनको लाया था, बधाइयां दी हैं। और हमारे जो माननीय खेल मंत्री जी हैं, जो गौरव गौतम हैं हरियाणा के, उनका एक कॉल आया था और बधाई दी है।
0: नरेंद्र ने बताया कि भिवानी बॉक्सिंग अकादमी में कोच देवराज के मार्गदर्शन में उन्होंने मुक्केबाजी की बारीकियां सीखी। वर्ष 2013 में नरेंद्र भारतीय सेना में भर्ती हुए। इसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनका प्रदर्शन शानदार रहा। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में आज से 23 तारीख तक कुछ जगहों पर और 24 तारीख से कुछ अलग अलग जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र सहित हरियाणा के विभिन्न

संभागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग ने बदलते मौसम के चलते स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए आमजन को सावधानी बरतने की सलाह दी है और इससे बचाव के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है और नागरिकों को आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि एडवाइजरी में कहा गया है कि स्वाइन फ्लू के लक्षण हों तो सार्वजनिक स्थानों से दूरी बनाए रखें ताकि संक्रमण फैलने का खतरा कम किया जा सके। एडवाइजरी में लोगों को हाथ मिलाने अथवा अन्य संपर्क वाले अभिवादन से बचने, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकने तथा बिना चिकित्सकीय सलाह लिए दवाइयां न लेने की सलाह दी गई है। चंडीगढ़ रेडक्रॉस ने अपनी रेडक्रॉस पंछी बसेरा पहल का विस्तार करते हुए दो नए पंछी बसेरे स्थापित किए हैं। ये पंछी बसेरे सेक्टर 17 रैन बसेरा तथा सेक्टर 43 में स्थापित किए गए हैं। रेडक्रॉस का कहना है कि ये पहल नागरिकों को अपने आसपास पक्षियों के लिए दाना और पानी उपलब्ध करवाकर ऐसे संवेदनशील एवं करुणामय प्रयासों में सहभागी

0: सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि एडवाइजरी में कहा गया है कि स्वाइन फ्लू के लक्षण हों तो सार्वजनिक स्थानों से दूरी बनाए रखें ताकि संक्रमण फैलने का खतरा कम किया जा सके। एडवाइजरी में लोगों को हाथ मिलाने अथवा अन्य संपर्क वाले अभिवादन से बचने, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकने तथा बिना चिकित्सकीय सलाह लिए दवाइयां न लेने की सलाह दी गई है। चंडीगढ़ रेडक्रॉस ने अपनी रेडक्रॉस पंछी बसेरा पहल का विस्तार करते हुए दो नए पंछी बसेरे स्थापित किए हैं। ये पंछी बसेरे सेक्टर 17 रैन बसेरा तथा सेक्टर 43 में स्थापित किए गए हैं। रेडक्रॉस का कहना है कि ये पहल नागरिकों को अपने आसपास पक्षियों के लिए दाना और पानी उपलब्ध करवाकर ऐसे संवेदनशील एवं करुणामय प्रयासों में सहभागी बनने के लिए प्रेरित करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के विकास यात्रा में निवेश की भूमिका को अहम बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में पेपर लीक को रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को संस्थागत रूप देने की जरूरत पर जोर दिया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में शिक्षा ग्रहण कर रहे 14 देशों के विद्यार्थियों से मुलाकात की, युवाओं से नई तकनीक अपनाने और बदलती दुनिया के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी जंजल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। सरकार ने पाइप राही रसोई गैस कनेक्शन PNG घर घर पहुंचाने की योजना नूं मंजूरी दित्ती। पंजाब सरकार वालों खेड़ा वतन पंजाब दियां दा चौथा एडिशन 5 सितंबर तो बठिंडा तो शुरू होगा। 29 नवंबर में पटियाला विखे होगी समाप्ति। राष्ट्रीय महिला कमिशन ने जलंधर विच यशोदा AI पहलकदमी की शुरुआत की। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के तालमेल नाल एक गिरोह के 3 कारकुनों को मलेशिया तो भारत लिया। मौसम विभाग ने आज पंजाब ते हरियाणा के कुछ जिलों च भारी मीह पैण बारे येलो अलर्ट जारी किया। भारत ने श्रीलंका खिलाफ पहला क्रिकेट टेस्ट मैच 165 तौड़ा नाल जीत लिया। सरकार ने पाइप राही रसोई गैस कनैक्शन PNG घर घर पहुंचाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य साफ, सुरक्षित, किफायती रसोई गैस प्रदान करना है। यह योजना अगले महीने की 1 तारीख तो शुरू होकर 6-6 महीनों लिए 2 गेड़ों च लागू की जाएगी। पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य वध तो वध घरों को पाइप राही रसोई गैस प्रदान करना है। इस वेले देश 1,74,00,000 घरेलू PNG कनैक्शन मौजूद ने। पंजाब सरकार 5 सितंबर तो 29 नवंबर तक खेडा वतन पंजाब दियां दा चौथा एडिशन करा रही है, जिस विच सारे उम्र वर्गों के 1,00,000 तो वध भागीदारां नूं शामिल करने का टीचा रख्या गया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अज चंडीगढ़ च दस्सिया कि पंजाब के खेड सभ्याचार नूं मुड़ सुरजीत करन ते नौजवानों की ऊर्जा नूं खेडां वल मोड़न के उद्देश नाल इह शानदार खेड मेला बठिंडा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम विखे उद्घाटनी समारोह नाल शुरू होगा।
2: इस वक्त मशाल मार्च चल रहा है, मशाल जिहड़ी वख वख जिले जा रही है, 12 अगस्त तो शुरू हुई है। इस बार उद्घाटनी समारोह होगा 5 सितंबर नूं बठिंडा विखे, 29 नवंबर तक चलणगे। समाप्ति समारोह होगा पटियाला विखे। इस बार रिकॉर्ड 10,00,000 प्लेयर जिहड़े ने उन्हां हिस्सा लैण दी उम्मीद है। 10,00,000 प्लेयर वख वख एज कैटेगरियां, ब्लाक पद्धरी जिहड़े मुकाबले ने 3 तो 15 सितंबर तक, जिला पद्धरी 20 सितंबर तो 30 सितंबर तक, राज पद्धरी मुकाबले ने ओह फिर 10 अक्तूबर तो 23 नवंबर तक 16 जिले च कराए जाणगे। इहदे विच क्रमवार 10,000, 7,000, 5,000 रुपये दिए जाएंगे इनामों के, जिहड़े पहले दूजे तीजे स्थान पर खिलाड़ी आएंगे।
1: मुख्यमंत्री ने सारे खिलाड़ियों को अपने रजिस्ट्रेशन करवाने ते इन्हां खेडों च उत्साह नाल हिस्सा लेने की अपील की। राष्ट्रीय महिला कमिशन NCW ने डिजिटल सशक्तिकरण से उभर रही तकनोलॉजियां औरतों की वध तो वध भागीदारी उत्साहित करने लिए जलंधर में अपनी यशोदा AI पहलकदमी की शुरुआत की है। यह आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस AI साखरता प्रोग्राम जो कमिशन पिछले 4 साल तो चला रहा है, कमिशन के चेयरपर्सन विजय रिहाटकर वालों जलंधर की अपनी फेरी दौरान शुरू किया गया। इसका उद्देश्य औरतों की डिजिटल शमूलियत को बढ़ाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल प्राइवेसी, सुरक्षित ऑनलाइन अभ्यासों के खेत्र सशक्त बनाने है, ताकि उन्होंने AI साखरता नाल लैस किया जा सके। NCW के नशीले पदार्थों की दुरवरतों का खतरा, औरतों उत्ते बोझ नूं उजागर करना विषय से प्रोग्राम भी करवाया गया। इसने औरतों के परिवार से नशीले पदार्थों की दुरवरतों के भावनात्मक, समाजिक, आर्थिक प्रभाव और रोकथाम से दखल अंदाजी लिए एक लिंग संवेदनशील भाईचारक संचालित पहुंच नूं उजागर किया। उन्होंने कहा
3: पंजाब की बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और अच्छा काम भी कर रही है। पर जब मैं यहाँ पे आई, मैं सबको मिली, तो मैं ये भी देख रही

0: MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰੋਤਿਓ, ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੈਮਾਲਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम जयमाला। सभी फौजी साथियों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं देशभक्ति गीत के साथ, जिसे हमने लिया है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म से। अरिजीत सिंह की आवाज़, मनोज मुंतशिर के बोल और आरको की है तर्ज।

फौजी साथियों, अब आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गाना। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवाणा।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। लीजिए सुनिए परदेश फिल्म का ये गाना।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।
2: सुबह जलाओ शाम जलाओ
3: देव दर्शन धूप।
2: सुबह जलाओ शाम जलाओ
3: देव दर्शन धूप।
4: फौजी साथियों आपकी सेवा में प्रस्तुत है अलका याग्निक और आमिर खान की आवाजों में गुलाम फिल्म का ये गाना।

फौजी साथियों लीजिए अब सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में देवदास फिल्म का गाना। गीतकार हैं नुसरत बद्र और संगीतकार हैं इस्माइल दरबार।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। जयमाला कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है जयमाला। फौजी साथियों, लीजिए अब सुनिए सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज़ों में दिल से फिल्म का गाना गुलजार के हैं बोल और ए आर रहमान की है तर्ज।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
3: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि

0: एक्टिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम जयमाला। फौजी साथियों, आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश नो एंट्री फिल्म से सोनू निगम और अलीशा चिनॉय की आवाज़ें हैं, समीर के बोल और अनु मलिक की है तर्ज़।

फौजी साथियों, इस गाने के साथ ही आज का जयमाला कार्यक्रम संपन्न होता है। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

0: आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं वीएम आनंद की लिखी झलकी अधूरी बात। निर्देशक हैं विजय दीपक छिब्बर।
1: हेलो
2: मैडम आप
1: ओफो, तुमसे कितनी बार कहा है मुझे मैडम मत कहा करो, मुझे आप मत कहा करो, लेकिन तुम कुछ समझते नहीं हो।
2: मैडम आप भी कमाल करती हैं।
1: फिर
2: आप हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर साहब की बेटी हैं।
1: तो
2: और मैं मेरा एक मामूली सा इंजीनियर। अब भला मैं आपको आप ना कहूँ, आपको मैडम ना कहूँ, तो फिर क्या कहूँ?
1: तुम नहीं समझोगे रंजीत, तुम कभी नहीं समझोगे। मैं तुमसे पता नहीं तुम किस मिट्टी के बने हो, तुम मेरी बात सुनते भी तो नहीं हो। मैं तुमसे
3: मैडम इससे आगे और कुछ मत कहिएगा, आपसे पहले भी कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि
1: यहाँ ना आया करो, यही ना। लेकिन मैं यहाँ क्यों नहीं आऊंगी, मैं तो यहाँ हर रोज आऊंगी, आप मुझे रोक सकते हैं क्या?
2: लेकिन मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट तो कर सकता हूँ ना। मैडम आप समझती क्यों नहीं, मेरे पास एक मिनट की भी फुर्सत नहीं आपसे बात करने के लिए। सर
4: आज दफ्तर में फिर आ गई?
1: जी डैडी, वो क्या है ना कि मेरी सहेली का घर आपके दफ्तर के बिल्कुल बगल में है, तो मैंने सोचा उसके साथ बैडमिंटन खेल लेती।
4: लगता है तुम्हारी शटल कॉक इस दफ्तर में गिर गई और तुम उसे ही ढूंढने आई हो।
1: जी
2: व्हाट अ जोक सर। देखिए ना मैडम, आपके पापा कितने जॉली नेचर्ड हैं, हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर हैं, और फिर भी कभी कभी ऐसे मजाक करते हैं कि मैं तो हंसते हंसते लुटपुट हो जाता हूँ।
1: शट अप रंजीत, तुम मेरे डैडी की हर बात सुनते हो, समझते हो, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी तुम्हारी समझ में आ जाता है, लेकिन उनकी बेटी की कोई बात तुम क्यों नहीं समझते?
2: मैडम इसमें मेरा क्या कसूर है, आप जो भी बात करती हैं इतनी घुमा फिरा के करती है कि मेरी समझ में कुछ नहीं आता है।
1: What? यानी आज तक मैंने जो भी बातें की तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया?
2: नहीं मैडम।
1: तो आज मैं तुम्हें साफ साफ लफ्जों में बता देना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत
2: मैडम माय गॉड, मुझे 11 बजे पीडब्ल्यूडी एक बहुत जरूरी मीटिंग में पहुंचना, तो मैं चलता हूँ।
1: पता नहीं किस भोंदू को दिल दे बैठी, ना मुझे कुछ कहने का मौका देता है, ना खुद कोई बात समझता है। पाजी अनाड़ी कबाड़ी कहीं का, आज तक मेरा नाम भी नहीं पूछा।
5: आदिलाल तो नहीं आया सर, मैं
4: खैर कोई बात नहीं, मैं आप ही से बात करना चाहता था। ये बताइए दफ्तर में सब ठीक ठाक है ना?
5: यस सर, एवरीथिंग इज फाइन सर, हर आदमी बड़े शौक से और बड़े धड़ल्ले से काम कर रहा है सर।
4: वाह वाह क्या कहने, यानी कि इस दफ्तर में सारे काम धड़ल्ले से हो रहे हैं, बहुत खूब।
5: यस सर, ये सब आपकी गाइडेंस से ही हो रहा है सर।
4: अच्छा अच्छा, तो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी गाइडेंस से हो रहा है, यानी कि हम अपनी खुशी से अपनी दुनिया लुटा रहे हैं।
5: यस सर जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा।
4: अरे मिस्टर तिवारी, वो लड़की यहाँ क्यों आती है?
5: लड़की कौन लड़की सर?
4: तो आपको अभी तक ये भी पता नहीं कि कोई लड़की इस दफ्तर में हर रोज आती है और हर रोज रंजीत के सामने आकर बैठ जाती है, अभी भी बैठी थी।
5: वो समझा, वो लड़की।
4: हाँ हाँ, वो यहाँ क्यों आती है?
5: जी छोड़िए सर, ऐसी लड़कियां तो यहाँ धक्के खाती फिरती रहती है, उसके माँ बाप ने तमीज तक तो सिखाई नहीं, हर वक्त ही करती रहती
4: है। आप अपनी जबान को लगाम दो। अरे वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी, उसका नाम किटी है।
5: वो आपकी बेटी है? वावा बहुत अच्छे हैं, वावा वंडरफुल, भगवान ऐसी एक बेटी आपको और दे सर। मुकर्रर रिशाद मोर वंस मोर।
4: थैंक यू थैंक यू। लेकिन मिस्टर तिवारी
5: जी,
4: मैं बहुत परेशान हूँ।
5: अरे ये हमारा

0: इंजीनियर रंजीत किटी से हंस हंस कर क्यों बातें करता है?
1: सर ही इज फॉलोइंग योर कंस्ट्रक्शन सर। इंस्ट्रक्शन?
0: व्हाट इंस्ट्रक्शंस?
1: वो सर आपके ऑर्डर के मुताबिक इस दफ्तर में कटसी वीक मनाया जा रहा है सर। जगह जगह बैनर लगे हैं, सर्विस विद ए स्माइल। रंजीत ये क्या सर, इस दफ्तर में हर आदमी हंस रहा है, बगैर मतलब के हंस रहा है सर।
0: लेकिन मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा ही सबॉर्डिनेट मेरी बेटी से हंस हंस कर बातें करे।
1: हंसने दीजिए सर, कटसी वीक में सिर्फ दो दिन तो बाकी रह गए, उसके बाद है किसी के मजाल? है कोई माई का लाल जो इस दफ्तर में हंस सके?
0: ओहो मिस्टर तिवारी, दिस इज वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड बिटवीन यू एंड मी। रंजीत किट्टी से हंस हंस कर बातें करता है, इसलिए मुझे शक पड़ रहा है कि वो किट्टी से प्यार करता है। दिस आई कांट टॉलरेट।
1: नो नो नो सर, आपको वहम हो गया है। रंजीत अगर किट्टी से हंस हंस के बात करता है तो उसका ये मतलब नहीं कि उससे प्यार करता। वैसे तो आप भी मेरे से हंस हंस के बात करते हैं, लेकिन सर आप अपने सीने पे हाथ रख के कह सकते कि आप मुझसे प्यार करते हैं?
0: बिल्कुल
1: नहीं सर, आप उल्टा मेरी जड़ें काटने पर लगे।
2: अगर आप मुझसे प्यार करते होते
1: तो अभी तक मैं असिस्टेंट मैनेजर की कुर्सी पर नहीं होता सर, मैनेजर बन गया होता।
0: ओ मिस्टर तिवारी, तुम्हारी मेरी बात और है, हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं, वो दोनों अभी जवान हैं।
1: लेकिन सर उम्र की कोई बात नहीं होती, प्यार तो प्यार होता है, उम्र बचपन की, प्यार बचपन का।
0: लेकिन मैं इस मामले की तह तक जाना चाहता हूँ। मैं किट्टी से तो पूछ नहीं सकता कि वो रंजीत से बातें क्यों करती है हंस कर, क्योंकि वो मेरी बेटी है।
1: तो सर आप रंजीत से पूछ लीजिए, आप उसे अपने कमरे में बुलाइए।
0: हाँ, ठीक है।
1: अब पहले आप उससे आधी बात कीजिए।
0: मैं आधी बात करूं?
1: वो आधी बात समझेगा।
0: वो आधी बात समझेगा,
1: फिर वो आधी बात करेगा, आप आधी बात समझेंगे।
0: मैं आधी बात समझूंगा।
1: घुमा फिरा कर इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, जब हो जाएगा तो सारी बात क्लियर हो जाएगी।
0: ओह वेरी गुड आइडिया मिस्टर तिवारी, वेरी गुड। आप जाकर रंजीत को फौरन मेरे पास भेज दीजिए, मैं इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करके सारा सच उगलवाता
1: हूं। अभी गया और अभी आया सर।
0: वो अपने आप को समझता क्या है?
3: मे आई कम इन सर?
0: नो, ओके, यस यस, कम इन।
3: सर आपने मुझे बुलाया?
0: मैंने तुम्हें बुलाया? मुझे तो याद नहीं आ रहा।
3: कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आप इतने बड़े अफसर हैं, भला आपको कैसे याद रह सकता है कि आपने किसे बुलाया और किसे नहीं बुलाया। खैर कोई बात नहीं सर, अब जब मैं आ ही गया हूं तो
0: तुम हंसते क्यों जा रहे हो? अच्छा अच्छा, तो दफ्तर में कर्सी वीक चल रहा
3: है। सर
0: सर्विस विद अ स्माइल।
3: यस सर, सर्विस विद अ स्माइल।
0: अब कितने दिन रह गए तुम्हारे हंसने में? दो दिन। हंस लो बेटा हंस लो, फिर कभी नहीं हंस पाओगे।
3: सर आप ये मजाक करते हैं, अब जब तक आप जैसे अफसर की छत्र छाया मेरे सिर पे रहेगी मैं तो हंसता ही रहूंगा सर।
0: रंजीत, जो मैं तुमसे पूछूंगा वो ठीक ठीक बताना। अगर तुमने घुमा फिरा कर या कोई आधी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम सचमुच?
3: सचमुच सर, सचमुच सर, मैं तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि आप हाँ कह दें।
0: है?
3: सर आप हाँ कह देंगे तो मैं अभी इसी वक्त अपने मम्मी पापा को लखनऊ से यहाँ बुलवा लूंगा।
0: ओ तो बात यहाँ तक पहुँच गई। वाह बरखुरदार, मैंने तो सोचा था कि मैं पूछूंगा तो तुम ना कर दोगे, तुम मेरी बात सुनकर टाल मटोल करोगे, लेकिन तुमने बड़े धड़ल्ले से कह दिया कि तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। बेटे तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं
3: आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ सर, मैं जानता हूँ कि मैं आपसे एक बार भी रिक्वेस्ट करूंगा तो आप ना नहीं कहेंगे। अब देखिए ना सर, मैं इस शहर में अकेला रहता हूँ, मैं इस अकेलेपन से बहुत तंग आ गया हूँ। आई वॉन्ट टू लीड अ फैमिली लाइफ।
0: ओफ, मैंने तुम्हारी हर बात का ठेका ले रखा है। अरे मैंने तुम्हें नौकरी दी और उसके बाद साल के अंदर प्रमोशन दिया, और अब
3: सर बस ये एक बात और मान लीजिए प्लीज।
0: शट अप रंजीत, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और भूल जाओ।
1: अरे तुम कहाँ
0: और वो कहाँ?
3: वो कहाँ? Oh, distance is no problem, sir. अब देखिए ना सर, जब आप मेरी ये बात मान लेंगे तो फिर मैं आपसे एक कार भी मांग लूंगा आने जाने के लिए।
0: What? यानी कि अगर मैं हाँ कर दूं तो तुम कार भी मांगोगे? रंजीत रंजीत, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो, उसका ख्याल छोड़ दो।
3: ठीक है सर, अगर वो मेरी किस्मत में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ही बताइए सर कि वो कौन खुशनसीब है जिसे आपने हाँ कही है।
1: अरे who are you?
0: तुम पूछने वाले कौन हो?
3: सर मैं,
0: अरे मैं जिसको चाहे हाँ करूं। आउट
3: सर, लेकिन मैं,
0: गेट आउट
3: सर, लेकिन मैं,
0: गेट आउट।
4: किटी
0: क्यों जा रही हो, कुछ बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है?
5: देखो किटी, तुमने मुझे हर बात बता दी है ना, अब अपने डैडी को भी बता दो बेटा।

0: डैडी, अरे अरे मैं बता दूं ना बेटी, बता दूं मैं तुम्हारा डैडी हूँ।
1: अच्छा डैडी, मैं ना
0: बका बका,
1: मैं ना
0: बका
1: करने लग गई हूँ।
0: तुम प्यार करने लग गई हो? अरे तो फिर इसमें रोने की क्या बात है, अभी तो प्यार शुरू हुआ है, सारी उम्र पड़ी है रोने के लिए।
1: लेकिन डैडी, जिससे मैं प्यार करती हूँ ना, वो तो मुझसे प्यार करता ही नहीं है।
0: कौन है वो बेवकूफ?
1: वो बेवकूफ ना रंजीत है।
0: रंजीत? कौन रंजीत भाई?
2: अरे वही रंजीत जो आपकी कंपनी में इंजीनियर है।
0: क्या किटी, तुम उस रंजीत से प्यार करती हो?
1: हाँ डैडी, लेकिन है ना वो मुझसे प्यार करता ही नहीं है,
0: है?
1: वो तो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करता। उसने तो आज तक मेरा नाम भी नहीं पूछा।
0: लेकिन बेटी, वो तुमसे प्यार करता है।
2: नहीं डैडी, वो मुझसे प्यार नहीं करता।
0: वो तुमसे प्यार करता है।
2: वो मुझसे प्यार नहीं करता।
0: वो तुमसे प्यार करता है।
2: किटी को ज्यादा पता है तुम्हें? रंजीत किटी से प्यार करता है तुमसे?
0: चलो जो भी है, मैं उसे पसंद नहीं करता।
2: क्यों जी, क्या कमी है रंजीत में?
0: है, अरे जिस कंपनी का मैं जीएम हूँ उसी में वो एक मामूली सा इंजीनियर है। मैं किटी का उससे मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं करता।
1: या तो मैं रंजीत से शादी करूंगी या तो मैं मर
2: जाऊंगी। नहीं अभी मैं ठीक किए देती हूँ इन्हें। अरे मैंने कहा क्यों रुला रहे हो लड़की को, रंजीत इतना अच्छा है, अभी छोटा इंजीनियर है फिर बड़ा भी बन जाएगा, स्मार्ट है, खानदानी है, अरे ऐसा लड़का फिर कहाँ मिलेगा?
0: ला ला ला ला ला ला, लेकिन
2: लेकिन क्या?
0: अब मैंने तो उसे आज बुलाकर बहुत डांटा, मैंने उसे डराया, मैंने उसे धमकाया कि खबरदार वो मेरी बेटी से मिला तो।
2: ओहो, कोई काम ठीक से मत करना, ये लड़का हाथ से नहीं जाने दो, उसे कह दो, उसे कह दो हमें सब कुछ मंजूर है।
0: ओफो, मैं इतनी ऊंची पोस्ट पर हूँ, जीएम हूँ, और अपने सबॉर्डिनेट से कह दूं कि वो मेरी बेटी से शादी कर ले?
2: तो क्या मैं कहूँ?
0: क्या मतलब?
2: क्या? अरे तुम्हें क्या जरूरत है ये सब कहने की? देखो देखो देखो, इधर आओ, आधी बात तुम करो,
0: आधी बात मैं,
2: आधी वो समझेगा,
0: ठीक
2: है ना? आधी वो करेगा, आधी आप समझोगे, है ना? फिर बात को घुमा फिरा कर इधर की बात उधर, जब सारी बातें हो जाएंगी तो हर बात क्लियर हो जाएगी।
0: ब्रिलियंट, पुची पुची,
2: समझ गए ना?
3: May I come in?
0: Oh, Ranjit, come in, come in, come in, my boy, come in. Come in, come in.
3: Sir, आप अभी तक हंस रहे हैं?
0: क्यों? मैं नहीं आ सकता क्या?
3: नहीं सर, वो courtesy week तो कल खत्म हो गया ना?
0: ओह, वो courtesy week खत्म हो गया तो क्या हुआ? मेरा courtesy period अब शुरू हो रहा है।
3: Yes sir, yes
0: sir. अरे देखो ना रंजीत, मैंने जाने परसों तुम्हें गुस्से में क्या क्या कह दिया, भूल जाओ उसको।
3: कोई बात नहीं सर, आप हमारे जीएम हैं, मैं आपकी बात का कैसे बुरा मान सकता हूं?
0: देखो आज मैं मूड में आ गया हूं, बोलो क्या चाहिए तुम्हें?
3: मुझे सर, मैं क्या मांगू?
0: बका बका,
3: नहीं सर,
0: बका
4: मुझे एक बरसाती चाहिए।
0: व्हाट व्हाट बरसाती? यू मीन रेनकोट?
4: नहीं सर, रेनकोट नहीं, मुझे रहने वाली बरसाती चाहिए।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, वो बरसाती? अरे बरसाती क्यों रंजीत, तुम्हें कोठी मिलेगी, कोठी,
3: कोठी,
0: समझ गए ना, कोठी।
3: हाँ सर, समझ गए, समझ गए, समझ गए।
0: और मांगो, मैं तैयार हूँ, मांगो मांगो।
3: सर अगर मुझे आने जाने के लिए कार?
0: कार? अरे दे दी, समझ गए ना, और मांगो मांगो मांगो। नाउ कम टू द पॉइंट, बी क्विक, क्विक, क्विक।
4: नहीं सर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
0: अच्छा अच्छा, मैं आदि समझूंगा, फिर वो आदि कहेगा, फिर मैं आदि। मैं समझ गया समझ गया, तुम जो आदि बात कह रहे हो ना वो मैं पूरी समझ गया। अरे बेटे तुमने इतनी चीजें मांगी, मैंने सब दे दी। देखो ना, अब एक चीज हम तुम्हें अपनी चॉइस की देना चाहते हैं।
3: अपनी चॉइस की?
0: हाँ।
2: अरे तुम यहाँ अभी तक खड़े हुए हंस रहे हो? हाँ? तुमने रंजीत से बात किया नहीं?
0: अरे वही तो कर रहा हूँ, लेकिन ये कार, कोटी, एसी, डीसी और बरसाती मांग रहा है।
2: अरे बरसाती मांग रहा है, पागल है? अरे हम तुम्हें रेनकोट देंगे, जूते देंगे, चप्पल देंगे, मोजे देंगे, छतरी देंगे, सब कुछ देंगे।
0: और देंगे अपनी किटी।
3: हाँ। किटी
0: किटी किटी
3: किटी किटी
0: किटी।
4: ओ अब समझा, किटी यानी के बिल्ली।
2: बिल्ली नहीं, हमारी प्यारी सी किटी,
0: जिसे हमने बड़े प्यार से पाला है।
4: नहीं सर, उसे आप खुद ही पालिए, मुझे नहीं चाहिए।
0: ओफो, माय डार्लिंग
2: किटी,
0: मेरी आंखों का तारा
2: किटी,
0: मेरे जिगर का टुकड़ा
2: किटी।
4: ओ सर, मुझे नहीं चाहिए बिल्ली, मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है।
0: ओ यू डफर, किटी नहीं,
2: हमारी रंजी।

0: अभी आपने वीएम आनंद की लिखी झलकी सुनी, अधूरी बात। निर्देशक थे विजय दीपक छिब्बर। आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते। श्रोतियों हुन पेश है प्रायोजित प्रोग्राम फार्म टू सिटी।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्र सरकार उप ठेकेदारी मानदंडों की समीक्षा करेगी। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। ईरान ने खाड़ी देशों को अमरीका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट झटके। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमेड़ी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री तथा 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों के उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। श्री गडकरी ने बेहतर अवसंरचना सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विस्तृत और मजबूत परियोजना रिपोर्ट DPR की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता वाली DPR और अपर्याप्त भूवैज्ञानिक डेटा अक्सर लागत में वृद्धि, देरी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का कारण बनते हैं।
2: कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उसके लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल बनाकर वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ये हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल जियोलॉजी एंड ग्राउंड कंडीशंस ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत अध्ययन होना चाहिए।

0: आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कुछ किया तो उसका उपयोग ओवरऑल देश को होगा। बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल हजार्ड्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, हेवी स्नोफॉल, अभी बहुत कठिन है, ये जो जिला में काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है।
2: Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should use social media platforms not only to inform the engaged, but also to listen, understand and respond to concerns of the people.
1: राष्ट्रपति ने कहा कि जब सूचना तेजी से फैलती है तो आधिकारिक संचार में सटीकता, विश्वसनीयता और जनहित का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन, वन्य जीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। झारखंड में 26 दिन से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें जेपीएससी सिविल सर्विस और जेएसएससी सीजीएल भी शामिल हैं। छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों ने आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा निकाली, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए। देवेंद्रनाथ महतो ने 16 दिनों तक आमरण अनशन किया था। वहीं सरकार के फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके विरोध में जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31

0: अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनिरका इलाके में मणिपुर के दो लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दो व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दोनों लोगों पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
1: New Delhi, the Chief Minister here, the government here.
2: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
1: I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exist here.
0: श्री गोर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। 4611 लोग घायल हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबिलाडो डे ला एस्प्रियेला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत किया। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए हैं। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके, दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने

0: पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार।
2: श्रोतियों हुन पेश है प्रोग्राम आपके लिए। इस प्रोग्राम नो से आकाशवाणी दे मुंबई के अंदर तो रिले करांगे।
1: मजरू सुल्तानपुरी हैं गीतकार और संगीतकार एसडी बर्मन।

अरे अगली पेशकश आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में लीडर फिल्म से, बोल हैं शकील बदायूनी के और तर्ज नौशाद की।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। लीजिए अब सुनिए महेंद्र कपूर की आवाज में कहीं दिन कहीं रात फिल्म का गाना। SH बिहारी हैं गीतकार और संगीतकार हैं OP नैयर।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, और कार्यक्रम चल रहा है आपके लिए। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए मुकेश और कंचन की आवाज़ों में धर्मात्मा फिल्म का गाना। गीतकार हैं इंदिवर और कल्याण जी आनंद जी हैं संगीतकार।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम आपके लिए। लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में कटी पतंग फिल्म का गाना। आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है। ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे कटी पतंग फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शी थे गीतकार और संगीतकार थे आर डी बर्मन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में चाइना टाउन फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं रवि।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाज

चाइना टाउन फिल्म के गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम बस कुछ ही पलों के बाद।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप

0: प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर टीएमटी बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
3: मरने का इरादा है तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
4: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: श्रोताओं नमस्ते। आज बात एक ऐसे अभिनेता की जो चरित्र भूमिकाएं निभाते हुए भी अपने हर किरदार को यादगार बनाने का हुनर रखते हैं। अपनी भावपूर्ण आंखों और संवाद अदायगी के अंदाज से चेहरे पर मुस्कान खिला देते हैं। आज के फनकार हैं अभिनेता, निर्देशक, लेखक और नाटककार उत्पल दत्त।
1: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।

0: का गोलमाल है।
1: उत्पल दत्त, ये नाम सुनते ही हमारी आँखों के सामने वो सारे किरदार तैर जाते हैं जो उनके अभिनय से अमर हो गए हैं। फिर चाहे वो मूछों के दीवाने गोलमाल के भवानी शंकर हों, या पढ़ी लिखी बहू लाने के सख्त खिलाफ किसी से न कहना के कैलाशपति, इन अतिशयोक्तिपूर्ण किरदारों में उत्पल दत्त के अलावा किसी और की कल्पना हम कर ही नहीं सकते।

जिस तरह उत्पल दत्त के अभिनय और हाव भाव को भूलना मुश्किल है, उसी तरह मुश्किल है उनके अनोखे अंदाज में कहे कुछ शब्द, जैसे अच्छा हैं या चौंक कर उनका ई कहना। वो इन कुछ शब्दों में ही अपने अलग अलग भाव बड़ी आसानी से प्रकट कर देते और दर्शक उनके इन भावाभिव्यक्ति पर लोट

0: का अभिनय इतना स्वाभाविक लगता कि दर्शकों को वो अपने आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति की याद दिला जाते। अपने मजाहिया अंदाज वाले किरदारों के लिए लोकप्रिय हुए उत्पल दत्त कभी बेवजह हंसाने की कोशिश करते नजर नहीं आते, बल्कि वो अपने सहज अभिनय से ही लोगों को पेट दुखते तक हंसने पर मजबूर कर देते और उनके चेहरे पर ऐसी किसी कोशिश का निशान तक नहीं दिखता।
1: सिर्फ आलू का पराठा क्यों बेटा, मैं तुम्हें कलकत्ते का राजभोग खिलाऊंगा, दिल्ली का सोन हलवा, मथुरा का पेड़ा, बनारस का कलाकंद खिलाऊंगा।
2: मगर सर इतनी सारी मिठाई है।
1: अरे बेटा, नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी, और ताकत नहीं होगी तो पुलिस की मार कैसे सहोगे बेटा।
2: पुलिस की मार?
1: पुलिस की मार।
0: उत्पल दत्त के सहज अभिनय के पीछे उनकी रंगमंच में की गई सालों की मेहनत चमकती है। 29 मार्च 1929 को उस वक्त पश्चिम बंगाल और अब बांग्लादेश में स्थित बारिसल में उनका जन्म हुआ। उनकी शिक्षा कलकत्ता में पूरी हुई। इस दौरान ही अपनी युवावस्था में उनका रुझान अंग्रेजी थिएटर की ओर होने लगा। 1947 में वो थिएटर ग्रुप से जुड़ गए और अभिनय करने लगे। उनके पहले ही किरदार ने मशहूर रंगमंच निर्देशक जेफ्री कैंडल का ध्यान आकर्षित किया। उत्पल दत्त उनकी थिएटर कंपनी के साथ 2 सालों की भारत पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों की लंबी यात्रा में शामिल हो गए।

थिएटर की दुनिया ने उत्पल दत्त के लिए विचारों की एक नई राह खोल दी। उन्होंने अपने थिएटर ग्रुप की स्थापना की, जिसका नाम रखा लिटिल थिएटर ग्रुप। शेक्सपियर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, गोर्की, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे देश विदेश के बड़े बड़े दार्शनिक, लेखक और समाज सुधारकों की कहानियों पर वो नाटक रचने लगे। एक वक्त के बाद उत्पल दत्त को ये एहसास हुआ कि वो अपने नाटकों से जो संदेश आम जनता तक पहुँचाना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें भारतीय पृष्ठभूमि के नाटक रचने होंगे। यहाँ से वो एक नाटककार और लेखक की भूमिका में ढल गए। उनके लिखे कई नाटक आज भी बदलाव लाने वाले नाटकों के तौर पर पहचाने जाते हैं।

दत्त इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। उनको रंगमंच पर एक ऐसी शख्सियत के तौर पर पहचाना जाता है जो कला के माध्यम से समाज सुधार की बात करते हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध नाटकों में शामिल हैं ओंगार, टीनेर तलवार, फेरारी फौजी, आज केर शाहजहां, मानुषेर अधिकार, लोहा मानव, बैरिकेड, दूस्वप्नार नगरी, ए बार राजार पाला और कल्लोल। अपने कुछ नाटकों में उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों पर चोट करने का साहस किया। कल्लोल के लिए उन्हें जेल में कुछ महीने भी बिताने पड़े, लेकिन वो अपने विचारों से टस से मस ना हुए और सामाजिक जागरण तथा बदलाव की बातें करते रहे।

कमल दत्त का फिल्मों में आना भी रंगमंच के कारण ही संभव हुआ। रंगमंच में उनको ओथेलो की भूमिका में देख बांग्ला फिल्मकार मधु बोस ने अपने फिल्म माइकल मधुसूदन में मुख्य भूमिका के लिए चुना। ये फिल्म क्रांतिकारी भारतीय कवि माइकल मधुसूदन दत्त के जीवन पर आधारित थी। इसके बाद उत्पल दत्त कई बांग्ला फिल्मों में नजर आए। इनमें शामिल है मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म भुवन शोम। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया।

बांग्ला फिल्मों की बातें करें तो उत्पल दत्त वहाँ अलग अलग भूमिकाओं में अपनी छाप छोड़ते रहे। 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित फिल्मकार सत्यजीत रे की आखिरी फिल्म आगंतुक में उत्पल दत्त के किरदार मनमोहन मित्रा को सराहना मिली। सत्यजीत रे की ही फिल्म जॉय बाबा फेलूनाथ में मगनलाल मेघराज के किरदार में उत्पल दत्त एक विलेन की भूमिका में दिखे। उनकी कुछ उल्लेखनीय बांग्ला फिल्मों में भुवन शोम, आगंतुक, जॉय बाबा फेलूनाथ के साथ ही नाम शामिल है पद्म नादिर माझी का।

सात हिंदुस्तानी फिल्म से हिंदी फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले उत्पल दत्त जिस भूमिका में होते उसमें इस तरह ढल जाते कि बस वो किरदार के रूप में ही नजर आते। जैसे द गुरु फिल्म में सितार वादक जाफर खान के किरदार को वो बड़ी ही सहजता से निभाते नजर आते हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे कि वो एक अभिनेता नहीं बल्कि एक सितार वादक ही हों। वहीं बासु चटर्जी की फिल्म शौकीन में उनके किरदार जगदीश भाई अपने दोस्तों के साथ वाकई शौकीन और शातिर नजर आते हैं।

दत्त 1950 में कलकत्ता के एक स्कूल में इंग्लिश टीचर थे और अपने विद्यार्थियों के प्रिय हुआ करते थे। कुछ ऐसा ही वास्तविक किरदार उन्होंने निभाया फिल्म गुड्डी में। गुड्डी में प्रोफेसर गुप्ता उर्फ मामा जी के किरदार में ढलकर फिल्मी दुनिया को असली मानने वाली फिल्म की हीरोइन गुड्डी को फिल्मी दुनिया की वास्तविकता दिखाने का वो प्रयास करते हैं। इस फिल्म के जरिए न जाने कितने लोगों के लिए वो एक टीचर बनकर उनका दिल जीतने में कामयाब हुए होंगे।

जहाँ एक और गुड्डी में उनका किरदार फिल्मी दुनिया की असलियत बताता है, वहीं फिल्म रंग बिरंगी में वो नजर आते हैं पुलिस इंस्पेक्टर धुरंधर भाटावड़ेकर के रूप में। धुरंधर भाटावड़ेकर जो फिल्मों और फिल्मी दुनिया के सभी लोगों से नफरत करता है। फिल्म रंग बिरंगी में उनकी एंट्री तकरीबन फिल्म के अंतिम चरण में ही होती है, लेकिन उनके आते ही जैसे फिल्म की पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द ही घूमने लगती है। कुछ सीन्स में ही नजर आने के बावजूद धुरंधर भाटावड़ेकर हमें याद रह जाते हैं और फिल्म में अपने अभिनय का एक अलग ही रंग भर देते हैं।

अभिनय में माहिर उत्पल दत्त फिल्मों में नहीं आना चाहती थी, ये जानकर शायद आपको आश्चर्य हो, क्योंकि उनका पूरा ध्यान रंगमंच की ओर ही था। वो अपनी कला का उपयोग समाज को बदलने में करना चाहते थे, लेकिन उनका कहना था कि फिल्मों में वो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। कई बार तो वो फिल्म करके भूल भी जाते कि उन्होंने कौन से किरदार निभाए और फिल्म की कहानी क्या थी, लेकिन ये उनका सहज अभिनय ही था जो दर्शकों को यूं बांध लेता कि वो कभी उन किरदारों को भूल ही नहीं पाते थे।

0: उत्पल दत्त ने कई किरदार निभाए हैं। बांग्ला और हिंदी फिल्मों को मिलाकर तकरीबन 100 फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उनके नाटकों की अलग ही गिनती है, जिसमें से कुछ उन्होंने खुद लिखे। उत्पल दत्त अपने चेहरे, हाव भाव और चश्मे के भीतर से झांकती आंखों से कुछ यूं अभिनय करते कि मानो उनका पूरा व्यक्तित्व ही किरदारों के अनुसार बदल जाता। उस पर संवाद अदायगी के दौरान आवाज का उतार चढ़ाव देखने वाले को बांध लिया करता। कभी उनके किरदार बेहद सुलझे हुए होते तो कभी बिल्कुल अनोखे।
1: नहीं पूरा।

दत्त के निभाए किरदारों की बात आती है तो जहां हम उन्हें कॉमेडी किरदारों में ज्यादा याद करते हैं, वहीं जब जब उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई बिल्कुल अलग नजर आए। उन्हें खलनायक वाले किरदार में देखकर हम कभी ये सोच ही नहीं सकते कि ये वही अभिनेता हैं जो कॉमेडी करते नजर आते हैं। उन्हें

0: खलनायक बने हमने देखा फिल्म अमानुष में मुनीम घोषाल के रूप में। वो साहू जी बने नजर आए, फिल्म थी बरसात की एक रात। द ग्रेट गैम्बलर में डॉन सक्सेना, तो इंकलाब में सीताराम का किरदार उन्होंने निभाया।
1: Vai sai tu, distorcer cando,

इनके सहज अभिनय को कई बार सराहा गया। यूं तो दर्शक हमेशा ही उनके किरदारों को पसंद करते रहे, लेकिन उन्हें कई बार पुरस्कारों के जरिए भी प्रोत्साहन मिला। उन्हें कई पुरस्कार मिले, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सम्मान हैं: संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड।

अभिनय के साथ ही उत्पल दत्त ने कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया। इनमें शामिल हैं मेघ, घूम भांगर गान, झार, बैसाखी मेघ, माँ और इंकलाब के बाद। साल 1960 में उन्होंने रंगमंच और फिल्म अदाकारा शोभा सेन से शादी की। दोनों की इकलौती संतान विष्णु प्रिया दत्त भी आगे चलकर रंगमंच से जुड़ी और उससे संबंधित काम करती हैं।

अगस्त 1993 को कलकत्ता के एक निजी अस्पताल में उत्पल दत्त का हृदय आघात से निधन हो गया। अंतिम दिनों तक वो अभिनय में सक्रिय रहे। टीवी शो व्योमकेश बख्शी में उनका किरदार और आखिरी फिल्म मेरा दामाद रही। ये फिल्म उनकी मृत्यु के 2 साल बाद रिलीज हुई। उत्पल दत्त भले ही इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन वो अपने पीछे अनगिनत किरदारों की वो दुनिया छोड़ गए जो किरदार आज भी हमें हंसाते हैं और सिखाते हैं जीवन जीने की कला।

0: आज के फनकार। कार्यक्रम आज केंद्रित था सहज अभिनय, भावपूर्ण अदायगी और आँखों से अपने भाव जाहिर करने वाले अभिनेता, निर्देशक, लेखक और नाटककार उत्पल दत्त पर।
1: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।

0: शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: वज्रदंती। बीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, एक छोटे से कमरे के कोने में एक लड़की खिड़की के पास बैठी है। खिड़की खुली है, चांद की रोशनी उसके चेहरे पर उतर आई है। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। उसकी आंखें बार बार आसमान में चांद को देखती हैं और फिर उस रास्ते पर टिक जाती हैं जहां से उसे किसी के आने की उम्मीद है। दूर कहीं नदी के किनारे खड़ा युवक अपनी हथेली हवा में फैलाकर मुस्कुरा देता है और पूरी रात चांद दोनों के बीच एक खामोश संदेशवाहक बन जाता है।

रात का सन्नाटा अब डरावना नहीं बल्कि प्यार से भरा हुआ लग रहा है। लड़की ने खिड़की से अपना हाथ बाहर निकाला, हवा ने उसकी उंगलियों को छुआ। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत प्यार से उसका हाथ थाम लिया हो और थपथपा दिया हो। तुम आए थे ना, लड़की ने पूछा। उस रात किसी ने किसी को नहीं देखा, फिर भी दोनों ने एक दूसरे को बहुत करीब से महसूस किया था।

हवा और ठंडी हो गई, पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे हैं, जुगनू और चमकने लगे हैं, चांद जैसे मुस्कुरा रहा है।

0: तारा।
1: जब चांद, तारे, चांदनी, नदी, पहाड़, हवा और रात की खामोशी किसी प्रेम कहानी के साथी बन जाएं, तो फिर दूरियां भी मोहब्बत को रोक नहीं पाती। चांद आज भी हर रात निकलता है, हवा आज भी खिड़कियों को छूती है, थपथपाती है, जुगनू आज भी अंधेरे में रोशनी बिखेरते हैं, और कहीं ना कहीं दो दिल आज भी उसी चांदनी रात में एक दूसरे से मिलने की दुआ करते हैं। रात का सन्नाटा तब डरावना नहीं, बल्कि प्यार से भरा हुआ लगता है।

0: छाए गीत में अब लेते हैं एक अंतराल।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

इस अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। तारे उस रात प्रेमी युगल की अधूरी बातें सुनते रहे, जुगनू उनकी उम्मीदों की तरह टिमटिमाते रहे, नदी उनके प्यार की कहानी अपने साथ बहाती रही, पहाड़ उनकी मोहब्बत के गवाह बने खड़े रहे और हवा हवा हर पल एक दिल से दूसरे दिल तक प्यार का एहसास पहुंचाती रही। दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे, लेकिन उनके दिल एक ही धड़कन में बंध चुके थे। अब

रात और गहरी हो चुकी थी। भीगी भीगी चांदनी खिड़की से होकर कमरे में उतर रही थी। कमरे की खिड़की के पास बैठी वो सुंदर सी लड़की कांपती हुई आवाज में आसमान की ओर देखकर फुसफुसाई, सुन रहे हो ना? मैं आज भी उसी खिड़की पर बैठी हूँ तुम्हारे इंतजार में। जैसे ही उसके होठों से ये शब्द निकले, हवा ने अपना रुख बदल लिया। वो पहाड़ों को छूती हुई जंगलों से गुजरी और सीधे नदी किनारे जा पहुंची, जहां वो लड़का बैठा था। हवा ने उसके गालों को धीरे से छुआ। लड़का मुस्कुराया, बोला, हाँ, तुम्हारी खुशबू आज भी इस हवा में बसी है। रात का सन्नाटा अब खामोश नहीं था, उसमें दो दिलों की धड़कने थी।

उस रात चांद उनका आसमान था, तारे उनकी दुआ थे, हवा उनका संदेश थी, नदी उनकी आवाज थी, पहाड़ उनके सहारे बन गए और भीगी हुई चांदनी उनकी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत गवाह। उस रात चांद चांदनी बरसाने लगा था, तारे दुआ बन गए थे, जुगनू नदी के किनारे से उड़ते हुए हवा के साथ उस खिड़की तक पहुंच गए। नदी की हर लहर पुकार रही थी, दो दिल एक दूसरे के लिए ठहर गए थे। कमरे के कोने में बैठी वो प्यारी सी लड़की की आंखें अब चमक रही थीं। उन आंखों में उम्मीद की चमक थी, हाँ, कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये दूरी खत्म होगी, यही चांद, यही तारे, यही हवा हमारे मिलन के गवाह बने।

0: और अब छाया गीत से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, न हमसे मिलता है न साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
1: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
0: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: प्रोग्राम सरसांझ दा अगला गीत आओ सुनदे आं 76 गिल दी आवाज़ विच।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd एंड 4th लाइन और

0: पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक, ये फोर लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की चार मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की चौथी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की चौथी लाइन, गुमिडी पुंडी गुदूर की तीसरी और चौथी लाइन, कटक पारादेव की तीसरी और चौथी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों की उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर में अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। नीदरलैंड्स के अम्स्टेल्फेन में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर आउट हो गई। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट छटके थे। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते। श्रोतियों 11:05 हो चुके ने ते हुन साडे केंद्र तो अज दी सवा दे प्रोग्रामां दा प्रसारण इत्थे ही खत्म हुंदा है। कल सवेरे 5:55 ते अपने प्रोग्रामां नाल हाजिर होवांगे।